0: वो ब्रह्म कैसे है? तो कहा वो है आत्मस्वरूप। और इस प्रकार से कहने लगे, ऐसे उस अविद्या से उपहित आत्मा से ही यह सारा जगत उत्पन्न हो गया। जैसे स्वप्न हमारे में और हमारे ही से उत्पन्न हुआ, हमारे में स्थिर रहा, हमारे में लीन हो जाता, अन्य संसार के पदार्थों में तो नहीं, लेकिन जैसे यहां प्रकटित होता है, ठीक इसी प्रकार से यहां संकेत किया, यस्मात् जातम् जगत सर्वम्, उसी में ये सारा का सारा उत्पन्न हुआ, उसी में स्थिर रहा, उसी में लीन होता है, ऐसा जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है का, उसको मैं नमस्कार करता हूं। अब थोड़ा सा और समझ, ये नमः नमस्कार करना क्या है? तो नैयायिकों ने एक लक्षण किया, नमस्कार का अर्थ जो है उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा, स्वस्वत्वोपकर्ष पूर्वकम् पर स्वत्वोत्कर्षण रूप व्यापारः इति नमस्कारः। नमस्कार क्या है? जहां पर हमने अपने स्वत्व को तो अपकर्षित कर लिया, न्यून कर लिया, और सामने वाले के स्वत्व को हमने बढ़ा दिया, है ना, उसे सम्मान दिया, अर्थात उसके स्वत्व को हमने उत्कृष्ट किया और अपने स्वत्व को हमने न्यून किया। तो अपने स्वत्व को न्यून करना और दूसरे के स्वत्व को उत्कृष्ट मान लेना, इसी का नाम क्या है? नमस्कार। केवल नमः कह देना नमस्कार नहीं, नमस्कार का तात्पर्य है सामने वाले के उत्कर्ष को बढ़ा देना। और यहां पर क्या, यहां पर भी जब नमः करते हो तो यहां पर किसको उत्कृष्टता देनी, किसे उत्कृष्टता देनी? कहा जो वास्तव में उत्कृष्ट है, जो ऊर्ध्व है, वो जी इस सारे संसार का मूल है, और ऐसे उस उत्कृष्ट को ही उत्कृष्टता देना, यही है नमस्कार। हो तो क्या कहा? ज्ञान आत्मने। क्या उत्कृष्टता दे रहे? कहा वो ज्ञान स्वरूप है। और हम कैसे हैं? ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान हमारा स्वरूप अभी नहीं हो पा रहा, हमारा ज्ञान वो क्या है, स्वरूप नहीं हो रहा, किंतु हम ज्ञान को गुण रूप से ग्रहण कर रहे हैं। कैसे कर रहे? स्वरूप है यद्यपि, लेकिन हम स्वरूप रूप से उसे जान रहे नहीं, क्योंकि हम वृत्ति में उस ज्ञान को पकड़ रहे हैं, मन से पकड़ रहे हैं, बुद्धि से पकड़ रहे हैं, और तब हम समझते हैं कि ये ज्ञान, लेकिन है वो क्या? ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। अब जो प्रकाश स्वरूप होगा, जो प्रकाश बुद्धि को भी बुद्धित्व देने वाला, मन को भी मनत्व देने वाला, वो क्या होगा? वो स्वरूपस्थ। तो ऐसे यहां पर संकेत किया, ऐसे ज्ञानात्मने नमः, वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका विग्रह है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है। जैसे सूर्य क्या है? तो प्रकाश स्वरूप। ऐसे ही यहां पर कहने लगे, जो ज्ञान स्वरूप है, उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि यह सारी की सारी सृष्टि, सारा का सारा जगत उसी से हुआ है, उसी में स्थिर है और उसी में लय को हो जाता है। और उसको जब हम नमस्कार करेंगे, आप जिसको नमस्कार करते हो, तो वो आपको क्या देता? आशीर्वाद देता, प्रेम देता। वैसे तो ये कह दिया आयुर्विद्या ऐसो बलम है, आयु भी दे देता है, यश भी देता है, बल भी देता है और विद्या भी देता। और विद्या क्या करती? यदि विद्या मिल जाएगी तो विद्या क्या करेगी? विद्या अमृत मस्नुते। विद्या के द्वारा किसकी प्राप्ति होगी? कहा अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही यशवान, तभी वो यशस्वी है, तभी वो बलवाला है, नहीं तो बलवाला कहेगा, है ना। तो इस प्रकार, और फिर आयु, आयु क्या, तभी उसकी सत्ता सिद्ध होगी, आयु से सत्ता विद्यमान था, तो उसे अपनी सत्ता की प्राप्ति हो जाती है, बल की प्राप्ति हो जाती है, और जो है यश की भी प्राप्ति हो जाती, वही यशस्वी होता है, है? और अमृतत्व को वह प्राप्त करता, फिर उसकी मृत्यु नहीं। तो ऐसे ज्ञानात्मने, ऐसा ज्ञान स्वरूप है, उसको जब नमस्कार करेंगे, उसे श्रेष्ठता देंगे, तो हमारे अंदर से अविद्या की वो निवृत्ति कर देगा। और अविद्या की निवृत्ति जब कर देगा, तो हमारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने से क्या होगा? हम विद्यावान हो गए, स्वरूप का बोध होगा, और बोध होगा तो उस बोध में फिर वहां पर कहा अमृतत्व रूप है, वहां जन्म और मरण नहीं। तो जन्म मरण से भी हम रहित हो जाएंगे। ये सारा का सारा रूप वर्णन यहां करने के कारण, ऐसा उद्देश्य होने के कारण कहा, यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीयते, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न होता है और जिसमें ही वह सारा जगत प्रलीन हो जाता है, ऐसा जो है एदम धारयते, और वो जो है इसको धारण करने वाला भी वही है, ऐसे जो है उस ज्ञानात्मने तस्मै ज्ञानात्मने नमः, ऐसे उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ये सब संकेत। तो अब यहां पर थोड़ा सा और विचार करो, लोक में हम इसको कैसे समझें। एक बालक, जब बालक होता है तब उसमें अधिक चिंताएं होती नहीं है ना, चिंता मुक्त होता है और माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है अध्ययन आदि कर, और जब वो योग्य होकर के एक नागरिक बन जाता है तो फिर क्या होता, तब नागरिक बनने पर फिर उसको ये आता कि मैं भी कुछ हूं। अभी तक तो माता पिता के आश्रित था, ध्यान रखना, तब तक उसका अहम अभी इतना प्रस्फुटित नहीं हुआ था, लेकिन जब उसका अहम प्रस्फुटित हुआ कि मैं भी हूं और मैं समर्थ हूं, ये जैसे ही आता तो क्या कहता, अब मैं समर्थ हूं तो अब मेरे को चाहिए, वहीं से कामना आगे चलने लगती। तो क्या है, तो एक से मैं दो हो जाऊं, दो हो जाता, और दो हो गया तो दो चार साल दो ही रहे तो फिर क्या कहता, डॉक्टरों की शरण लेता कि अब जो है हम दो और हमारे दो, अधिक नहीं, चलो सौ वाली बात नहीं, तो इतना तो होता ही। और ये होता, और ये जब होता जाता है तो क्या संसार बढ़ता। अब ये सब उसने किस लिए किया था, उसने क्या दुख के लिए किया था, उसने किया था कि जीवन सुख से व्यतीत हो, सुख के लिए किया था, लेकिन हो क्या गया, जो उसने किया उसमें वहीं पर क्या आ गई, कामना आई, और वो कामना अविद्या को लेकर के आई, वो अहम भी उसका अविद्यात्मक हुआ, जिस कारण से वह जो है उस चीज को समझ नहीं पाया, और नहीं समझ पाया तो दुखद हो गई। यदि उसको भी वह लीला रूप समझ ले कि जैसे परमात्मा में अविद्याकृत ही इसको समझ ले, तो कहने लगे वहां पर भी उसे सुख होगा। ये जगत प्रथु का जनक का उदाहरण देते हो, तो उन्होंने इस चीज को समझा था, और कब समझा था, इसके समझने के लिए क्या चाहिए, तो पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए, और अधिकारीपना चाहिए। वो अधिकारीपना कब होगा, तो इसके लिए प्रार्थना पूर्व में कर चुके, सब देवताओं से प्रार्थना की, तो मन बुद्धि इंद्रियादियों को व्यवस्थित करने के लिए। अब ये जो है कैसे होगी, तो देखो अधिकारता जनक में कब आई, जनक की कथा सभी जानते हैं। जनक जो है उन्होंने निष्काम कर्म भी किया, प्रजा के यथार्थ कर्म किया, और उससे उन्हें क्या प्राप्त हुई, उसकी कामना तो की नहीं थी उन्होंने, उन्होंने क्या पुत्री की कामना की थी, पुत्री की कामना नहीं थी, उद्देश्य उनका क्या था, जनहितार्थ, जन कल्याणार्थ। उन्होंने जो हल चलाया, जो हल चलाना रूप यज्ञ किया, वो किस लिए किया था, क्या सीता जी की प्राप्ति के लिए, कहा नहीं, उसकी कामना नहीं थी, कामना क्या थी, जनहितार्थ। और उसके द्वारा उन्हें अब जो है पुत्री की कामना नहीं थी, लेकिन पुत्री की प्राप्ति हो गई, और उनको क्या कहा गया, भक्ति का प्रतीक कहा गया। तो अब जब हम निष्कामता हमारे जीवन में आती है, हम जनहितार्थ कार्य करते हैं, परमात्मितार्थ कार्य करते हैं, या यज्ञार्थ कार्य करते हैं, जिसे यज्ञार्थात कर्मणु अन्यत्र लोको एवं कर्म वंदना करके संकेत किया, तो यज्ञ रूप कर्म क्या है, तो जहां परमात्मा ने जो चक्र चलाया है उस चक्र का हम अनुवर्तन करें, तो उसी को क्या कहेंगे, और इसमें भी आगे कहेंगे, आचार्याय प्रिधनम आहृत्य प्रजातंतु मां विवक्षेसि, इसका निषेध नहीं किया गया, और मातृदेव हो पितृदेव हो आचार्य देव, वहीं पर ये सारे कर्म की चर्चा की, और ये अलुक्षा कर्म ते कुर्वन, जो अलुक्ष कर्म है उन कर्मों को करो, ये संकेत वहां भी किया, इसी तैतरी के अंतर्गत भी आएगा। अब जो है यहां पर जब उन्होंने किया तो उन्हें भक्ति की प्राप्ति हुई, और भक्ति के माध्यम से क्या हुआ, उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ, आगे क्रिया बढ़ती गई, उनके अधिकारी बनते। लेकिन वही जनक जो अष्टावक्र गीता है उसको लेकर के प्रसंग आता, कि जनक ने बहुत से ऋषियों से श्रवण किया, शास्त्रार्थ किया और उन्होंने एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? कहा हम उसे अपना आचार्य स्वीकार करेंगे, उसे हम अपना गुरु स्वीकार करेंगे। कहा किसे? कहा जो मेरी शर्त पूरी कर देगा। कहा क्या शर्त है? तो क्या शर्त थी उनकी? कि घोड़े के रकाब में पैर रखने में जितना समय लगता उतने समय में मुझे जो ज्ञान करा देगा उसे मैं अपना आचार स्वीकार करूं। ये उनकी शर्त थी। सारे ऋषियों से शास्त्रार्थ होता रहा, सारे ऋषियों से प्रश्नोत्तर चलता रहा, लेकिन अभी तक आचार्य किसी को नहीं बनाया। फिर अष्टावक्र, जो भी कथा है लंबी नहीं करें, तो अब जो अष्टावक्र आए उनके सामने, तो अष्टावक्र के सामने भी उन्होंने अपनी शर्त रख दी। और जब अष्टावक्र के सामने चुनौती रख दी तो अष्टावक्र ने उस चुनौती को स्वीकार कर ली। अष्टावक्र ने कहा कि ठीक है जनक, आपकी शर्त मैं स्वीकार करता हूं, आपकी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक मेरी भी शर्त, मैं आपकी शर्त को पूरा करूंगा और आप मेरी शर्त को पूरा करो। कहा ठीक है, आप बतलाओ सर। कहा ठीक, सजा लो घोड़ा। घोड़ा सजाया गया। कहा हो जाओ सवार। जनक सवार हो गए, बैठ गए घोड़े। कहा बतलाओ, कराओ ज्ञान। अष्टावक्र ने कहा थोड़ा नीचे उतरा, नीचे उतरा है। कहा मेरी शर्त भी तो, ये तो तूने अपनी शर्त दिखा दी, इतने ही क्षण में हम तेरे कराएंगे, लेकिन मेरी भी शर्त तो सुन। कहा हां। कहा तुझे संकल्प करना पड़ेगा। कहा ठीक। उन्होंने उठाया कमंडलू, दिया जल, कहा कहो। कहा मन गुरु का। कहा मन गुरु का। कहा तन गुरु का। कहा तन गुरु का। कहा धन गुरु का। कहा धन गुरु का। संकल्प कर दिया। कहा चढ़ जाओ। अष्टावक्र ने जैसे ही कहा तो राजा जनक सवार हुए और सवार होकर के फिर कहने लगे, कहा कि अब कराओ। कहा नीचे उतर क्या? नीचे उतर आया। कहा ये बतलाइए कौन कह रहा है कि अब कराओ, क्योंकि मन तो मेरा है, तन तू मेरे को दे चुका, मन मेरे को दे चुका, कहने वाला फिर कौन बचा? और जैसे ही ये शब्द अष्टावक्र ने कहे राजा जनक की समझ में आया, अधिकारी हो गए थे, पात्रता आ गई थी। और जैसे ही उनकी समझ में आया कि मन से जो कहा जाएगा तो मन तो हमारा है ही नहीं, तो अष्टावक्र की ये बात सुनकर के जनक वहीं समाधिष्ट हो गए, स्तब्ध हो गए। स्तब्ध जब हो गए, मारा डक्का, लेकिन नहीं, फिर मारा डक्का तो थोड़ी चेतना आई। राज कुछ बोले ही नहीं, तो उन्होंने कहा ले, मन मेरा लेकिन मैं तेरे को दे रहा हूं, तन मेरा मैं तेरे को दे रहा हूं, धन मेरा मैं तेरे को दे रहा हूं, अब बतला, मेरे मन से बतला। तो कहने लगा कि महाराज अब कुछ कहते ही नहीं बनता है ना। और पूछा भी, जैसे भगवान ने पूछा अर्जुन से, पहले तो अर्जुन ने कह दिया नयोतिष्यामी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अंत में भगवान ने सारी चर्चा करने के बाद कहा कि अर्जुन तेरी प्रतिज्ञा थी युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा कर्ण खा के जीवन व्यतीत कर लूंगा, अब क्या, अब तू क्या चाहता? करिष्ये वचनम तब। कहा मतलब पहले तो निर्णय ये था, अब कहा तब क्या था वो बात अलग है, लेकिन अब तो तुम ही जब सब कुछ हो तो हम करने वाले हैं कौन, है ना, तो करिष्ये वचनम तब, है ना। और जनक ने क्या कहा? त्यागा दाने व्याय अस्मात अहम आसे यथा सुखम। अब कुछ ग्रहण करने को शेष नहीं है और कुछ त्यागने को भी शेष नहीं, तो हमने त्याग का भी त्याग कर दिया, इसलिए अब क्या है, अहम आसे, अब मैं बैठा हूं कहां, यथा सुखम, जो जैसा है उसी में बैठा हूं, जैसा सुख स्वरूप आनंद स्वरूप उसमें बैठ। ये जनक की शब्द, तो ये स्थिति आती है। तो कहने का मतलब जब इस प्रकार से साधक इन मंगलाचरणों को जो है समझता है और ऋषियों के अभिप्राय को समझता है और उसके अनुसार अनुवर्तन करता है, प्रयास करता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब उसके जीवन में मुमुक्षता आती है, जिज्ञासा, सच्ची जिज्ञासा आती है, अब जिज्ञासा कहना केवल प्रश्न उत्तर करने का नाम जिज्ञासा नहीं। देखो बड़ी छोटी सी बात, आप कभी पुराण उपन्यास आदि पढ़ते हो है ना, तो सरसरी निगाह से पढ़ते जाते, कभी दो पन्ना भी पलट जाए तो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन कहीं रिटर्न का फॉर्म भरना हो तो क्या करते हो, एक एक शब्द को बड़ी गहरी दृष्टि से देखते हो। शब्द यदि समझ में नहीं आता है तो एक हंट चार्टर के पास जाते हो, वकील के पास जाते हो, उसके अर्थ को समझते हो और तब ठीक से भर करके तब आप जाते हो। तो ये क्या है, इतना ही अंतर है। तो जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, और जब जिज्ञासा इतनी प्रबल होती है, जैसे रिटर्न के फॉर्म में हम दत्तचित्त हो जाते, ऐसे ही जब दत्तचित्तता हमारे जीवन में आ जाती, मैं क्या हूं, संसार क्या है, और इस प्रकार से आत्मानात्मा का जो विवेचन करने में हम चलते हैं, तब जो हमारे अंदर जिज्ञासा आती है वही मुमुक्षता होती, और वो मुमुक्षता आती तब है जब अधिकारीपना आ जाए। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा दुर्लभम त्रयमेव हि तत्, है ना, ये तीन जो है बड़े दुर्लभ, देवानुग्रह हेतुकम, देव के अनुग्रह से होने वाले, इसलिए तो देवताओं के लिए शांति पाठ किया गया, देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संकेत किया। तो ये सारी चर्चा है, आगे चर्चा कल करें।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: ஓம் சிவாய நம. shaivam.org இன் அன்பார்ந்த நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனைகள். தலைப்பு பித்தம் தெளிய, பாடிப்பவர்கள் ஆலத்தூர் சகோதரர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நம.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

सदुग्रहा ओजिष्ठेभिर्नृपतिर्वज्राबाहुः सङ्गे समत्सु दुर्वाणिःप्रुतन्योन् आ न इन्द्रो हरिभिर्या त्वच्छार्वाचीनो वासे राधासे च तिष्ठा आदिवज्रीमघवा आविरप्सीमञ्य।

सरस्वती हविष्मतीन्द्र कर्मा सुनोवत ताभिषजा आसुकर्माणा सा सुदुघा सरस्वती सवृत्रः शतक्रातुरिन्द्रा आयदधुरिन्द्रियम्।

0: तो ये समग्र विश्व जड़ और चैतन्य उभय रूप, स्थूल और सूक्ष्म और कार्य और कारण रूप, व्यक्त अव्यक्त रूप, ये जो विश्व प्रपंच है इसका कारण क्या है, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग ढंग से बताया कि यह इस तरह उत्पन्न हुआ है। कोई परमाणु कारण मानते हैं, तो किसी ने प्रकृति को कारण माना, लेकिन वेदांत दर्शन आदिगुरु शंकराचार्य जी जिसको प्रमाण के रूप में मानते हैं, ये सारा का सारा विश्व एक सजातीय विजातीय स्वगत भेद त्रय रहित शुद्ध तो ब्रह्म चैतन्य है जिसका नाम ईश्वर है, उसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ है। सदैव सौमिदमग्र आसीत, ये छांदोग्य उसकी श्रुति है। उद्दालकारुणी अपने पुत्र सहित केतु को कहते हैं कि इदम, ये सारा नाम रूपात्मक जगत इस रूप में प्रकट होने से पहले सत एव आसीत, सद रूप में ही था, उसी को आधार मानते हुए यहां शंकराचार्य जी ने कहा बीजस्यांतरिवांकुरो, जैसे बीज के अंदर तमाम वृक्ष पूर्व ही सन्निहित रहता है परंतु अव्यक्त रूप में रहता है, बीज से अभिन्न होकर रहता है, एकात्म रूप में रहता है, उसी बीज स्थानीय परमात्मा से जैसे वृक्ष उत्पन्न होता वैसे सारा जगत उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ तो बोले माया कल्पित देश काल कलना, ये जगत में यही है देश काल नाम और रूप, कलना यही रचना है माया का, माया इन सब की रचना करती है, उस परमात्मा के सान्निध्य प्राप्त करके आश्रय प्राप्त करके इस सब चीज की रचना माया खुद करती है। वैचित्र चित्रीकृतम, उसी से विचित्र विचित्रता विरोधाभासी वस्तु को उत्पन्न कर देती है, उसी माया से सबको जलाने वाले अग्नि पैदा करती है माया, और उसी माया से पानी पैदा होता है, जैसे कि सामान्य व्यवहार में पानी और अग्नि एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये विरोधाभासी उत्पन्न करने की क्षमता उस माया में है। अब ये माया भी वह यहां उस माया का आश्रय चैतन्य को ही जगत कारण के रूप में लिया गया है, तो यहां दोनों को अभिन्न रूप में माना गया ईश्वर और माया, क्योंकि ईश्वर के बिना माया का अस्तित्व नहीं, माया के बिना ईश्वर कारण रूप में प्रवृत्त नहीं हो सकता, तो माया और चैतन्य ईश्वर दोनों को एक मानकर कभी माया कह देते हैं कभी ईश्वर कह देते हैं। ईश्वर से अलग होने पर माया नहीं रहती है, माया से अलग होने पर ईश्वर नहीं रहता, ये भी ख्याल रख लेना, ब्रह्म होगा ब्रह्म रहेगा ईश्वर नहीं रहेगा। माया भी विजृंभयती, शंकराचार्य जी समझाते हैं कि ये जगत उस ईश्वर के द्वारा कैसे उत्पन्न हुआ, तो मायावी के तरह, जादूगर के तरह, यत बृहद इंद्रजाल को चलाने वाला इंद्रजालिक, या माया के खेल को दिखाने वाले, जादू के खेल को दिखाने वाला जादूगर, जादू के प्रभाव से वह बिना साधन सामग्री उपकरणों के वह कार्यों को उत्पन्न करके दिखा देता है। हमने कल उदाहरण दिया था, सड़क के किनारे खड़ा होता है जादूगर और हाथ ताली पीटता है और मिट्टी उठाता है, नोट निकाल के दिखा देता है। वहां कुछ नहीं है, साधन कुछ नहीं है, फिर भी वह नोट दिखा देता है और बढ़िया नोट दिखा रहा था, उतनी में फिर वह आग लगा देता है, वो नोट जल के राख हो जाता है, फिर उस राख से फिर वह माला निकाल देता है, उसी राख से रुमाल बना देता है, और जो जो संकल्प करता है, दिखाना चाहता है, वो दिखाता जाता है। अब साधारण ग्रामीण जनता और हम बच्चे जैसे इतने मोहित हो जाते हैं उसको खेलकर देखकर कि मन में लगता है ये कला हमको भी आ जाती तो हम भी खुद कमाई करते, और आश्चर्य लगता कि ये कैसे हुआ, साफ दिखता है। एक सर्कस में हम देखने गए थे बचपन में, बनारस में जब पढ़ रहे थे तो सर्कस आया था, तो उसने दर्शकों में से एक व्यक्ति को बुलाया, तो तुम आ जाओ, तो गया बेचारा, बुलाया तो गया, उसकी पत्नी भी वहीं बैठी थी, गया और उसको टेबल में लिटा दिया, और लेटाने के बाद ऊपर से एक चादर उड़ा दी और बिजली का आरी चलाकर उसने उसको दो टुकड़े कर दिया, टेबल को भी काटकर उसके सोया है उसके शरीर को ही दो टुकड़ा, टेबल को भी दो टुकड़ा करके एक टुकड़ा इधर फेंक दिया, एक टुकड़ा इधर फेंक दिया। सब आश्चर्य मनाने लग गए, सब लोगों ने देखा है वो टेबल में सोया है और उसके ऊपर उसने पूरा चादर डाल दिया और काट के दो टुकड़ा कर दिया। वो तो उसकी पत्नी तो वहीं से जोर जोर से रोते हुए कूद पड़ी। तो क्या हुआ, बोले मेरे पति को काट के दो टुकड़ा कर दिया। तो रोने लग गई, पुलिस आ गई, उसको संभाला गया। थोड़ी देर के बाद उसने दोनों टेबल को जोड़ दिया, फिर चादर हटाया, वो उठा, उठो, वो तो उठ गया। ये सब जादू का खेल है। अब वहां ना आ रही है, ना कोई कटा हुआ है, ना कुछ है, लेकिन दृष्टि का एक सब भ्रम बन जाता है। पारमार्थिक यानी व्यावहारिक के रूप में वो सब कुछ भी नहीं होता है। जादूगर जो कुछ भी खेल खेलता है, जो कुछ भी दिखाता है, वह प्रातिभासिक के रूप में होता है, व्यावहारिक के रूप में केवल मनोरंजन के लिए होगा, उसमें और कोई व्यावहारिक सत्ता नहीं होती है। लेकिन ये सारा का सारा जगत तो व्यावहारिक अस्तित्व वाला है, वहां तो कट के दो टुकड़ा हो गया, तुरंत तो वो खड़ा हो गया, अब यहां तो मरता है, दोबारा आता नहीं है, मरने के बाद तुरंत खड़ा हो जाता है, एक डेढ़ घंटा मरता, फिर उसके बाद तुरंत खड़ा हो जाता, तो ये मृत्यु इतनी दुखदायी नहीं होती होती। जैसे वहां आरी चला दिया, दो टुकड़े हो गए, एक सेकंड के लिए उसकी पत्नी को दुख का कारण बन गया, लेकिन वो तुरंत खड़ा हो गया, तो मृत्यु दुखदायी नहीं हुई। आप नित्य प्रलय में जाते हो, गहरी सुसुप्ति में कुछ भी भान नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद निद्रा खुलती है, जैसा का वैसा आप देखते हो, तो सुसुप्ति अवस्था का विनाश आपको दुखदायी नहीं होता है। जबकि सुसुप्ति अवस्था में कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। पति को पत्नी प्रतीत नहीं हो रही है, पत्नी को पति प्रतीत नहीं हो रहा है, मां को बेटा प्रतीत नहीं हो रहा है, बेटे को मां प्रतीत नहीं है। इन सब के बावजूद भी, क्योंकि वह पुनः थोड़ी देर के बाद प्रतीत होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वह कुछ भी नहीं हुआ है और वह दुखदायी का कारण नहीं बनता है, सहज बन जाता है। और ये जागृत अवस्था, ये प्रपंच भी व्यावहारिक सत्ता वाला प्रपंच भी उसी तरह यदि प्रातिभाषिक मात्र होता तो इतना दुखदायी भी न होता। ये तो मरता है फिर वापस नहीं आता है, तब दुख का कारण बन जाता है। कैसे ये व्यावहारिक हुआ? ये माया कल्पित है तो इंद्रजाल की तरह, जादूगर की तरह वह वस्तु केवल प्रातिभाषिक होनी चाहिए, व्यावहारिक कैसे हो गया? तुरंत दूसरा दृष्टांत दिया शंकराचार्य ने। मायावीव विजृंभत्यपि महा योगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्रीदक्षिणा मूर्तये। महायोगी व यह स्वेच्छया, कोई समर्थ योगी अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति के और क्रिया शक्ति के माध्यम से, बिना सहकारी कारण, बिना उपादान कारण, वह अनेक वस्तुओं को उत्पन्न कर देता है। जैसे एक महायोगी बिना उपादान कारण, बिना सहकारी कारण, केवल इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से अनेक वस्तुओं को उत्पन्न कर देता है, इसी तरह वह परमात्मा भी बिना उपादान कारण और सहकारी कारण के अपने अकेले ही संकल्प शक्ति इच्छा मात्र से वह ये विश्व प्रपंच को उत्पन्न करता है। इसके लिए उसको उपादान कारण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, सहकारी कारण को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात, प्रश्न ये था कि तब तो ये प्रातिभाषिक होना चाहिए, व्यवहारिक क्यों हुआ? तो हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रमाण हैं, योगी सिद्ध महापुरुष संकल्प मात्र से जो वस्तु उत्पन्न करते हैं, उन योगी सृष्ट पदार्थ पूरी तरह लोक व्यवहारिक होता है और वह प्रातिभाषिक मात्र नहीं रहता, पूरे व्यवहारिक होता है और व्यवहार हो जाता है। पुराणों में उदाहरण दिए, बहुत से पुराण उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप लोगों ने भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण कई बार सुनी है। कर्दम ऋषि थे, कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे नारायण सरोवर के किनारे खड़े होकर, तपस्या कर रहे थे। बिंदु सरोवर बोलो, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर के किनारे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। और उधर मनु महाराज की पुत्री थी देवोती, तो उनको विवाह करने का, कन्या जब विवाह करने की अवस्था को प्राप्त हुई तो मनु महाराज को चिंता हुई कि किससे विवाह करें, इनके योग्य वर कौन होगा इस समय। तो नारद जी ने जाकर संकेत कर दिया कि कर्दम ऋषि, आपकी पुत्री जैसे ही सर्वगुण संपन्न कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए वह भी तपस्या में लगे हुए हैं। सबसे अच्छा आपकी पुत्री की योग्य तो कर्दम ऋषि हैं, ले जाकर कर्दम ऋषि के साथ विवाह करा दीजिए। अब ये केवल कर्दम की इच्छा नहीं है, ये सभी देवताओं की भी इच्छा है, हम लोगों की भी इच्छा है कि कर्दम ऋषि विवाह कर ले वे। और क्योंकि कर्दम ऋषि के ही माध्यम से भगवान को अवतरित होना है, कपिल भगवान को कपिल अवतार होना है, तो मन महाराज जी चले गए कन्या को लेकर, विभूति को लेकर, विवाह का प्रस्ताव रखा। कर्दम ऋषि तो चाहते ही थे, शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, पुराण में। जब कर्दम ऋषि ने बहुत कठोर तपस्या की, अरे भगवान नारायण प्रकट हुए और पूछा कि बेटा किस लिए तुमने तपस्या की है, तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो हमसे, क्या चाहते हो? तो शास्त्र में लिखा है, कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे मनानुकूल इच्छा के अनुसार चलने वाली और परमार्थ में साथ देने वाली, भोग में भी अनुकूल और मोक्ष में भी वह अनुकूल वह साथ चले। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। ये पत्नी कोई साधारण नहीं है, भव सागर से तारने में वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी भारतीय संस्कृति ये प्रतीक है, क्योंकि गीता का भी ये कहना है कि परस्परम भावयन्त श्रेय परमावाप्स्यथा। अकेले ना ये लौकिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ना पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य एक दूसरे की अपेक्षा रखता है और एक दूसरे के सहयोग से, मदद से, परस्पर भावना से वह यलोक और परलोक दोनों बना सकता है। ये वैदिक संस्कृति है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि इस लोक में भी मुझे व्यवहारिक सत्ता में पूरा साथ देने वाली चाहिए, और केवल व्यवहारिक सत्ता को साथ देने वाली न होकर परमार्थ को भी सुधारने वाली मुझे पत्नी चाहिए। तो ये बात जब भगवान नारायण ने सुनी तो शास्त्र में लिखा है कि भगवान नारायण के आंख से आंसू आ गए कि कैसा मेरा भक्त इतना तपस्या, इतना कठोर तपस्या कर रहा है और मैं साक्षात नारायण इसके आगे खड़ा हूं, और ये जन्म रोकने के लिए यह पूरा साक्षात मोक्ष, सालोक्य, सारूप्य, साष्ट्य, सामीप्य आदि किसी प्रकार का भी मोक्ष देने में मैं समर्थ हूं, साक्षात मुक्ति देने में समर्थ हूं, और ऐसे परमात्मा मैं इसके सामने खड़ा होता हुआ भी यह संसार का भोग मांगता है, कैसी विडंबना है। भगवान का भक्त भगवान से यदि सांसारिक भोग मांगता है तो भगवान को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, भगवान देना नहीं चाहते। लेकिन वो बार बार रोता है, बार बार आग्रह करता है, तो दे तो देते हैं लेकिन रोते हुए देते, प्रसन्न होकर नहीं देते। ये हमारे पूरा भारतीय शास्त्र भरा पड़ा है, इससे दुखी होकर देते। और परमात्मा जिस वस्तु को दुखी होकर दे तो उससे तुम कैसे सुखी होगे? जिस वस्तु को देते समय स्वयं परमात्मा को दुख हो, उस वस्तु से तुम कैसे सुखी होगे? लेकिन संसार तो ये मानता है कि परमात्मा दुखी होवे तो होवे, हमको वस्तु मिलना चाहिए, हमको सुख होना चाहिए, हम सुखी होना चाहिए। लेकिन संसार के वस्तु, हर वस्तु चाहे कोई भी हो, परिणाम है दुखमेव। गीता का यह श्लोक ध्यान रख लेना, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम तामसम स्मृतम। ऐसे सुख को तो तामसिक और राजसिक सुख कहा, सात्विक रूप सुख तो वही नहीं सकता है। तो भगवान नारायण को बड़ा दुख हुआ, फिर भी उन्होंने मांगा है, कर्दम ने तो तथास्तु दे दिया। उसी वरदान के प्रेरणा से मनु महाराज देवहूति को लेकर कर्दम के पास चले गए, शादी हो गई। लेकिन कर्दम ऋषि ने शर्त रख दिया है कि हम तुम्हारी कन्या से शादी तो कर लेंगे, लेकिन एक बेटा हो जाने के बाद फिर हम सन्यास हो जाएंगे, ख्याल रख लेना। बच्चा हुआ बेटा हुआ कि हम सन्यासी हो जाएं, घर छोड़ देंगे, तुम्हारी बेटी को भी छोड़ देंगे, बच्चों को भी छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे सन्यासी होने के लिए। शर्त मंजूर? मंजूर, शादी हो गई। उसके बाद तो फिर कर्दम ऋषि तपस्या में लग गए तुरंत। भागवत का प्रसंग है, थोड़ा आज बता देते हैं। अब देवहूति पूरी की सेवा में, निष्ठा से सेवा में लगी हुई है, वर्षों हो गया है। पर्णकुटी में बैठे हुए हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, पर्णकुटी में है, कोई साधन सामग्री नहीं है। अब सेवा किए जा रही हैं, कभी ये नहीं पूछ रही है कि तुम कब तक समाधि लगाओगे, हमारा क्या होगा, समाधि लगाना था तो हमसे शादी क्यों की है? बहुत से लोग कहते हैं तुमको सन्यासियों के पीछे, सत्संग के पीछे चलना था तो फिर हमसे शादी क्यों की। बहुत सी माताएं कहती है ना, पति यदि सत्संग के लिए चला जावे कभी और पत्नी जाना न चाहे, ये तो आप भाग्यशाली हैं कि साथ साथ भी आ जाते हो और या रोकती नहीं है, नहीं तो ये समस्या बहुत में है। पति भी यही आरोप लगाता है सत्संग में जाने की इच्छा नहीं है और पत्नी जाती है, तुझे जब सन्यासी की तरफ सत्संग में जाना था तो पहले ही शादी क्यों किया, तो जोगी बनना थी कि पहले हमसे शादी क्यों किया। पत्नी भी यही कहती है तुझे जब वेदांत में लगना है था, सन्यासी के पीछे जाना था तो हमसे शादी क्यों की। देवहूति ने कहा तो कर्दम ऋषि समाधि से जग गए, बोले अच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो। तो बोले अब क्या इच्छा है, हर स्त्री शादी के बाद मां बनना चाहती है, और क्या इच्छा है, क्योंकि उसके जीवन की पवित्रता और पूज्यता तभी संपन्न हो सकता है जब वो मां बन जाती है, उससे पहले वो मां नहीं बन सकती है, मातृत्वमय पूज्य गरिमामय सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो हमारी इच्छा यही है। बोले तुम्हारी इच्छा है तो पूरा हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो, करती हो। कर्दम ऋषि ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारी इच्छा है तो भी पूरी हो जाएगी। तो देवहूति ने कहा कि इस अवस्था में रहने के लिए घर यह है, आजकल तो शादी से पहले कंडीशन रखते हैं कि फ्लैट अलग लोगे कि नहीं, बॉम्बे में अलग फ्लैट खरीदोगे तो हम शादी करेंगे तुमसे, और यदि अलग फ्लैट नहीं है तो मां बाप के पास तो हम रहने वाले नहीं है। लेव जी तो पहले कंडीशन रखते हैं, पहले अलग फ्लैट चाहिए, बढ़िया घर चाहिए।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunilanakka Nayanar, presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi hum sunenge aur ek Dakshin Bharati Sant ya Nayanmar ki kahani, jinka naam Thirunilanakkar hai. कावेरी नदी के तट पर चातमंगई नामक एक गांव है। उस गांव के एक ब्राह्मण परिवार में तिरुनीलनक्कर का जन्म हुआ। वे प्रतिदिन आगम विधान के अनुसार शिव पूजा करते थे। वक्त बीतता गया, तिरुनीलनक्कर का विवाह हो गया। वे शिव पूजा में अपनी जीवन व्यतीत करने लगे। मार्गशीर्ष का मास था। आर्द्रा उत्सव के दिन वे प्रतिदिन की पूजा से निवृत्त होकर आयवंती ग्राम के शिव मंदिर में विशेष पूजा के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ चले। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री साथ रखी थी। पर्याप्त समय तक पूजा करने के बाद भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ। वे मूर्ति के समक्ष ध्यानमग्न हो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। अकस्मात कहीं से एक मकड़ी भगवान के शरीर पर गिर पड़ी। भक्त तो प्रभु के ध्यान में खोए हुए थे। उनकी पत्नी ने सहज वात्सल्य से प्रेरित होकर मुंह से फूंक मारकर मकड़ी को हटा दिया। तिरुनीलनक्कर ने यह दृश्य देख लिया। भगवान के विग्रह पर इस तरह फूंक मारने से जूठन गिरने का संभावना हो सकता है, अतः पत्नी ने मानो कोई अपराध कर दिया हो ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी पत्नी का तिरस्कार किया। वे अकेले घर लौट आए। पत्नी मंदिर में ही रह गई और प्रभु के ध्यान में डूब गई। रात हुई, तिरुनीलनक्कर सोने लगे। नींद लगते ही स्वप्न में आयवंती गांव के मंदिर के इष्ट देवता प्रकट हुए और अपना शरीर दिखाकर बोले, देखो वत्स, मात्र वात्सल्य से तुम्हारी पत्नी ने जहां से फूंक मारी उस जगह को देखो और मेरे पूरे शरीर को देखो। जिस जगह पर तुम्हारी पत्नी ने फूंक मारी उस स्थान को छोड़कर मेरे सारे शरीर में मकड़ी के विष से फफोले निकल आए हैं। प्रभु यह कहकर अंतर्धान हो गए। सूर्य की प्रथम किरण से भी पूर्व भक्त नील निकल अपनी पत्नी को सादर घर ले आए। उनका गृहस्थ जीवन आनंद से चलता रहा। इन्हीं तिरुनीलनक्कर के घर और एक संत तिरुज्ञान संबंधर अपनी भक्त मंडली के साथ पधारे थे। तिरुनीलनक्कर ने सबका समान रूप से आदर सत्कार किया। अग्निहोत्री ब्राह्मण तिरुनीलनक्कर ने एक पिछड़ी जाति के भक्त तिरुनीलकंठ याल पानर और उनकी पत्नी को अपने घर में यज्ञशाला स्थल के समीप ठहराया था। इस कथा में भक्तिभाव को महत्व दिया गया है, बाहरी विधि विधान को नहीं। यदि पवित्र मन से कर्म किया जाए तो वह प्रभु द्वारा स्वीकार होता है। अंत में तिरुज्ञान संबंधर के विवाह के अवसर पर सारी भक्ति मंडली के साथ यह भी महाज्योति में लीन हो गए। इनके वेदमार्गी ब्राह्मण होने के कई प्रमाण पुराणकर चक्किलर द्वारा प्रयुक्त विशेषणों में से मिलते हैं। चारों वेदों के विख्याता, तीन अग्निवर्धित करने वाले, द्विजन्मा आदि ऐसे शब्द हैं। वेदमार्गी जिन आगमों को नहीं मानते उस आगम विधान के अनुसार से पूजा करते थे। अनुमतः ये कौंडिन्य गोत्र रहे होंगे। त्रिवेदी त्रिवेदी ब्राह्मणों में केवल इसी गोत्र के लोग शिव को यज्ञ के प्रधान देवता मानते थे और समस्त जपों में पंचाक्षरी को मूल स्थान देते थे। तिरुनीलनक्कर वैदिक उपासना पद्धति और आगम शास्त्र को समन्वय करके अभिषेक और अर्चना आदि षोडश उपचारों के साथ शिव आराधना की सामान्य सर्वमान्य पूजा पद्धति का रूप आकार देने वाले कौंडिन्य ब्राह्मणों में से थे। शैव धर्म में इस पूजा विधान को महत्वपूर्ण स्थान और मान्यता दिलाने का कार्य तिरुज्ञान संबंधर ने किया था। गर्व का विषय यह है कि 1000 वर्ष से भी पहले दक्षिण भारत के ब्राह्मणों ने द्रविड़ चिंतन धारा और वैदिक मार्ग का समन्वय करके जाति भेद को परे रखते हुए अनुकरणीय उपासना मार्ग को रूप दिया। वर्तमान युग में यह देखा जाता है कि आज भी हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव और कलह बना हुआ है। ऐसे में तिरुनीलनक्कर के जीवन का यह पक्ष हमारे लिए अनुकरणीय है।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் spiritual discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचण्डावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्तिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महंतं गोविंद योगींद्रमथ शिष्य श्री शंकराचार्यमथ पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति शांति

ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दहियाल स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी का प्रसंग चल रहा है। इसमें अभ्यास के लिए 89वां श्लोक 89

सयेवकृतकृत्यः या ये यौयो वर्गम् बदतीक्षिते सदार्चतः स्मरति। बड़ा ही सुंदर भाव है ये श्लोक का। जब अर्थ आप सुनोगे बड़ा उत्पटांग लगे। हे शिव, हे शंभो, मैंने इतना कर लिया फिर भी तुम प्रसन्न नहीं होते हो। नतिविर नुतिविस्तम ईशः, यह संबोधन है। ईशः ईश्वर शब्द का अर्थ सिर्फ शिव ही होते हैं और किसी को भी ईश्वर नहीं कहा जाता है। वेद में भी जहां ईशः शब्द आता है उसका अर्थ शिव ही होता है। ईश्वर शब्द शिव के लिए प्रयोग होता है। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः। भगवान शिव ही ईश्वर है। दक्षिण भारत में शिव को शिव नहीं कहते। ईश मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है, शिव मंदिर शब्द प्रयोग नहीं करते। ईश मंदिर, ईश दर्शन, क्योंकि वेद ने शिव के लिए ही ईश कहा, ईश्वर कहा है। त्यां आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान शिव के लिए संबोधन किया, हे ईशः। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत्। ईशावास्य आच्छादनीय, ये सारा जगत ईश्वर द्वारा आच्छादित है। अर्थात जगत व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है। जो आच्छन्न होता है वो व्याप्य होता है, जो आच्छादक होता है वो व्यापक होता है। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति, बड़ा वस्तु छोटे वस्तु को ढकता है, बड़ा वस्तु छोटे वस्तु को ढकता है। बड़ी चादर छोटी चादर को ढक देता है। इसलिए सबसे बड़ा परमात्मा होने के कारण सारे जगत को ढकने की क्षमता परमात्मा में ही है। जैसे सारे विश्व ब्रह्मांडों को आकाश ढक रहा है, आकाश के द्वारा सारे पदार्थ आच्छन्न हैं, आच्छादित हैं, ढके हुए हैं, आच्छादित हैं। ढकने के कारण दिखाई नहीं पड़ना, ये ढकने का अर्थ नहीं है, क्योंकि व्यवहार में कई बार पारदर्शी पॉलिथीन कागज के द्वारा कोई वस्तु ढकी होती है तो ढकने पर भी दिखाई पड़ता है। तो ये नहीं समझ लेना कि यदि आकाश के द्वारा सारा पदार्थ ढका होता तो हमको दिखाई कैसे पड़ रहा है। ये दिखाई ही नहीं पड़ने की तरह नहीं ढक रहा है। आकाश के द्वारा ढक तो रहा है लेकिन दिखाई पड़ते हुए ढक रहा है। दूसरा उदाहरण दें, जैसे इस कमरे में अभी सभी कुर्सी रोशनी से ढके हुए हैं,
यानी सभी चारों तरफ रोशनी व्याप्त है, रोशनी आच्छन्न है, तो रोशनी द्वारा आच्छादित है। इसीलिए एक महात्मा कहते थे, महात्मा की अपनी शैली होती थी, सभी की अपनी अपनी शैली होती है समझाने की। कहते हैं कागज उठाकर दिखाते थे और क्या दिख रहा है तुमको बोलो, लाइट दिखता है, कागज दिख रहा है कि लाइट दिख रहा है? सारी दुनिया तो यही कहेंगे कि हमें कागज दिख रहा है, लेकिन इस कागज को दिखाने वाला लाइट इसके ऊपर व्याप्त है और प्रकाश इस कागज को पूरी तरह ढका हुआ है, प्रकाश से ये कागज ढका हुआ है, प्रकाश का आवरण पड़ा है इसके ऊपर। रोशनी में यदि कोई पदार्थ दिखेगा तो सबसे पहले रोशनी दिखेगी, और हमारा वेदांत तो ये कहता है पदार्थ तो है ही नहीं, पदार्थ तो दिख ही नहीं सकता है, दिखेगा क्या? रोशनी। इसलिए तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा नाना छिद्र गटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिस्पंदते जानामीति तमेव भान्तमनुवात् तेतत्समस्तम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्व, सबसे पहले रोशनी दिखती है, उसके बाद पदार्थ दिखते हैं। रोशनी दिखे बिना पदार्थ दिखेगा? लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे पहले रोशनी दिखी और उसके बाद पदार्थ दिखा, कहता है कोई व्यवहार?

आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने हजार बार नमस्कार किए, साष्टांग दंडवत किए, नोति भी ही। आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने बढ़िया बढ़िया कविता की रचना करके बड़े दिव्याति दिव्य स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति भी की है, आपका गुणगान किया है मैंने। नति भी ही नति भी ही तुम ईशा पूजा विधि भीर, शास्त्रों में प्रसिद्ध जितनी भी पूजा की विधियां हैं उन सारी विधियों का प्रयोग करके मैंने आपकी पूजा भी की, अर्चना भी की। कभी गंगा जल से मैंने आपकी अर्चना की, कभी गाय के दूध से मैंने आपकी अर्चना की, कभी बेल पत्ते से आपकी अर्चना की, कभी कमल के फूलों से अर्चना की है। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, कभी कभी आपके सबसे प्रिय फूल मंदार पुष्प से भी आपकी अर्चना की है, मधु से आपकी अर्चना अभिषेक किया है, इच्छु रस से आपकी अर्चना की है। शास्त्र में बहुत द्रव्यों का निर्धारण किया है कि शिव जी की अर्चना करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किस द्रव्य से अभिषेक करना है बताया गया है। कल आकर पूछोगे हमसे, निरोग होने के लिए किस द्रव्य से शिव की अर्चना करनी है यह भी बताया गया है। रोग निवृत्ति के लिए द्रव्य विशेष से अभिषेक करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष द्रव्यों का निर्धारण किया है, किस द्रव्य से अभिषेक करोगे तो ज्ञान प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष द्रव्यों का निर्धारण किया है, संतति प्राप्ति के लिए। फलाने द्रव्य से यदि आप ईश्वर शिव की अर्चना करते हो, अभिषेक करते हो, तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, संतति की प्राप्ति होगी, आदि आदि बहुत से विकल्प हैं। है? पूजा विधि करते हो, श्रावण महीना जब आता है, है? कोई बेलपत्ते से भगवान की अर्चना करता है, कोई कमल फूल से भगवान की अर्चना करता है, कोई मधु से अभिषेक करता है, कोई फल के रसों से अभिषेक करते हैं, कोई गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, ये अलग अलग फल हैं। इच्छु रस के द्वारा अभिषेक करोगे तो वो अलग फल होगा, नारिकेल रस से अभिषेक करोगे तो उसका अलग फल बताया गया है। दूध से अभिषेक का अलग फल, दही से अभिषेक का अलग फल, पंचामृत अलग चीज है। पंचामृत तो सामान्य पूजा का अंग है, अभिषेक करने के लिए विशेष द्रव्य का निर्धारण किया है। शंकराचार्य ने कहा कि हमने कोई कसर नहीं रखी है, शास्त्र ने आपकी पूजा के लिए जो विधि बताई है सारे विधियों का प्रयोग करके हमने आपकी पूजा भी की है। नतिभिर नतिभिस्तमी सब पूजा विधिभिर ध्यान समा

0: और अनेक प्रकार के ध्यान और समाधि का विधान भी किया है। शिव ध्यान के विधान है, कौन से स्वरूप का ध्यान करना है। शिववास देखना पड़ता है, समझेंगे। आप नियमित यदि शिवजी का अभिषेक करते हो तो उसमें शिववास देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी अभिषेक करते हो तो शिववास देखना बहुत जरूरी होता है। पंचांग में उसका विधान है शिववास, जब चाहो तब, इच्छा हो गई तो पंडित को घर में बुलाया और अभिषेक शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है, वास देखना पड़ता है। शिवा अलग अलग तिथि अलग अलग मुहूर्त में अलग अलग स्थान में वास करते हैं, ये पंचांग में ये निर्धारण किया है। कभी मशान में वास करते हैं, मशान में, शमशान भूमि में, कभी पाताल में वास करते हैं, कभी स्वर्ग में वास करते हैं, कभी गौरी सन्निधा में वास करते हैं, पार्वती के सान्निध्य में रहते हैं, और कभी कैलाश में निवास करते हैं, कभी धरती में निवास करते हैं, कभी भोजनालय में भोजन करने के लिए जाते हैं तो दिन भर वहीं बैठ जाते हैं। वो शिववास का ही विधान है। वो देखना पड़ता है शिव कहाँ है। गौरी सन्निधि में यदि आप उपासना करते हो तो दाम्पत्य जीवन में बड़ा आनंद आता है। जिस समय भगवान शिव गौरी के साथ बैठे हुए हों उस समय तुम शिव जी के अभिषेक करो। ये विधान ही है सर, अभिषेक का विधान है। अब मशान घाट में बैठे हो और तुम अभिषेक करो तो फिर उसका दूसरी फल है। पाताल में बैठे हो और उनका अभिषेक करो, इत्यादि इत्यादि। तो पूजा विधि वीर ध्यान समाधि वीर, और बहुत बार सब छोड़कर फिर मैंने आपका एकाग्र भाव से चित्त में ध्यान भी किया है, इसके बावजूद भी हे ईसा त्वम न तुष्ट, फिर भी तुम आज तक प्रसन्न नहीं हुए हो, फिर भी आज तक प्रसन्न नहीं हुए हो। ये दूसरी लाइन बड़ा खतरनाक है। पहले लाइन तो ठीक ही है, भक्त भगवान के साथ उलाहना देता है, लेकिन ये बड़ा विचित्र शब्द प्रयोग किया शंकराचार्य।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that You will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: आप क्या हमें समझा रहे हैं? भोजन तो आया नहीं, तो भाई आपके प्रारब्ध में कल भोजन ही नहीं था। आज जंगल में गए होते तो थाली लेके कोई आता था, हाँ? ये प्रारब्ध का सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, प्रारब्ध में जितना धन है, जिसकी जितना धन प्रारब्ध में वो जाने दीजिए, आपको जब जितनी आवश्यकता है वो आपको मिल जाएगा, हाँ? आपको जितना आयुष्य की जरूरत है आयुष्य मिल जाएगा, आयुष्य के लिए भी कोई चिंता मत कीजिए। आपको जितने पुत्र की जरूर है या न पुत्र की भी जरूर है, उसको लेट हिम डिसाइड, हाँ, इज द बेटर जज। और उनकी इच्छा से कुछ हो गया तो उसका ध्यान भी वही रखेंगे, आपके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं आएगी। और कीर्ति जो, प्रतिष्ठा जो, यानी तीनों ऐषणा जो है, परमात्मा का नाम लेंगे तो ये तीनों ऐषणा का भार जो है वो परमात्मा ही उठा लेंगे। हमें सिर्फ ये स्तवन, ये स्तोत्र, ये कवन करना है। ये होता है कि नहीं, इस प्रकार देखने के लिए भी आप थोड़ी क्षणों के लिए छोड़ देना और देखना, ये आपके अनुभव की बात बनेगी। हमारा यहाँ 100 बार बताने से भी कुछ नहीं होगा। कहते हैं, महेश्वर से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है, महिम्न से श्रेष्ठ कोई स्तुति नहीं है, और अघोर जो मंत्र है उससे श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। ऐसा कहते हैं। देखिए, कभी ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, पर जरूरी नहीं, गुरु तो 24 घंटा नहीं रह सकता, साथ बोल नहीं सकता, तो बीच में कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, हमें डर भी लगता है, भय भी लगता है, तो भाई क्या करना, तो तब ये जो मंत्र है वो मंत्र का पाठ आपको दिया जाता है। अघोर, घोर यानी पूरा तमस, अंधकार, और अघोर जहाँ घोर नहीं है, जहाँ क्लेश नहीं है, जहाँ अविद्या नहीं है, अंधकार नहीं है,

0: रूपेभ्यः, ये मंत्र दिया जाता है। ये मंत्र आप कीजिए तो जैसे सर्प काटता है तो सर्प दंश निवारण का जो मंत्र है वो मंत्र, वो जो जिसको सर्प काटा है उसे न जाना होता है मंत्र, उसका अर्थ उसे न पता लगने पर भी डंस जो है, जो जहर जो है वो निकल जाता है। ऐसे ये मंत्र का अर्थ भी अगर नहीं पता है, ये मंत्र किसके लिए प्रयोजन किया है वो महादेव का भी हमें ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, मंत्र का उच्चारण भी है वही काफी है। जो ईश्वर सचराचर व्याप्त है उसकी इतनी तो महिमा होगी ना कि नाम ही काफी हो जाएगा। हाँ, अर्थ नहीं समझे, नहीं तो वो ईश्वर कैसा? सब समझ में आएगा तो समझ में आ ही जाएगा कि वो परमात्मा मैं हूं। न समझ में आने पर भी कोई असर दिखला देगा तो उसका नाम है ईश्वर। और ये जो चमत्कार है वो यही हो सकता है, और यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ चमत्कार है कि मन और वाणी का विषय नहीं है, उसे मन और वाणी को पहुंचाने की हम चेष्टा कर रहे हैं। और इसमें जो चेष्टा अधूरी रह जाती है वो जो गुरु शास्त्र की जो कृपा है, आत्मा की जो कृपा है, ईश्वर की जो कृपा है, वो ये जो डिस्टेंस जो है, ये जो जगह जो है वो परमात्मा उसे पूरी कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हम बड़े बड़े ये सब जितने बड़े मैकेनिकल प्लांट जो चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो चल रही है, आपको पता है उसमें जीरो एरर तो है ही। वो एरर कौन भरता है? वो मशीन में, सब क्लॉक में जितना भी मशीन से काम चल रहा है उसमें एरर है ही। वो एरर की पूर्णी कौन कर रहा है? कौन अदृश्य तत्व कर रहा है? इवन योर क्लॉक इज नॉट दैट प्रिसाइज। ये क्लॉक से आपने शुरू किया प्लांट का काम, पर देश और काल से क्लॉक बदल भी जाता है, तो क्लॉक बदलता है एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहां से यहां हो जाती है तो भी आपका प्लांट ऐसे ही चलना है। तो ये जो बीच वाली जो घड़ी है जिसका जो ह्यूमन एरर जो है वो आप करेक्ट नहीं कर सकते, वो करेक्ट कौन कर रहा है? क्षण क्षण में वो, अगर वो करेक्शन न हो ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बैलगाड़ी में चलना पड़ेगा। इवन यू कांट कंट्रोल अ पेट्रोल पंप प्लांट, वो सब मशीन से, सब कंप्यूटर में चलता है, पर वो जो एरर का करेक्शन जो है वो परमात्मा कर रहा है। हाँ, ये पूर्णी जो है वो परमात्मा कर रहा है। तो हे परमात्मा, आपको जानने के लिए जितना खींच सके उतना मन बुद्धि वाणी में ले जाता हूं, थोड़ी जो पूर्ति है वो आप कर दीजिए, पर हमारी जो मन बुद्धि वाणी जहां तक हम ले जाते हैं ना वो 100% होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहां आते हैं, ये प्रवचन से इतना ही बताना है कि ये जो है एफर्ट्स जो रखनी है वो पूरी 100% रखनी है, वहां इधर से उधर नहीं होगा, यहां एक चीज भी नहीं चलाई जाएगी। हाँ, तो ये ऐसा कहा है, ये अघोर मंत्र है, दीक्षा दानम तपस्तीर्थम। अब क्या कहते हैं कि ब्रह्मचर्यादि आदि अनेक दीक्षाएं हैं, गाय, पृथ्वी, सुवर्ण का अनेक दान कहा गया है, दान की भी महिमा है, कृष्ण चांद्रायण व्रत जैसे अनेक व्रत और तप है, काशी पुष्कर आदि अनेक तीर्थ जो है, तीर्थ यात्राएं कही गई है, शास्त्रीय ज्ञान यज्ञ यागादि जो क्रिया है उसका, उसमें से कोई भी महिम्न स्तोत्र जो है उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो क्या ये सब हम करना छोड़ दे? बोले ये सब करना छोड़ना नहीं है, ये अवश्य चित्त शुद्धि के साधन है, पर सबकी ऐसी अवस्था नहीं होती कि तीर्थ कर सकते हैं, सबकी ऐसी अवस्था नहीं होती कि दान कर सकेंगे, शास्त्र पढ़ सकेंगे। भाई, सबकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं होती कि शास्त्र के इतने जो अभी जहत अजहत लक्षण नाम सुन के ही कैसा हो जाता है। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ क्या कहा है कि दान करना तो श्रेष्ठ है पर दान नहीं कर सके तो ये कर, एटलीस्ट महिमा कीजिए, तप नहीं कर सके तो ये कीजिए। हम जब ये बताते हैं कि ये सबकी जरूर नहीं है तो हम ये भी रख देते हैं और यही नहीं करते हैं, उससे तो अच्छा है कि दान, जप, तप, याग, यागादि, तीर्थ सब कुछ कीजिए। पर यहां हमारे ऊपर कृपा की है कि ये सब करने में आपको समय नहीं है, ऐसी अवस्था नहीं है शरीर की कि आप ये सब कर सके, तो घर बैठ के ये पाठ किया तो भी पर्याप्त है, ऐसा कहते हैं। ये पाठ परमात्मा की वो 16वीं जो कला जो है, पाठ की जो 16वीं कला है, उस तक कुछ भी यज्ञ यागादि पहुंच नहीं सकते, ऐसा कहा है। अब कहते हैं स्तोत्रकार का नाम निर्देश किया है, कुसुम दशन नामा सर्व गंधर्व राजह। पुष्पदंतक नामक सब गंधर्वों के राजा, चंद्र की कला जिसके मुगुट में है और जो महादेव के सेवक है, ये जो पुष्पदंत गंधर्व थे ना, वो महादेव के सेवक थे, गण थे। वो गंधर्व महादेव के क्रोध से, अपने प्रताप से भ्रष्ट हुए थे। कल जो बात की ना, परमात्मा के गण अपने साथ क्या रखते हैं, स्मरहर पिशाचा सहर सहचरा, तो ऐसे परमात्मा के श्रेष्ठ गण थे, सहचर थे, पर कोई पाप से भ्रष्ट हुए थे। परमात्मा ही भ्रष्ट करते हैं पाप से। क्यों भ्रष्ट करते हैं? क्योंकि परमात्मा को वो जो उसका, हमने कहा ना कि एक कर्म भी बाकी रह गया तो तकलीफ होगी, तो यहाँ एक कर्म भी जो बाकी रह गया तो परमात्मा उससे भी पुष्पदंत को छुड़ाना चाहते थे। इसीलिए ये गंधर्व की योनि, गण से तो गंधर्व की योनि कम ही है ना, परमात्मा के गण से, तो इसीलिए गंधर्व की योनि दी। बोले कि तू मुझसे ये दूर रह के, गंधर्व की योनि को भुगत के, ये जो तेरे पाप कर्म जो है वो आप समाप्त कर दो, फिर से आपको मैं आपके गण के रूप में मैं ले लूंगा। तो कहे कि आपने प्रताप से भ्रष्ट करके पुष्पदंत को कृपा ही की है, इसीलिए वो परम दिव्य महिमन, देखिए ये परम दिव्य महिमन ऐसे भ्रष्ट नहीं होते, गंधर्व राज नहीं बनते, तो ये दिव्य महिमन बनाने की चेष्टा नहीं करते, ये समझ में आया। और इसीलिए ये उनके भीतर भक्ति और ज्ञान का प्रादु समझना क्या है कि कभी हमको ऐसा लगता है कि हम ये गुरु की इतनी सेवा करते हैं, हम इनके लिए इतना करते हैं, हम इतनी भगवान की भक्ति करते हैं, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। हा? परमात्मा का उपकार मानिए कि आपके ही साथ हुआ, भाई परमात्मा ने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो रासलीला में होता है। रुक्ष्मणी जी है, उनकी जो नथ जो है, हाँ जो ऑर्नामेंट है नाक की नथनी, वो गुम हो जाती है। किसने गुम की? तो बोले कृष्ण परमात्मा ही गुम की। क्यों गुम की? तो नरसिंह मेहता जी गए थे ना रासलीला देखने के लिए, तो रुक्ष्मणी जी के मन में थोड़ा कम भाव आ गया। कैसा भाव आ गया? कि अरे ये पृथ्वी लोक का, मनुष्य लोक का जो है व्यक्ति, ये जीव, ये कैसे मेरे प्रभु के दर्शन कर सकते हैं? मैं ही हूँ ज्ञानी, मैं ही पवित्र हूँ और मैं ही दर्शन करने योग्य हूँ, मैं ही अधिकारी हूँ, इनका अधिकार कहाँ? ऐसा गुमान आ गया तो क्या हुआ? परमात्मा ने तुरंत वही क्षण, देखिए एक बात याद रखना, ये जो गुरु है, गुरु रूपी परमात्मा है, कोई मूरत नहीं देखते तोड़ने काटने के लिए। जिस क्षण दिखा उसी क्षण उसका पार, क्योंकि रासलीला है, पूरे जितने अधिकारी हैं सब इकट्ठे हुए हैं ना गोपियों के रूप में, वो सब देवी देवता ही थे, इतने सारे मौजूद थे, प्रकृति भी मौजूद थी। हाँ, प्रकृति यानी जो चंद्रमा थे, वायुदेव थे, सब कोई मौजूद थे वहां, और इन सब की प्रेजेंस में, इन सब की उपस्थिति में कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं सोचा कि रुक्ष्मणी जी ने कोई कम तप नहीं किया होगा कि कृष्ण परमात्मा की पत्नी बन के आए। हाँ, अतिशय तप किया होगा कि इतना नित्य सानिध्य मिला, तो वो कोई कम अधिकारी नहीं थे, इतने श्रेष्ठ थे, तो भी इतने श्रेष्ठ रुक्ष्मणी को इतने लोगों के बीच में अपमानित करूंगा तो क्या होगा, जो होगा वो। मेरे शरणागत का इतना भी बुरा मैं नहीं देख सकता, कृष्ण परमात्मा ने कहा, क्योंकि रुक्ष्मणी जी का ये भाव मुझसे उन्हें दूर कर देगा, ये डर लगा। परमात्मा इतने कृपालु होते हैं, आपको शरणागत, आपको उपस्थिति होना है, और इस भर सभा के बीच, पर बुरी रासलीला के बीच, नरसिंह मेहता जी के बीच, शिव जी भी आए थे वहां, और उसके बीच उन्होंने ये नथ उनकी गुमा दी, और उनको माने कि मान हानि की है, गुमान जो है वो वही क्षण निकाल दिया। तो यहां है कि आपको जो पद भ्रष्ट किया, इसी लिए आप ये स्तोत्र की रचना कर सके। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जब भी कोई भी गुरुजन, कोई भी परमात्मा का ऐसा कोई भी कर्तृत्व जो हमें अच्छा नहीं लगे, भाई अभी कहना जरूरी क्या था, हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतना ध्यान रखते हैं, तो भी इसका सुनना पड़ता है, इसीलिए सुनना पड़ता है, सेवा नहीं करनी है तो नहीं करना पर अगर सेवा करेंगे, अगर ध्यान रखेंगे गुरु का, तो ये सुनना ही पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? आपके उद्धार का। देखिए, जो जैसा होता है वो उसी को, पानी के साथ पानी ही मिल सकता है ना। अब ऑयल डाल दिया तो वो तो तरेगा और किनारे पे जाके छुट जाएगा। पानी से मिलना है तो पानी क्या करता है? पानी अपने स्वभाव को, नदी को ही अपने में आकर्षित करता है, समुद्र। क्यों? क्योंकि भले मीठा है पर जल तत्व है। मिल जाएगा। तो आपका स्वभाव कैसा भी हो, एक भी चीज, एक भी विचार, एक भी गलत विचार आपको आया तो तत्क्षण, वही क्षण उसका खंडन किया जाएगा। हमें क्या करना है? बिना अहंकार हमें सिर्फ उपस्थित रहना है और ये याद रखना है कि कुछ अच्छा मेरे जीवन में होने वाला है, इसीलिए ऐसा हुआ है। शुरुआत में पुष्प दंत जी ने जो दंत कथा कही थी वही ये श्लोक से मिलती है। यानी ये जो कथा जो है, पुष्प दंत जी की स्तोत्र है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये प्रसंग हुआ है ऐसा वेद और शास्त्र और ऋषि मुनि ऐसा विधान देते हैं, साक्षी देते हैं। स्तोत्र की महिमा कहते हैं आसमाप्तम इदम स्तोत्रम करके, कि ये जो स्तोत्र है वो शुरू से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, मांगलिक है। महादेव जी के वर्णन रूप ये गंधर्व रचित स्तोत्र अब समाप्त होता है। स्तोत्र पाठ के अंत जो हमने प्रार्थना की, इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमद् शंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियताम् मे सदाशिवः। ये जो वाङ्मयी पूजा जो है, श्रीमद् परमात्मा शंकर के चरणों में मैंने अर्पण की है, ये पूजा से देवादिदेव शंकर मेरे ऊपर प्रसन्न हो। याने यहाँ क्या कहा है कि आपके पास कुछ भी श्रेष्ठ हो, आपका ही हो, है ही तो पुष्पदंत जी की ही बुद्धि, उन्हीं का स्तोत्र है, यू कैनॉट डिनाई दैट। फिर भी क्या होता है कि मेरा जाने के मेरा ये नहीं है, ऐसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। हमारे पास कितनी भी हमारी विद्या हो, हमारे गुण हो, हमारे पास कुछ भी सराहनीय हो, जो बखान करने लोग योग्य हो, वो क्या है? वो सब कुछ भले ही हमारा हो, फिर भी उसके लिए दीन भाव रख के चलिए। उसके लिए दीन भाव होना चाहिए कि नहीं, ये आपका ही है। और ये खाली मुख का भाव नहीं चाहिए, अरे सब कुछ आपका ही है, नहीं, ये भाव की परमात्मा को आवश्यकता नहीं है, हृदय से वो लगना ही चाहिए। ये क्या है? हमारा ही अहंकार कम होता है, और जीरो अहंकार हो गया तो परमात्मा प्राप्त ही है, यही है। स्तोत्र के अंत में कहते हैं, श्री पुष्प दंत के श्री पुष्प दंत मुख पंकज निर्गते न। ये स्तोत्र के पाठ से शंकर भगवान की प्रसन्नता कैसे हुई? तो गुरु की प्रसन्नता ऐसे हुई, श्री पुष्प दंत के मुख कमल में से निकले हुए पाप को हरण करने वाले और शंकर के प्रिय ये स्तोत्र को मुखपाठ करके समाहित रह के, यानी सावधान चित्त से मुखपाठ करके, यानी सावधान चित्त से। देखिए, ये एक मन के चांचल्य को दूर करने का प्रकार है। काय वांग मनः कार्यमुत्तमम् पूजनम जपश चिंतनम क्रमात्। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको तीन प्रकार के आदेश दिए जाते हैं। कैसे? तो भाई, काया रूपी पूजन कीजिए। काया रूपी पूजन क्या, क्यों विधान किया है? क्योंकि काया से जब पूजन करेंगे तो हाथ फूल हार चढ़ाने में लगेंगे, आंख से देखेंगे तो कहेंगे परमात्मा के सर पे पुष्प चढ़ाया है, पेट पे चढ़ाया है, कहाँ चढ़ाया है। तो आंख परमात्मा को देखती रहेगी तो दूसरी चीजों को नहीं देखेगी। पर्पस क्या है? कान जो है, मुख से परमात्मा का नाम बोलते, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, मुख से बोलते हैं ना, तो मुख कोई और कुछ नहीं बोलेगा। ये तो पूजा करते करते, ए वो दूध चढ़ा दे, चलो वो पेपर वाला आ गया, इसका फोन आ गया, उसको बोल दे मैं अभी पूजा कर रही हूँ, नमः नमः, ऐसा नहीं चलेगा। काया से, पूजन से, और कान जो है, आप जो बोलते हैं उसी को सुनना है कान में। पूजा करते वक्त, हाँ, मोबाइल का अच्छी बात बताई, वो मोबाइल को क्या करते हैं पता है? पूजा करते वक्त केशवाय नमः, हाँ भाई मेरे मोबाइल आया ना अभी, तू स्पीकर ऑन कर दे, वो मोबाइल में लाउड स्पीकर होता है ना, तो स्पीकर ओम केशवाय नमः, और यहाँ से वो बोलती रहती है, जो भी फोन है वो एक लड़की लेके आपको फोन ऐसा रखती है और आप वो केशवाय नमः करते, ऐसा नहीं, जो बोला गया वही कान में जाना चाहिए। तो जो श्लोक मुख से बोलते हैं वही कान में जाए, ये पूजा की विधि, ये हमें बांधा है पूजन की विधि देके। ये कोई ऐसी नहीं, दो सेकंड दो क्षण के लिए पूजा कीजिए, पर पूरी ऐसे ही पूजा कीजिए। तो यह क्या कहा है कि समाहित होके, सावधान होके, तो ये पूजा के नियम आपको दिए गए हैं, क्योंकि और सब चीज से थोड़ी क्षण के लिए परमात्मा के ऊपर मन एकाग्र हो, एकाग्र चित्त जब होता है तब जो शाश्वत शांति आपको चखने मिलती है वो संस्कार बन जाते हैं, और वो ही संस्कार आपको दोबारा पूजा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। इसीलिए ये कहा है। फिर इसमें ये जो शांति है बिना पूजा आप प्राप्त करने के लिए आप अधिकार बढ़ेगा, तो बिना पूजा, बिना भगवान की मूर्ति, बिना चंदन किए, बिना फूलहार चढ़ाए भी आप समाहित होंगे, तब आपको वाणी का तप बोला जाएगा कि भाई वाणी से सिर्फ परमात्मा का नाम ले लिया, माला कर ली तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि उसमें भी मन आपका शांत होता है। अच्छा, माला करे बिना भी आप ऐसे ही शांत बैठ सकते हैं, तो आपको निधि ध्यासन तप दिया जाता है। मैं कहती हूँ ना, भाग्यशाली है कि सब कुछ दे दिया है हमें। तो ये निधि ध्यासन कब दिया जाता है? ये मानसिक तप है। मानसिक तप में भी सरल चिंतनम विरल तप परम, विजातीय वृत्ति प्रवाह को तिरस्कार करके सजातीय वृत्ति प्रवाह से, सजातीय वृत्ति प्रवाह यानी एकमात्र ब्रह्म के जो स्वरूप लक्षण है, ब्रह्म के स्वरूप लक्षण का एक तानत्व में तद्धि निधिध्यासनम उच्यते, एकतानता से, एकाग्रता से चिंतन किया। अच्छा, उसमें भी आप सक्षम हो गए, चिंतन करने के बाद जो आनंद है, जो निर्गुण निराकार जो क्षण है, जिसमें कोई देह भाव नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, फिर भी आप जागृत जिंदा है, ये सब कुछ है और आप जाग रहे हैं, वैसी क्षण बिना निधि ध्यासन किए आ जाए, उसे समाधि कहते हैं। उसमें भी सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि है। सविकल्प समाधि यानी वो समाधि बीच बीच में टूट के, तार टूट टूट के फिर से लगाना पड़ता है। और निर्विकल्प समाधि क्या है? निर्विकार तया वृत्तिया, विकारहीन वृत्ति। विकार कैसे है? निर्विकार यानी साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, राग द्वेष नहीं चाहिए, ऐसी विकार निर्विकार स्थिति है, उसको ब्रह्माकार बनानी है सजातीय वृत्ति से, अखंडाकार वृत्ति से। अखंडाकार यानी आकार का खंड नहीं हो, मेरा मुझसे किया हुआ, मेरा ही चिंतन मुझसे किया हुआ, मेरे द्वारा किया गया चिंतन, इसमें आकार अखंड रहता है, ये अखंड आकार वृत्ति है। देखिए, कोई मूर्ति है तो वो देव है, आराध्य देव है, उपास्य है, मैं उपासक हूं, और हम दोनों के बीच में क्या है? उपासना चल रही है, ये त्रिपुटी बन गई, तो अखंड आकार वृत्ति, वृत्ति टूट गई। यहां तो वृत्ति भी नहीं तोड़नी है, आकार ऐसे ही रखना है और चिंतन भी करना है, तो वो एक ही तरह से हो जाता है, अहम वृत्ति से ही वो हो सकता है, ये अखंड आकार वृत्ति से चिंतन करना। तो निर्विकारतया वृत्ति ही ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिम विस्मरणम सम्यक। आहा, बार बार ब्रह्माकार बनाने की जब आपको जरूर नहीं पड़ती है, वृत्ति का विस्मरण हो जाता है, सिर्फ मेरे अहम का ही याद रहता है, स्मरण रहता है, स्मृति रहती है, समाधि ही ज्ञान संगमितः, ये ज्ञानियों की समाधि है। इस ज्ञानियों की समाधि तक पहुंचाने का ये स्वल्प अल्प निर्दोष प्रयत्न हमने किया है, ऐसा पुष्पनंद जी कहते। इसलिए सावधान तया सुनू, सावधान चित्त से पढ़ने से जो भूतपति महादेव जी है वो प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही महादेव स्वरूप परमात्मा गुरुजन जो भी कुछ हमने श्रवण किया उससे ये सब कुछ यानी मेरा पूरा मेरे द्वारा यानी हम सबके द्वारा वाणी में से, रूप में से, चक्षु में से निकले हुई सब हमारी वृत्ति परमात्मा के प्रसन्नता का कारण बने, ऐसी यहाँ प्रार्थना है। और वो कब बन सकती है? जब परमात्मा के प्रीत्यर्थ ही कर्म करे। परमात्मा के प्रीत्यर्थ यानी उसमें उपनिषद का जो वाक्य है वो आपके लिए जरा जरूरी है, काम का है, इतना बता के हम समाप्त करेंगे। उपनिषद का क्या वाक्य है? भाई हमको कैसे पता लगे कि परमात्मा के लिए प्रीत्यर्थ है? तो उपनिषद ने बताया है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतत। तम सौ परित्य विविनक्ति धीरा। क्या कहा है भाई, श्रेय और प्रेय ये दोनों चीज आती है सामने। कोई भी प्रारब्ध वशात कर्म भोग आ गया ना सामने। कर्म भोग किस प्रकार आएगा तो बोले शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच प्रकार से, ये पांच प्रकार का रूप लेके हमारे प्रारब्ध वशात भोग आके सामने खड़ा रह गया। हाँ, ये भोग व्यक्ति के रूप में भी आएगा, वस्तु के रूप में भी आएगा, परिस्थिति के रूप में भी आएगा। ये भोग आके खड़ा रह गया। अब सोचना है कि इसको एंटरटेन करने में मैं ज्यादा प्रपंची बन जाऊंगा, मैं ज्यादा विषयी बन जाऊंगा, परमात्मा का विस्मरण हो जाएगा। ये सामने वाला व्यक्ति मात्र प्रपंच करता है, मात्र सुख भोग है, इसके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की कोई चेष्टा है और दिखे कि इसके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं है, क्या इस व्यक्ति को मिलने से मैं ज्यादा संचल हो जाऊंगा? मैं जितना साधन कर रहा हूं कि एक घंटा भी आ रहा हूं, क्या वो भी छुड़ाने वाला ये व्यक्ति है? ये सोच लो, और जवाब हां आए तो तुरंत वहां से निकल जाओ। किसी से किसी का भय नहीं रखना। क्या भय रखना है, वो है संभालने वाला। किसी को पकड़ने छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जवाब ना आया कि नहीं, इससे मेरा श्रेय कर्म तो नहीं होने वाला है, ये प्रेय कर्म होने वाला है, और जितना परमार्थ मैं कर रहा हूं ना वो भी छुड़ाने वाला है ये व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को छोड़ दो। समझ में आया? ये श्रेय प्रेय शब्द रूपी विचार आया। भाई ये शब्द मुख में से निकालने से मेरी वृत्ति श्रेय वाली, मैं परमात्मा के नजदीक जाने वाली हूं या परमात्मा से दूर जाने वाली हूं? मैं प्रपंची बनने वाली हूं? हाँ, समाज ही मेरे भीतर जाने वाला है। जवाब हां आया तो मुख में से वो वाक्य नहीं निकाले। ये दृश्य देखने से मेरी वृत्ति चंचल होने वाली है, विषयी होने वाली है या परमार्थ में जाने वाली है? जवाब हां आए तो वो चीज देखना, वो चीज खाना, वो चीज पहनना, वहां जाना। पहले सोच लीजिए कि आपकी भगवत आकार वृत्ति इधर से उधर कभी भी ना हो। व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति हर क्षण आपके जीवन में आते रहते हैं। श्रेय और प्रेय का विचार उनको नहीं करना है, हमें करना है। और हम दोष किसको देते हैं? वो व्यक्तियों को देते। देखिए मेरा तो समाज, मेरे व्यक्ति, मेरा तो कुटुंब भी ऐसा है ना कि मैं हमको प्रपंच में ही खींच जाते हैं। फॉल्ट डज नॉट लाई विद देम, फॉल्ट लाइज विथ मी। आपको पता लगना चाहिए कि कैसे मैं प्रपंची बन रहा हूं, कैसे मैं घसीट रहा हूं, तो वहां से बंद आपको करना है। उनका फॉल्ट नहीं है। उनको दो उपदेश देने की भी दूसरी गलती साधक क्या करते हैं कि थोड़ा सुन लिया और उपदेश देने लगते हैं। अरे उन्होंने वो प्रयत्न किया, यहां आके सुनने की चेष्टा किए। हाँ, रेडीमेड किसको पचता है? रेडीमेड नहीं, रेडीमेड तो भगवान के दर्शन भी रेडीमेड नहीं पचते हैं। कैलाश मानसरोवर जो कोई वो हेलीकॉप्टर में जाता है मरण प्राय हो जाते हैं। हाँ, मेनी पीपल हैव डाइड, सीधे चले गए, एक्लाइमेटाइजेशन नहीं हुआ। नेपाल से जाके सीधे जाना है तो जाइए, हर्ज नहीं है, पर क्या है, डेंजरस तो है। यहां से इतना प्रयत्न करके आप गए तो क्या हम अच्छी अच्छी बातें सुनी तो हमें नहीं बतानी है? आपको बतानी है, पर किसको बतानी है? जो ये प्रेय मार्ग को पसंद करता है उसे बतानी है। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं आप? कृष्ण परमात्मा ने कहा है शिष्य या गुरु, अरे शिष्य या पुत्र, ये दोनों नहीं है। तो ये बात है अर्जुन, आप ये जो शुद्ध विद्या जो मैंने दी है, ब्रह्म विद्या जो दी है, वो ब्रह्म विद्या किसी को नहीं देना। ये ब्रह्म विद्या जो आप यहां से सुन रहे हैं उसका सदुपयोग मात्र आपके लिए ही करना, आपका चित्त शुद्ध करना, आपको अधिकार बनने के लिए ये ब्रह्म विद्या काम लगेगी। अन्यथा दूसरे को कहने की चेष्टा मत करना, वो नष्ट होती जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कब हम जीरो पे आ गए। हाँ, तो बहुत ही सावधानतया आप देखिए। एक अंतिम बात मैं कर दूं, आप ऐसे बन जाइए। देखिए किसी का अच्छा करने के लिए शरीर से नहीं दौड़ना है, कष्टदायक है। थोड़े साल दौड़ सकेंगे, मन से किसी का सोच सकेंगे, पर मन भी हो जाता है, शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। तो क्या करना है? किसी का अच्छा करना ही है तो क्या करना है? भाई आप ऐसे हो जाइए, आप वो परमात्मा, वो ब्रह्म तत्व को ऐसी क्षण ऐसे प्राप्त कर लीजिए कि आपका स्मरण भी कोई करेगा और उद्धरण हो जाएगा उसका। द्रौपदी जी ने स्मरण मात्र किया ना, कृष्ण परमात्मा कैसे थे, इतने महिमावान थे, इतने ब्रह्म से भरे हुए थे, इतने सच्चित आनंद में थे, एक लेश नहीं था संसार का, तो नाम लेने से कोई उद्धरण हो जाता है, तो आप ऐसे बन जाइए ना, यू हैव द कैपेसिटी। आप यही क्षण किसी का भला चाहते हैं तो कोई हमारा नाम ले और उसका काम हो जाए, ऐसे बन जाओ। हाँ, ये बड़ी से बड़ी सोशल सर्विस है, ये बड़ी से बड़ी काम हम कर सकते हैं। तो हमारा जो गंतव्य है, पहुंचना कहाँ है, वो परम तत्व तक, यही गंतव्य रख के ये सब स्तुति है, स्तोत्र है, पाठ है, ज्ञान है, ये न के न प्रकारेण हमारी वृत्ति भगवद्मयी बनी रहे, ऐसी ही परमात्मा और गुरुजनों से हम प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 31. Thank you.

हम तो अब यहां पर टीकाकार जो है मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं, संकेत किया पूर्वम, पूर्व काल में जो है गुरु भी, गुरुओं ने, ऋषियों ने क्या किया, तो उसके लिए संकेत कर रहे हैं कि पद वाक्य प्रमाणतः, पद और वाक्य, उन पद और वाक्यों के प्रमाण को लेकर के। पद क्या है तो पद के लिए संकेत किया गया। पद किसे कहते हैं तो सुप्तिंगंतम पदम। पद कौन कहलाता है, जिसके अंत में सुप व्यक्ति का नियोजन किया गया हो अथवा तिगंत विभक्ति का नियोजन किया गया हो, ऐसे उस शब्द स्वरूप को पद शब्द से कहते हैं। जब उसके साथ में सुप विभक्ति का संबंध हो जाता है अथवा तिंग विभक्ति का संबंध हो जाता है तो वह शब्द एक अर्थ से समन्वित हो जाता है और वह जो अर्थ है वो उस संबंध को, उस लक्ष्य को प्रतिपादन करने वाला हो जाता है। इसलिए पद शब्द का, शब्द न कह करके क्या कहा, पद। तो अब जो है सब शुभ विभक्ति हो गई तो ये विभक्तियों को हमारे यहां ग्रामर में क्या कहा, कारक। क्या कहा, कारक। अंग्रेजी में क्या टेंस आदि कहते हैं तो कारक। अब जो है कारक का तात्पर्य क्या है तो कारक को विभाजित किया गया, उन्हीं कारकों को लेकर के विभक्ति शब्द का प्रयोग किया, उन कारकों में सात विभक्तियों की चर्चा की गई, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तम। अब ये विभक्तियां जब कर दी गई तो इन विभक्तियों को लेकर के ही जगत का जितना भी व्यवहार है वो इन कारकों को लेकर के या इन विभक्तियों को लेकर के ही व्यवस्थित होता है। जितना भी संबंध है और जितना भी व्यवहार है वो किसको लेकर के होता है, इस कारक को लेकर के या कारक के अंदर निहित जो विभक्तियां उनको लेकर के होता है। इसलिए जो कारक के अंतर्गत सप्त रूप विभक्त्यात्मक माने गए उन कारकों का मतलब है कि उन व्यक्तियों के साथ में चिन्हों का प्रयोग किया गया या संबंधों का प्रयोग किया गया। क्या, तो जैसे प्रथमा व्यक्ति होती है, क्या होती है, प्रथमा व्यक्ति, पहली व्यक्ति, तो प्रथमा व्यक्ति में क्या आता है तो वहां चिन्ह बतलाया ने, इसलिए वहां प्रयोग कर देते हैं कर्ता ने, है ना। और द्वितीया व्यक्ति जहां होती है वहां उसका चिन्ह बतला दिया कर्म, तो को चिन्ह है उसका, तो कर्म को, तब क्या अर्थ निकलता है, कर्ता ने कर्म को। अब कर्ता ने कर्म को, फिर तृतीया व्यक्ति आती है करण अर्थ में जिसका चिन्ह होता है द्वारा या से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये अर्थ है। अब आगे क्रिया होती है तिगंत व्यक्ति की तो किया, ये ऐसे रावण ने बाण से बाली को मारा, तो ये वाक्य अब अर्थ बतलाने वाला हो गया। क्या अर्थ बतलाया कि राम ने बाण से बाली को मारा, तो ये अर्थ कब निकला तो कारक के समन्वित होने पर। कारक की उसमें स्थिति कब आई तो जब सुप विभक्तियों को उसके साथ जोड़ा गया शब्द के साथ, तब जो स्त्री, ऐसे ही वृक्ष से पत्ते करते हैं पंचमी में, राम के लिए चिन्ह आ जाता है चतुर्थी में संप्रदान आदि अर्थ में, और अपादान अर्थ में जो है से चिन्ह होता है,
और इसी प्रकार से षष्ठी व्यक्ति जो संबंध का बोध, तो का की के है अमुक का पुत्र है, ये सब संबंध आ गए। और सप्तमी अधिकरण अर्थ में होती है, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। तो अमुक पर ये पुस्तक है, मेज पर ये पुस्तक है, ये सप्तमी आदि। तो इस प्रकार से पद कहने का तात्पर्य है कि वाक्य के सटीक अर्थ को ग्रहण करने के लिए पद होना चाहिए। जब केवल शब्द से काम नहीं चलेगा, शब्द कैसा हो तो विभक्त्यात्मक शब्द हो, व्यवहार तभी होगा। भक्ति में व्यवहार नहीं होता। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब ही है जहां विभेद न हो, जहां विभाग न हो। और विभक्ति का मतलब है जहां पर विशेष रूप से भक्त कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए। तो विभाजन जहां होगा, द्वैत जहां होगा, विभाग जहां होगा, वहीं पर व्यवहार हो सकता है। और जहां विभाग नहीं है तो व्यवहार कैसे होगा? तो विभाग में व्यवहार होता है, और जहां विभाग नहीं रह गया तो व्यवहार भी समाप्त हो जाता। इसलिए भक्ति शब्द का भी अर्थ वहीं जाता, और यहां भी विभक्ति शब्द का अर्थ है विभाग। तो विभाग में ही ये चिन्ह काम करते हैं, विभाग में ही व्यवहार होता है, और उस व्यवहार के द्वारा जो है हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ होते। इसलिए यहां शब्द किया दिया गया पद। क्या कहा? पद। तो पद क्या है? तो जिसके साथ में विभक्ति का संबंध हो जाता है, और विभक्ति के संबंध हो जाने पर वह शब्द जो है पद कहलाने लगता, तब वो एक विशेष अर्थ को लेकर के आता। तब उस पद का, शब्द का अर्थ एक विशेष अर्थ होता शब्द का, क्योंकि शब्द तो अनेक हैं और उन शब्दों के अनेक अर्थ भी निकलते हैं, लेकिन तात्पर्यार्थ अर्थ जो है वो कारक आदि को लेकर के ही संगत होता। इसलिए कहा पद। तो ऐसा जो पद और फिर वाक्य, तो वाक्य जो है वो क्या है? पदों के समूह का नाम ही वाक्य। पद के समूह, तो कर्तावाचक पद हो, कर्मवाचक पद हो, क्रियावाचक पद हो, तभी उसका अर्थ लगेगा। यदि केवल जो है वाक्य के अंतर्गत कर्ता ही कर्ता दे दिए जाए, कर्म का निर्वचन न किया जाए, तो उस वाक्य का अर्थ लगेगा। तब वहां संकेत किया पद और पद पूर्व परा अनुक्रम के अनुसार जो शब्द समूह या जो पद समूह, उसका नाम है वाक्य। सभी को वाक्य नहीं कहेंगे, है ना? वाक्य किसे कहेंगे? एक ही शब्द का हम रटन लगाते रहे तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य क्या कह रहा है? पूर्व पर के अनुक्रम को संगत करने वाले जो पद समूह, उन पद समूहों का नाम ही क्या है? वाक्य। तो अब इससे अर्थ क्या निकला? इससे अर्थ ये निकला, यहां पर जो ऋषियों ने उच्चारण किया, कथन किया, वो सारा कथन कैसा है? शब्दात्मक नहीं है, वो पदात्मक है। अर्थात उन पदों के अंतर्गत माने अर्थ वैशिष्ट्य अर्थ विद्यमान है, और उन वैशिष्ट्य अर्थ वाले पदों से जिन वाक्यों का प्रयोग किया गया वो पूर्व और पर के अनुक्रम के साथ में है। ऐसा नहीं कि जिनका कोई क्रमहीन हो, जिनकी पूर्व परासंगति ही न लगे, ऐसा नहीं। तो पूर्व और पर के क्रम की संगति के साथ में जो पदों का समूह, ऐसे वाक्य, तो ऐसे पद और वाक्यों को, और जब ऐसा पद और वाक्य होगा तो वही प्रमाण होगा। वही क्या होगा? वही किसी वस्तु को प्रमाणित या सिद्ध कर सकेगा। तो ऐसे पद वाक्य और प्रमाणतः, प्रमाण रूप, ये संकेत करिए। तो जो पद और जो वाक्य प्रमाण स्वरूप हैं, ऐसे उन पद वाक्यों के प्रमाण स्वरूप पद वाक्यों के द्वारा गुरुवी ऋषियों ने क्या किया? कहने लगे व्याख्याता, व्याख्यान किया।
विशेष रूप से हमारे लिए कहा। अब विशेष रूप से कहा, सामान्य रूप से नहीं। विशेष रूप से जो बात कही जाती है वो अनुकरणीय होती है। सामान्य रूप से कह दी जाए तो उसे आप की इच्छा के ऊपर वो निर्भर होती है, आप उसे कर सकते हो नहीं भी कर सकते, लेकिन जो विशेष कहा जाता है वह अनुकरणीय होता है। और अनुकरणीय होता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए लाभप्रद होता है, वो हमको लाभ देने वाला। इसलिए यहां संकेत किया कि पूर्व में ऋषियों ने पद और वाक्य और प्रमाणों को लेकर के हमारे लिए जो व्याख्यान किया, जो कथन किया या जो कहा, और वो क्या कहा तो उसको और विशिष्ट शब्द में कहा, कहने लगे सर्व वेदांता। जो कहा वो क्या है तो उसे को भी नाम दे दिया, क्या? सर्व वेदांता। अब यहां वेदांत शब्द से उपनिषद को भी हम वेदांत ही कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। वैसे वेदांत का यौगिक अर्थ क्या है? तो वेदांत का यौगिक अर्थ है वेदई, वेदों के द्वारा, वेदई निरीतो यो अर्थः स वेदांतः। और अंत शब्द आया तब उसकी पूरी व्याख्या कर दे, वेदई रनंतो निर्णीतो यो अर्थः स वेदांतः। वेदों के द्वारा जो अंत रूप अर्थ निर्णीत किया गया, निश्चय किया गया, और वो भी कैसा? तो निर्गलित अर्थ, निश्चोत अर्थ, उस अर्थ का नाम ही है वेदांत। अंत शब्द समापन का भी वाचक होता है, और अंत शब्द जो है कहीं कहीं पर क्या है, कहने लगे मध्य का भी वाचक होता है। आपको लगेगा ये सब कैसे, शब्द अनेक अर्थों वाला होता, इसलिए पद शब्द का प्रयोग। जैसे एक व्याकरण के अंतर्गत सूत्र आता है, अचाम मध्य यो अंत अच, तट्टी संयम से आतो। स्वरों के मध्य में जो अंतिम अच, तो अंतिम शब्द नहीं वहां प्रयोग होता, अंत अच, अंत स्वर, उसकी टी संज्ञा होती, तो मध्य शब्द पहले प्रयोग कर दिया, तब वहां अंत शब्द का अर्थ क्या लगेगा? माने बीच का, मध्य का, तो वहां अर्थ क्या हो गया? अंत शब्द का अर्थ हो गया मध्य। और समापन अर्थ बहुधा हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर अंत शब्द का अर्थ है अंतः सिद्धांतः। अंत क्या है? यहां अंत शब्द है सिद्धांत का वाचक, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, उसका नाम है अंतः। तो यहां पर क्या? वेदई रनंतो निर्णीतो यो अर्थः सिद्धांतः स वेदांतः। ये अर्थ निकलता। किसे वेदांत कहते हैं? तो कहने लगे वेदों के द्वारा जो निश्चोत निर्गलित निर्णीत अर्थ है, ऐसे उस अर्थ विशेष को अंत शब्द से, सिद्धांत शब्द से कहा जाता है। इसलिए क्या हुआ? वेदांत शब्द का अर्थ हुआ वेदों का सिद्धांत। क्या अर्थ हुआ? वेदों का सिद्धांत। अब वेदों का जो सिद्धांत है, इसलिए सिद्ध शब्द पड़ा है और आगे अंत शब्द पड़ा। जो सिद्ध किया गया है उसके फिर आगे कोई परिवर्तन संभव नहीं है, अंतिम सिद्धांत ये भी कह सकते हो, है ना? तो उसे क्या, उसी को क्या कहते हैं? वेदांत। वो क्या है? वेदांत अर्थात जो निर्णीत, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसे उस अर्थ को उन ऋषियों ने कहा। और वो अर्थ कहां है? तो वेदों के द्वारा। उपनिषदें कहां से हैं? कहा वेदों से। और वेदों से भी उपनिषदें हैं, तो उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा? इसलिए कहा
क्योंकि वेदों के अंतर्गत कर्म की भी चर्चा है, वेदों के अंतर्गत उपासना की भी चर्चा है और वेदों के अंतर्गत ज्ञान की भी चर्चा। लेकिन वहां कर्म की चर्चा जो की गई, उपासना की चर्चा जो की गई

वही ज्ञान क्या है, सिद्धांत है, और वही है उपनिषदें। इसलिए उपनिषदों को भी वेदांत शब्द से कह दिया। उपनिषदें भी क्या है, वेदांत। इसलिए यहां संकेत किया कि वेदांता और कैसा वेदांता, तो कहने लगे जो नित्य है, शब्द और प्रयोग कर दिया, वेदांता नित्य, जो जिसमें कभी भी किसी भी काल में बाधता नहीं है, जिसके अंदर बाध्य धर्म है ही नहीं, जो किसी से बाधित नहीं होता, तो ऐसा उस वेदांत का व्याख्यान करने वाले जिन्होंने पूर्व में हमारे लिए ही कर दिया, ऐसे उन ऋषियों को हम जो है क्या करते हैं, तो फिर नित्यम शब्द को ले लो, मनुष्य सदा उनको नमस्कार करते, सदा उनको हम प्रणाम करते। तो ये जो है मंगलाचरण किया। अब इस मंगलाचरण को लेकर के तो पूर्व में, तो पूर्व शब्द से हम क्या समझें, तो पूर्व शब्द तो है कितना है, व्यापक हो जाता। पूर्व की परंपरा लंबी है, और लंबी परंपरा में सबसे पहले, सबसे पूर्व को हम ले लें तो वहां क्या कहा गया, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। किसने क्या किया, जिसने ब्रह्मा को निर्मित किया है, विशेषेण दधातीति विदधाति, अर्थात विशेष रूप से धारण किया। वहां निर्माण भी शब्द नहीं है, वास्तव में क्या है, विशेष रूप से जिसने ब्रह्मात्म को धारण किया, और जब धारण किया तो उस ब्रह्मात्म को जिसको धारण किया, उस धारणार्थक पदार्थ में ही या धारणार्थक उस व्यक्ति विशेष में ही क्या कर दिया, कहा वेदांश प्रहडोति, उसके लिए क्या कर दिया, कहने लगे उसमें वेदों का प्रहरण कर दिया, वेदों को दिया ऐसा नहीं कहा, क्या कहा, प्रहरण। और प्रहरण क्या है, तो जैसे जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद क्या बच्चे के अंतर्गत श्वास का आना जाना होता है कि जन्म के साथ ही होता है, तो क्या कहो, साथ ही होता है ना। और यदि श्वास का आना जाना होता है तब तो आप उस बालक को उपादेय समझते हो, उसकी सुरक्षा करते हो, पालन पोषण करते हो, और यदि श्वास का आगमन निर्गमन न हो तो क्या समझते, ये तो निरर्थक है, तो उसे कैसा मान लेते हो, निरर्थक। तब उसका कोई भी पालन पोषण आदि आप नहीं करते। तो इसका मतलब हुआ कि जिसको उन्होंने धारण किया और धारण करके उसमें क्या किया, प्रेरण कर दिया, किसका, श्वास का। इसलिए श्वास ही क्या है, का जीवन है, जीवन है माने सत्ता है, विद्यमानता है, और श्वास नहीं है तो विद्यमानता भी नहीं, इसलिए वायु तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मवासी कह चुके। अब जब तक श्वास है तब तक क्या है, वो बच्चा है ऐसा प्रयोग करोगे, और श्वास नहीं है तो है शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जा सकता नहीं। इसी प्रकार से संकेत यह कर रहे हैं कि जब तक उसमें श्वास है तब तक उसकी सत्ता है, और श्वास नहीं है तो सत्ता भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, यहां पर श्वास शब्द से किसको कहा, वेदांश प्रहरोति तस्मै, किसका प्रहरण किया, वेद का प्रहरण, किसका किया है, वेद का। तो वेद क्या है, तो इसलिए कह देते हो वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मसूत्र के हैं अंतर्गत जो है जब अपनी टीका लिखी तो वहां पर क्या कहा, निस्वस्यमस्य वेद, वेद क्या है, कहा परमात्मा की निश्वास है। कहा क्या मतलब, मतलब यह है जब तक परमात्मा की सत्ता है तब तक वेद है, और जब तक वेद है तब तक परमात्मा, ये मतलब हो गए। और वेद क्या है, तो वेद

0: विद धातु से बनता है। वेद किससे बनता है? विद धातु से। और विद धातु जो है चार अर्थों में प्रयुक्त होती है। विद धातु जो है उसके चार अर्थ हैं। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद अविकांक्षायाम और विद लाभे। विद धातु जो है सत्ता को बतलाने वाली है, विद्यमानता को बतलाने वाली, और विद धातु जो है किसको बतलाने वाली? ज्ञान को बतलाने वाली, प्रकाश को बतलाने वाली। और विद धातु जो है किसको बतलाने वाली? अविकांक्षा, इच्छा। और विद धातु किसको बतलाने वाली? का लाभ को। और इसी को लेकर के क्या बना? मनुष्य की अनंत इच्छाओं का जब वर्गीकरण किया गया तो चार पुरुषार्थों के रूप में कह दिया। और पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या होता? पुरुषई रर्थियते इति पुरुषार्थ। पुरुष के द्वारा जो चाहा जाता है, पुरुष के द्वारा जो अर्थना की जाती है, पुरुष के द्वारा जो याचना की जाती है, उसी का नाम क्या है? पुरुषार्थ। अथवा पुरुष का जो प्रयोजन, उसी का नाम क्या है? पुरुषार्थ। तो अब पुरुष की चाहना ले लो तो उसका कोई अंत नहीं। लेकिन अब अंत नहीं है तो कैसे हिसाब लगाया जाए? तब उसका वर्गीकरण कर दिया गया। और वर्गीकरण ऐसे नहीं किया, वेद से किया गया। चार रूपों में उसका वर्गीकरण किया गया। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये इन चार धातु आत्मक होने के कारण ये चतुष्ट पुरुषार्थ की चर्चा कर दी जाती। अब जो है इस प्रकार का जो वेद, तो वो वेद हमें क्या बतलाता है? तो सारी हमारी व्यवहारिक स्थिति में जो पुरुष की, पुरुष मात्र की, प्राणी मात्र की जो लक्ष्य भूता प्रवृत्ति है, उस सारी प्रवृत्ति का परिचायक कौन है? वेद है। अब उस वेद का जो है सिद्धांत क्या है, तो वो बतलाने के लिए फिर कह दिया कि वो क्या है? मोक्ष। तब क्या कह दिया? इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्थ विद पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। का पुरुषार्थ तो चारों, लेकिन चारों पुरुषार्थ जो है उनमें जो है सर्वश्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है? तो कहने लगे इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष ही अंतिम पुरुषार्थ है, वही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये संकेत किया। तो ये प्रवृत्ति तो चतुर्थात्मक है, लेकिन चतुर्थात्मक प्रवृत्ति होते हुए भी लक्ष्य रूप क्या है, अंतिम क्या है, उपादेय क्या है, उत्कृष्ट क्या है, श्रेष्ठ क्या है? तो कह दिया मोक्ष एव। क्या है? मोक्ष ही है। ये संकेत किया। कहा क्यों? कहने लगे इसलिए तद्यथेह कर्म चितो लोका क्षीयते। वेदांत परिभाषा आप लोगों ने स्वाध्याय पढ़ी होगी तो उसमें ये सब आया। पहली प्रारंभ में वहां संकेत किया गया कि जिस प्रकार से इस लोक के अंतर्गत कर्म चित, कर्म से उपार्जित होने वाले, किसान जो है फसल को उपार्जित करता है ना, और बिजनेसमैन जो है अपने पदार्थों को वो भी उपार्जित करते, ऐसे ही सर्विसमैन भी करते, सभी लोग करते। अब उन पदार्थों को हम उपार्जित करते हैं, चाहते हैं, चाहकर के उनका हम जो है लाभ लेते हैं, प्राप्त हुए। प्राप्त होने के पश्चात क्या होता है? उनका उपयोग करते हैं, और जब उपयोग करते हैं तो क्या होता? उपयोग करने पर वो पदार्थ नष्ट हो जाते, क्षय को प्राप्त हो जाते। तब पुनः उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता, और पुनः पुरुषार्थ करते हुए पुनः पुनः यही स्थिति चलती रहती। ये संकेत। और कहने लगे इतना ही नहीं, ये तो जो है सामान्य पदार्थों की चर्चा हो गई, इस अर्थ की बात की, अदर्थ का मतलब है पदार्थ विशेष। और फिर कहने लगे तो धर्म, तो धर्म के लिए क्या कहा? धर्म के लिए कहा एवमेवा मूत्र पुंड चितो लोका खीयते। जिस प्रकार से हम जो है लोक में जिन पदार्थों को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके उनके उपभोग के द्वारा जो है वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से एवं एव, ठीक इस प्रकार से ही जोड़ भी दे दिया, क्या है कहा पुंड चितो लोका आभुत्र, माने इस लोक में ही नहीं, ये तो पृथ्वी लोक की बात कही, कहा जिस स्वर्ग आदि की कल्पना की है ऐसे स्वर्ग आदि लोक में जो है जो पदार्थों हमने संचित किए धर्म के द्वारा, और धर्म के द्वारा जो प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का भी क्या है क्षय हो जाता। ये है कि इनसे उनमें श्रेष्ठता अधिक है, इन पृथ्वी के पदार्थों से जो है अधिक गुणवान है, ये सब तो है, लेकिन नाश को वो भी प्राप्त होते, ये धर्म समान है। अब जब नाश को प्राप्त हो जाएंगे तो तृप्ति तो कभी दे सकते नहीं, इसलिए कहा कि मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। मोक्ष ही क्या है? परम पुरुषार्थ, क्योंकि मोक्ष का कभी नाश आदि नहीं होता, उदय आदि नहीं होता। मोक्ष जो है वो नाश रूप नहीं है और उदय रूप भी नहीं। अब थोड़ा और विचार कर लूं, ये चार पुरुषार्थों की चर्चा कर दी, और आप वेदों में उपनिषदों में क्या पढ़ते हो और लोक में भी अनुभव करते हो, क्या करते हो? जब कहते हो कि मैं हूं, क्या कहते हो? मैं हूं। अब ये मैं हूं ये कहना कब होता है?
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thiruneriya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Shvetashvatara Upanishad ke dusra adhyay ka chhatha mantra hai. Chhatha pura kaha hua? Agnir yatra bhi machyate वायुर यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः तत्र मन संजायते। तत्र माने कहां पर? वहां पर पासमला में ये तीन बातें बताया है, जहां अग्नि मंथन होता है हनीबात, और जहां पर वायु प्राणायाम अधिरुध्यते, और जहां सोम अधिरिच्यते तत्र मनः संजायते, मानी उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं समझना। वहां पर मन लगता है, मन रसास्वादन करता है, आनंद का अभी अनुभव करता है। ये प्रसंग में काल यहां तक बतलाया था, क्या लगे नहीं? अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चय, तत्न जायते पुंसा गोविंदाभिमुखी मति अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चय चित्ते पाप समुच्चय चित्त में पापों का जो संशय होता है ना चित्त माने मन समझ लेना का चित्तम चिच्च बिजानियात तकार रहितम ददा तकार विषेध्यास जप रागो मणो जथा ये ख्याल है चित्तम चित्त किसको कहते हैं का चित्तम चिच्च बिजानियात चित्त में दो तकार हैं चित फिर तम तो चित्तम चित्त बिजानिया चित्त को तुम चित समझो चेतन समझो चित्त को चेतन समझो कब होगा ये चित्त को चेतन क्यों समझे कब समझे तब कहते तकार रहितम जदा चित्त में जो दो तकार है ना एक तकार को हटा दो पूरा तकार को हटा दो केवल चित्त रखो चित्त तो तकार को आपने क्या कर दिया हटा दिया तो रहा क्या गया चित्त चित्त क्या चीज है चेतन आत्मा है तो चित्तम चित्त बिजानिया तकार रहितम जदा जब तकार हट जाता है तो चित्त चित हो जाएगा चैन चित्त होता ना अखाड़ा में चित्त करते कि नहीं पलट देता है तो हार जाता चित्त हो जाए तो हम लोग क्या बन गया संसार रूपी अखाड़ा में हम सब कैसे अचित्त हो गया परमात्मा की तरफ से उलट गया तकार क्या चीज है तकार विषेध्यास संसार का अध्यास का नाम तकार है तो संसार रूपी जो ये अध्यास है अध्यस्त वस्तु है इसके कारण समझे कि नहीं हम लोग परमात्मा की तरफ से विमुख हो गए तकार रहित तकार विषेध्यास कैसे तो दृष्टांत दिया जप रागो मणो जथा जैसे मणि है ना स्फटिक मणि तो स्फटिक मणि की रक्तिमा स्फटिक मणि जो सफेद है उसमें जफा कुसुम की जो रक्तिमा है वो रक्तिमा का आरोप हो जाता है तो जफा कुसुम स्वच्छ होता हुआ भी सफेद होता हुआ भी शुक्ल वर्ण होता हुआ भी स्फटिक है स्फटिक तो होता हुआ भी वो लाल दिखता है लाल क्यों दिखता है वो जफा कुसुम की जो रक्तिमा है लालिमा है उसमें आरोपित हो जाएगा हा? तो जफा कुसुम में रक्तिमा जैसे स्फटिक मणि में आरोपित होने से स्फटिक मणि रक्त वर्ण बन गया कि नहीं तो उसमें रक्तिमा आरोपित हुआ है अयम स्फटिका कीदृश स्फटिका तो रक्त स्फटिका लाल स्फटिक है तो स्फटिक का लाल होता है नहीं तो क्यों दिखता है तो पास में जो लाल फूल पड़ा हुआ है ना इसके लालिमा उस मणि में आरोपित हो गया ऐसे संसार जो है दिखता है कैसा दिखता है सच्चा दिखता है यानी वह वास्तविक दिखता है क्यों दिखता है अरे भाई अविद्या के कारण चित्त आज चित था चेतन था उसके सन्निधि मात्र से जड़ होता हुआ भी मिथ्या होता हुआ भी चेतन सा भास रहा है तो संसार को हम क्या बोलते हैं बोलता है महाराज संसार सब कुछ सत्य है नहीं तो संसार संसार में हमको सब सच्चा भासता है तो भासने दो भासता है तो भासने दो जिसके लिए भासता है उसको भासने दो जिसके जिसके लिए संसार सत्य सत्य रहने दो, जिसके लिए सुखात्मक है सुख रूप देखो, दुखात्मक है तो दुखात्मक देखो। अरे भाई देखो, जिसकी जैसी दृष्टि होगा वैसे संसार को देखेगा, वास्तविक क्या है वो देखना पड़ेगा। यानी बात रस्सी का सर्प को तुम सच्चा समझो तो कौन मना करेगा। सूक्ति का चांदी सच्चा है तुम देखो, सच्चा है हमने देखा तो देखो तुम देखो, हाँ कोई मना नहीं करेगा। परंतु जब अनुसंधान करोगे सच्चा है कि या झूठा है तब तुमको पता चले, इससे पहले कितना भी बोले मानोगे नहीं। ऐसे संसार मिथ्या है, संसार दुखात्मक है, संसार विनाशी है, संसार असत है, हजारों बार तुम सुनते रहो, हजार बार सुनाते रहे समझो, फिर भी क्या देखेंगे, सच्चा लगेगा कि नहीं लगेगा। साफ सच्चा लगेगा। इसमें तो दोनों दृष्टि है ना, दृष्टि सृष्टि है, सृष्टि दृष्टि है। दृष्टि सृष्टि बाद में और सृष्टि दृष्टि बाद में है, दो बात है। अरे बात दृष्टि पड़ी तो सृष्टि है, सृष्टि है तो दृष्टि पड़ेगी, दोनों में से कौन से मानते हैं आप? दृष्टि पड़ी तो क्या बन गया, सृष्टि हो गई, और सृष्टि है तो दृष्टि पड़ेगी। तो संसार में दोनों बात चलता है, अधिकारी के भेद से याद रखना, जैसा अधिकारी होगा ना ऐसे संसार को देखेगा, वो दाना डालेगा। आने बाद चिड़िया बहेलिया आया, जाल फेंका, दाना डाला, तो भाई इतना तो सीखेगा, दाना डालना तो जानेगा क्यों दाना खाने आएगा, परंतु ये नहीं देखेगा। आने बाद हाँ वो संत लोग दृष्टांत तो देते हैं, संत कहते ना श्रवण कैसे करना चाहिए, श्रवण शास्त्र का श्रवण कितना कैसे करना चाहिए, ये दृष्टांत है। महात्मा के पास गए सुगाव का राजा, महाराज हमारा सुगाव का जो है ना सत्यानाश हो रहा है, वंश समाप्त हो जा रहा है, फलाना आता है जाल फेंकता है उसमें दाना डालता है, हमारा चिड़िया खाने जाते सब फंस जाते हैं मर जाते, अभी हजारों में से अभी 100 रह गया, तो क्या करना चाहते हो? हम बचना चाहते, बचना चाहते हो तो मैं मंत्र बतलाता हूँ, मंत्र को याद कर लेके ना। हाँ बोले क्या मंत्र बताते हो बताओ, बोले बहेलिया आएगा जाल फेंकेगा दाना डालेगा, यानी बस हम फंसेगा नहीं, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, ऐसा ठीक है याद करा दिया। जब चला गया तो बहेलिया का लड़का आया, उस दिन बहेलिया खुद नहीं आया था, तो उसने जाल फेंका दाना डाला, कोई चिड़िया आया नहीं, तो उसने डाल उठा करके चला गया। बाप ने कहा क्यों चले आया तू, चिड़िया नहीं आया, नहीं चिड़िया फंसा नहीं? बोले नहीं, ऐसा ऐसा कोई महात्मा है उसको मंत्र सुनाया, वो मंत्र जपता है। बोले क्या मंत्र है? बोले बहेलिया आएगा जाल फेंकेगा दाना डालेगा, हम फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे। अरे बेटा यही तो कहने के लिए होता है, चले जा, जब दोपहर को 1 बजेगा 2 बजेगा फिर देखना, तो फिर जाल फेंकना, फिर जाकर जाल फेंका, है नहीं बात, दाना डाला बैठ गया, तो चिड़िया भी बोलता है, बोलते बोलते जब दोपहर को हुआ तो कहने भाई ठीक है जाल फेंकेगा दाना डालेगा सब कुछ ठीक है, पर आप भूख लगे तो क्या किया जाए, भूख के पास क्या किया जाए? बोले चलो सामने तो दाना पड़ा हुआ है चलो खाओ, है नहीं बात। तो ऐसे कहावत जो होते हैं ना, श्रवण का विधान है, श्रवण करेंगे बार बार श्रवण करो श्रवण करो, और जब वो सामने जब आ जाते ना स्वीकार, फिर क्या हो जाता है। तो यहां ये बात नहीं है, वेदांत शास्त्र और कुछ बतलाते हैं, समझे कि नहीं। ये आपको बतला रहे हैं यहां क्या है, चित्ते पाप समुच्चय, अनंत जन्मों के कर्मों का जो संस्कार है, अच्छा बुरा कर्म पाप पुण्य का संस्कार पड़ा हुआ है, अनेक जन्म संस्कार, चित्ते पाप समुच्चय संशय, समझ लेना, अनेक जन्मों से हमने आज सुबह सुबह कर्म किया, उसका संस्कार हमारे अंतकरण में मन में चित्त में पड़ा है। चित्तम चित्त विजानियात, चित्त को तुम चेत समझ लेना, परंतु जब एक तकार हटा दोगे तभी वो बनेगा। चित्त में दो तकार है, एक तकार हटा दोगे तो क्या रह जाएगा, और चित माने परमात्मा आने बात भगवान है। तो चित्तम चित बिजानिया तकार रही जम रजा, तो तकार क्या दी जाए, तकार विषय अध्यास, विषय का जो अध्यास है इसको तो क्या बोलते हैं, तकार बोलते हैं। तकार हट गया तो ऐसे संसार का अध्यास हुआ, किसमें मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा कर लिया, अध्यास कर लिया, तो अध्यास हट गया तो अधिष्ठान का ज्ञान, अध्यास कैसे हटेगा अधिष्ठान के ज्ञान से, तो अधिष्ठान के ज्ञान जब हो जाएगा तो अध्यास हट जाएगा, अध्यास तो वस्तु की बात हो जाएगा। याद रखना एक बात, आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद भी संसार उड़ गया होगा, जल करके भस्म हो गया होगा, ऐसा नहीं समझना, समझे कि नहीं। अभी जब ऐसा होता है आज तक कोई ज्ञानी नहीं हुआ क्या, सुखदेव जी महाराज हो गए, अष्टावक्र हो गए, सनक आदि ऋषि हो गए, नारद जी हो गए, ध्रुव हो गए, इतना बड़े बड़े भक्त हो गए, फिर संसार का जैसे का तैसा चल रहा है, तो उनके सामने संसार था कि नहीं था, तो संसार फिर नाश कहाँ हुआ। तो नाश का मतलब होता है बाध होना, याद रखना, संसार ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है, बाद का मतलब तो मिथ्यात्व का निश्चय होता है, बाद का मतलब मिथ्यात्व का निश्चय होगा। जैसे आने बात स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि है ना, तो स्फटिक मणि को तुमने जो लालिमा लाल देखा था, तो जब आपको किसी ने बता दिया नायम रक्त स्फटिका अयम श्वेत स्फटिका, अरे ये लाल स्फटिक नहीं है, सफेद स्फटिक है, तो आपने पूछा तो सफेद होता लाल क्यों दिखता है, बोले लाल दिखता है इसके पास में लाल फूल पड़ा हुआ, जपा कुसुम पड़ा हुआ है, इसके रक्तिमा से ये तो रक्तिमा इसमें आरोपित है, आरोपित माने अध्यस्त है, आरोपित है, तो कैसे उसने दिखा दिया, तो बाद में उसको एक ज्ञान हुआ नायम रक्त स्फटिका तो अपितु श्वेत स्फटिका, श्वेत स्फटिक है, तो श्वेत स्फटिक जब समझ रहा उस समय भी वो लाल दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो बात क्या हुआ, मिथ्या क्या हुआ, लालिमा की बाध हो गया, स्फटिक में लालिमा की बाध हो गया। ऐसे महापुरुष जो है, महात्मा लोग जो है, ज्ञानी ध्यानी योगी भक्त लोग जो जगत को देखता है, किस रूप में देखता है, जगत दिखेगा जैसा का वैसा रहेगा, जगत चलेगा, जगत को तुम बाध कर सकते हो, बाध माने मिथ्यात्व का निश्चय कर सकते हो, क्यों, जगत को तुमने नहीं बनाया, जगत परमात्मा की माया का कार्य है, जगत क्या चीज है, माया का कार्य है, माया नहीं है, माया का कार्य है, देखो माया नहीं है क्यों कहा मैंने, जैसे जादूगर का खेल देखते हो कि नहीं, तो जादूगर का जादू देखते हो कि खेल देखते हो? जादूगर का खेल देखते हो, हाँ, जादू नहीं देखते हो। जादूगर को भी देखो, जादू का खेल भी देखो, पर जादू नहीं देखते हो। ऐसे परमेश्वर का साक्षात्कार करोगे, भगवान को भी देखोगे, आत्मा का भी ज्ञान होगा और जगत भी देखोगे, परंतु जिसके द्वारा जगत बनाया गया वो नहीं देखोगे। वो देखोगे? माया दिखता है तो माया है कैसे मालूम पड़ता है? कार्यानुमेया सन्न भी असन्न भी उभयात्मिका नो, सांगा भी अनंगा भी उभयात्मिका नो, भिन्ना भी अभिन्ना भी उभयात्मिका नो, महाद्भुत अनिर्वसनीय रूपा। ये अनिर्वसनीय स्वरूप है, अनिवार। इस शक्ति का साक्षात्कार ऋषियों ने किया था, ख्याल है कि नहीं? इसी में आया था पहले, ते ध्यान दोगा अनुगता अवश्य देवात्मा शक्तिम सगुणैर निगुडाम। वो ऋषियों ने ध्यान योग के द्वारा परमात्मा की अपूर्व अनिर्वसनीय शक्ति का साक्षात्कार किया। देवस्य आत्मनः ईश्वरस्य शक्ति ही आत्मशक्ति, ईश्वर की शक्ति ही, वो शक्ति का साक्षात्कार किया था। जिस शक्ति के द्वारा, अनिर्वचनीय शक्ति के द्वारा परमात्मा ने ये जगत को बनाया, ये विचित्र जगत को बनाया ना, किसके द्वारा बनाया? हाँ, ये गीता में भी भगवान ने बतलाया, क्या है ना, प्रकृति श्रीयते सहसराधरम हेतु नारायण कौंतेया जगत विवरी वर्तते है। हाँ, ये जगत जो बदलता रहता है, क्यों बदलता है? माया जो है ना, ये कैसी है? बदलने वाली है। सर्वे भावा क्षण परिणामिन रीति की शक्ति ही, एकमात्र चैतन्य शक्ति। हाँ, एकमात्र चैतन्य शक्ति के सिवा सब परिवर्तनीय है। क्यों? माया परिवर्तनीय है, बदलती है। माया की स्थिति एक सा नहीं होती है, एक सी स्थिति कल परमात्मा का है, और सब के सब बदलने वाली है। क्यों? माया परिवर्तनीय है, माया बदलने वाली है, इसलिए माया का कार्य भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ होता है?
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ஓம் சிவாய நம சைவம் டாட் ஆர்கின் அன்பான நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவ கீர்த்தனைகள். பாடல் சுவாதி திருநாள் இயற்றிய சங்கர ஸ்ரீகிரி, ராகம் ஹம்சந்தி, பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமன்.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

सरस्वती हविष्मतीन्द्रकर्मासु नोऽवत ताभिषजा आसु कर्माणा सा सुदुघा सरस्वती सवृत्रः शतक्रातुरिन्द्रा आयदधुरिन्द्रियम्।

तो ये समग्र विश्व जड़ और चैतन्य उभय रूप, स्थूल और सूक्ष्म और कार्य और कारण रूप, व्यक्त व्यक्त रूप, ये जो विश्व प्रपंच है इसका कारण क्या है, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग ढंग से बताया कि यह इस तरह उत्पन्न हुआ है। कोई परमाणु कारण मानते हैं, तो किसी ने प्रकृति को कारण माना, लेकिन वेदांत दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी जिसको प्रमाण के रूप में मानते हैं, ये सारा का सारा विश्व एक सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय रहित शुद्ध तो ब्रह्म चैतन्य है जिसका नाम ईश्वर है, उसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ है। सदैव सौमिदमग्र आसीत, ये छांदोग्य उसकी श्रुति है। उद्दालकारुणी अपने पुत्र सहित केतु को कहते हैं कि इदम, ये सारा नाम रूपात्मक जगत इस रूप में प्रकट होने से पहले सत एव आसीत, सद रूप में ही था, उसी को आधार मानते हुए यहां शंकराचार्य जी ने कहा बीजस्यांतरिवांकुरो, जैसे बीज के अंदर तमाम वृक्ष पूर्व ही सन्निहित रहता है परंतु अव्यक्त रूप में रहता है, बीज से अभिन्न होकर रहता है, एकात्म रूप में रहता है, उसी बीजस्थानीय परमात्मा से जैसे वृक्ष उत्पन्न होता वैसे सारा जगत उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ तो बोले माया कल्पित देश काल कलना, ये जगत में यही है देश काल नाम और रूप, कलना यही रचना है माया का, माया इन सब की रचना करती है, उस परमात्मा के सान्निध्य प्राप्त करके आश्रय प्राप्त करके इस सब चीज की रचना माया खुद करती है। वैचित्र चित्रीकृतम, उसी से विचित्र विचित्रता विरोधाभासी वस्तु को उत्पन्न कर देती है, उसी माया से सबको जलाने वाले अग्नि पैदा करती है माया, और उसी माया से पानी पैदा होता है, जैसे कि सामान्य व्यवहार में पानी और अग्नि एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये विरोधाभासी उत्पन्न करने की क्षमता उस माया में है। अब ये माया भी वह यहां उस माया का आश्रय चैतन्य को ही जगत कारण के रूप में लिया गया है, तो यहां दोनों को अभिन्न रूप में माना गया ईश्वर और माया, क्योंकि ईश्वर के बिना माया का अस्तित्व नहीं, माया के बिना ईश्वर कारण रूप में प्रवृत्त नहीं हो सकता, तो माया और चैतन्य ईश्वर दोनों को एक मानकर कभी माया कह देते हैं कभी ईश्वर कह देते हैं। ईश्वर से अलग होने पर माया नहीं रहती है, माया से अलग होने पर ईश्वर नहीं रहता, ये भी ख्याल रख लेना, ब्रह्म होगा ब्रह्म रहेगा ईश्वर नहीं रहेगा। माया भी विजृंभयती, शंकराचार्य जी समझाते हैं कि ये जगत उस ईश्वर के द्वारा कैसे उत्पन्न हुआ,
तो मायावी के तरह जादूगर के तरह यत बृहद इंद्रजाल को चलाने वाला इंद्रजालिक या माया के खेल को दिखाने वाले जादू के खेल को दिखाने वाला जादूगर जादू के प्रभाव से वह बिना साधन सामग्री उपकरणों के वह कार्यों को उत्पन्न करके दिखा देता है। हमने कल उदाहरण दिया था, सड़क के किनारे खड़ा होता है जादूगर और हाथ ताली पीटता है और मिट्टी उठाता है, नोट निकाल के दिखा देता है। वहां कुछ नहीं है, साधन कुछ नहीं, फिर भी वह नोट दिखा देता है और बढ़िया नोट दिखा रहा था, उतनी में फिर वह आग लगा देता है, वो नोट जल के राख हो जाता है, फिर उस राख से फिर वह माला निकाल देता है, उसी राख से रुमाल बना देता है और जो जो संकल्प करता है दिखाना चाहता है वो दिखाता जाता है। अब साधारण ग्रामीण जनता और हम बच्चे जैसे इतने मोहित हो जाते हैं उसको खेलकर देखकर कि मन में लगता है ये कला हमको भी आ जाती तो हम भी खुद कमाई करते और आश्चर्य लगता कि ये कैसे हुआ, साफ दिखता है। एक सर्कस में हम देखने गए थे बचपन में, बनारस में जब पढ़ रहे थे तो सर्कस आया था तो उसने दर्शकों में से एक व्यक्ति को बुलाया, तुम आ जाओ, तो गया बेचारा, बुलाया तो गया, उसकी पत्नी भी वहीं बैठी थी, गया और उसको टेबल में लिटा दिया और लिटाने के बाद ऊपर से एक चादर उड़ा दी और बिजली का आरी चलाकर उसने उसको दो टुकड़े कर दिया, टेबल को भी काटकर उसके सोया है उसके शरीर को ही दो टुकड़ा, टेबल को भी दो टुकड़ा करके एक टुकड़ा इधर फेंक दिया एक टुकड़ा इधर फेंक दिया। सब आश्चर्य मनाने लग गए, सब लोगों ने देखा है वो टेबल में सोया है और उसके ऊपर उसने पूरा चादर डाल दिया और काट के दो टुकड़ा कर दिया। वो तो उसकी पत्नी तो वहीं से जोर जोर से रोते हुए कूद पड़ी। तो क्या हुआ, बोले मेरे पति को काट के दो टुकड़ा कर दिया। तो रोने लग गई, पुलिस आ गई, उसको संभाला गया। थोड़ी देर के बाद उसने दोनों टेबल को जोड़ दिया, फिर चादर हटाया, वो उठा उठो, वो तो उठ गया। ये सब जादू का खेल है। अब वहां ना आ रही है ना कोई कटा हुआ है ना कुछ है, लेकिन दृष्टि का एक सब भ्रम बन जाता है। पारमार्थिक यानी व्यावहारिक के रूप में वो सब कुछ भी नहीं होता है। जादूगर जो कुछ भी खेल खेलता है, जो कुछ भी दिखाता है, वह प्रातिभासिक के रूप में होता है, व्यावहारिक के रूप में केवल मनोरंजन के लिए होगा, उसमें और कोई व्यावहारिक सत्ता नहीं होती है। लेकिन ये सारा का सारा जगत तो व्यावहारिक अस्तित्व वाला है। वहां तो कट के दो टुकड़ा हो गया, तुरंत वो खड़ा हो गया, अब यहां तो मरता है, दोबारा आता नहीं है, मरने के बाद तुरंत खड़ा हो जाता, एक डेढ़ घंटा मरता, फिर उसके बाद तुरंत खड़ा हो जाता, तो ये मृत्यु इतनी दुखदायी नहीं होती होती। जैसे वहां आरी चला दिया, दो टुकड़े हो गए, एक सेकंड के लिए उसकी पत्नी को दुख का कारण बन गया, लेकिन वो तुरंत खड़ा हो गया, तो मृत्यु दुखदायी नहीं हुई। आप नित्य प्रलय में जाते हो, गहरी सुसुप्ति में कुछ भी भान नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद निद्रा खुलती है, जैसा का वैसा आप देखते हो, तो सुसुप्ति अवस्था का विनाश आपको दुखदायी नहीं होता है।
जबकि सुसुप्ति अवस्था में कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। पति को पत्नी प्रतीत नहीं हो रही है, पत्नी को पति प्रतीत नहीं हो रहा है, मां को बेटा प्रतीत नहीं हो रहा है, बेटे को मां प्रतीत नहीं है। इन सब के बावजूद भी, क्योंकि वह पुनः थोड़ी देर के बाद प्रतीत होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वह कुछ भी नहीं हुआ है और वह दुखदायी का कारण नहीं बनता है, सहज बन जाता है। और ये जागृत अवस्था, ये प्रपंच भी व्यावहारिक सत्ता वाला प्रपंच भी उसी तरह यदि प्रातिभाषिक मात्र होता तो इतना दुखदायी भी न होता। ये तो मरता है फिर वापस नहीं आता है, तब दुख का कारण बन जाता है। कैसे ये व्यावहारिक हुआ? ये माया कल्पित है तो इंद्रजाल की तरह, जादूगर की तरह वह वस्तु केवल प्रातिभाषिक होनी चाहिए, व्यावहारिक कैसे हो गया? तुरंत दूसरा दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने।

0: नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये। महायोगी व यह स्वेच्छया, कोई समर्थ योगी अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति के और क्रिया शक्ति के माध्यम से, बिना सहकारी कारण, बिना उपादान कारण, वह अनेक वस्तुओं को उत्पन्न कर देता है। जैसे एक महायोगी बिना उपादान कारण, बिना सहकारी कारण, केवल इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से अनेक वस्तुओं को उत्पन्न कर देता है, इसी तरह वह परमात्मा भी बिना उपादान कारण और सहकारी कारण के अपने अकेले ही संकल्प शक्ति इच्छा मात्र से वह ये विश्व प्रपंच को उत्पन्न करता है। इसके लिए उसको उपादान कारण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, सहकारी कारण को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात, प्रश्न ये था कि तब तो ये प्रातिभाषिक होना चाहिए, व्यवहारिक क्यों हुआ? तो हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रमाण हैं, योगी सिद्ध महापुरुष संकल्प मात्र से जो वस्तु उत्पन्न करते हैं, उन योगी सृष्ट पदार्थ पूरी तरह लोक व्यवहारिक होता है और वह प्रातिभाषिक मात्र नहीं रहता, पूरे व्यवहारिक होता है और व्यवहार हो जाता है। पुराणों में उदाहरण दिए, बहुत से पुराण उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप लोगों ने भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण कई बार सुनी है। कर्दम ऋषि थे, कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे नारायण सरोवर के किनारे, खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। बिंदु सरोवर बोलो, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर के किनारे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। और उधर मनु महाराज की पुत्री थी देवोती, तो उनको विवाह करने का, कन्या जब विवाह करने की अवस्था को प्राप्त हुई तो मनु महाराज को चिंता हुई कि किससे विवाह करें, इनके योग्य वर कौन होगा इस समय। तो नारद जी ने जाकर संकेत कर दिया कि कर्दम ऋषि, आपकी पुत्री जैसे ही सर्वगुण संपन्न कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए वह भी तपस्या में लगे हुए हैं। सबसे अच्छा आपकी पुत्री की योग्य तो कर्दम ऋषि हैं, ले जाकर कर्दम ऋषि के साथ विवाह करा दीजिए। अब ये केवल कर्दम की इच्छा नहीं है, ये सभी देवताओं की भी इच्छा है, हम लोगों की भी इच्छा है कि कर्दम ऋषि विवाह कर ले वे। और क्योंकि कर्दम ऋषि के ही माध्यम से भगवान को अवतरित होना है, कपिल भगवान को कपिल अवतार होना है, तो मनु महाराज जी चले गए कन्या को लेकर, विभूति को लेकर। विवाह का प्रस्ताव रखा, कर्दम ऋषि तो चाहते ही थे, शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, पुराण में। जब कर्दम ऋषि ने बहुत कठोर तपस्या की, अरे भगवान नारायण प्रकट हुए और पूछा कि बेटा किस लिए तुमने तपस्या की है, तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो हमसे, क्या चाहते हो? तो शास्त्र में लिखा है, कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे मनानुकूल इच्छा के अनुसार चलने वाली और परमार्थ में साथ देने वाली, भोग में भी अनुकूल और मोक्ष में भी वह अनुकूल हो, साथ चले। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। ये पत्नी कोई साधारण नहीं है, भव सागर से तारने में वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी भारतीय संस्कृति ये प्रतीक है, क्योंकि गीता का भी ये कहना है कि परस्परम भावयन्त श्रेय परमावश्यकता। अकेले ना ये लौकिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है ना पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य एक दूसरे की अपेक्षा रखता है और एक दूसरे के सहयोग से, मदद से, परस्पर भावना से वह यलोक और परलोक दोनों बना सकता है। ये वैदिक संस्कृति है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि इस लोक में भी मुझे व्यवहारिक सत्ता में पूरा साथ देने वाली चाहिए, और केवल व्यवहारिक सत्ता को साथ देने वाली न होकर परमार्थ को भी सुधारने वाली मुझे पत्नी चाहिए। तो ये बात जब भगवान नारायण ने सुनी तो शास्त्र में लिखा है कि भगवान नारायण के आंख से आंसू आ गए कि कैसा मेरा भक्त इतना तपस्या, इतना कठोर तपस्या कर रहा है और मैं साक्षात नारायण इसके आगे खड़ा हूं, और ये जन्म रोकने के लिए यह पूरा साक्षात मोक्ष, सालोक्य, सारूप्य, साष्ट्य, सामीप्य आदि किसी प्रकार का भी मोक्ष देने में मैं समर्थ हूं, साक्षात मुक्ति देने में समर्थ हूं, और ऐसे परमात्मा मैं इसके सामने खड़ा होता हुआ भी यह संसार का भोग मांगता है, कैसी विडंबना है। भगवान का भक्त भगवान से यदि सांसारिक भोग मांगता है तो भगवान को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, भगवान देना नहीं चाहते। लेकिन वो बार बार रोता है, बार बार आग्रह करता है तो दे तो देते हैं लेकिन रोते हुए देते, प्रसन्न होकर नहीं देते। ये हमारे पूरा भारतीय शास्त्र भरा पड़ा है इससे, दुखी होकर देते। और परमात्मा जिस वस्तु को दुखी होकर दे तो उससे तुम कैसे सुखी होगे? जिस वस्तु को देते समय स्वयं परमात्मा को दुख हो उस वस्तु से तुम कैसे सुखी होगे? लेकिन संसार तो ये मानता है कि परमात्मा दुखी होवे तो होवे, हमको वस्तु मिलना चाहिए, हमको सुखी होना चाहिए। लेकिन संसार के वस्तु, हर वस्तु चाहे कोई भी हो, परिणामे दुखमेव। गीता का यह श्लोक ध्यान रख लेना, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम तामसम स्मृतम। ऐसे सुख को तो तामसिक और राजसिक सुख कहा, सात्विक रूप सुख तो वही नहीं सकता है। तो भगवान नारायण को बड़ा दुख हुआ, फिर भी उन्होंने मांगा है कर्दम ने तो तथास्तु दे दिया। उसी वरदान के प्रेरणा से मनु महाराज देवभूति को लेकर कर्दम के पास चले गए, शादी हो गई। लेकिन कर्दम ऋषि ने शर्त रख दिया है कि हम तुम्हारी कन्या से शादी तो कर लेंगे लेकिन एक बेटा हो जाने के बाद फिर हम सन्यास हो जाएंगे, ख्याल रख लेना। बच्चा हुआ, बेटा हुआ कि हम सन्यासी हो जाएंगे, घर छोड़ देंगे, तुम्हारी बेटी को भी छोड़ देंगे, बच्चों को भी छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे सन्यासी होने के लिए। शर्त मंजूर, मंजूर, शादी हो गई। उसके बाद तो फिर कर्दम ऋषि तपस्या में लग गए तुरंत। भागवत का प्रसंग है, थोड़ा आज बता देते हैं। अब देवहूति पूरी की सेवा में, निष्ठा से सेवा में लगी हुई है, वर्षों हो गया है। पर्णकुटी में बैठे हुए हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, पर्णकुटी में है, कोई साधन सामग्री नहीं है, अब सेवा किए जा रही हैं। कभी ये नहीं पूछ रही है कि तुम कब तक समाधि लगाओगे, हमारा क्या होगा, समाधि लगाना था तो हमसे शादी क्यों की है? बहुत से लोग कहते हैं तुमको सन्यासियों के पीछे, सत्संग के पीछे चलना था तो फिर हमसे शादी क्यों की। बहुत सी माताएं कहती हैं ना, पति यदि सत्संग के लिए चला जावे कभी और पत्नी जाना न चाहे, ये तो आप भाग्यशाली हैं कि साथ साथ भी आ जाते हो और यह रोकती नहीं है, नहीं तो ये समस्या बहुत में है। पति भी यही आरोप लगाता है सत्संग में जाने की इच्छा नहीं है और पत्नी जाती है, तो तुझे जब सन्यासी की तरफ सत्संग में जाना था तो पहले ही शादी क्यों किया? तो जोगी बनना थी कि पहले हमसे शादी क्यों किया? पत्नी भी यही कहती है, तुझे जब वेदांत में लगना है था, सन्यासी के पीछे जाना था, तो हमसे शादी क्यों की? देवभूति ने कहा तो कर्दम ऋषि समाधि से जग गए, बोले अच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो। तो बोले अब क्या इच्छा है? हर स्त्री शादी के बाद मां बनना चाहती है, और क्या इच्छा है? क्योंकि उसके जीवन की पवित्रता और पूज्यता तभी संपन्न हो सकता है जब वो मां बन जाती है, उससे पहले वो मां नहीं बन सकती है। मातृत्वमय पूज्य गरिमामय सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो हमारी इच्छा यही है। बोले तुम्हारी इच्छा है तो पूरा हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो, करती हो? कर्दम ऋषि ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारी इच्छा है तो भी पूरी हो जाएगी। तो देवहूति ने कहा कि इस अवस्था में रहने के लिए घर यह है। आजकल तो शादी से पहले कंडीशन रखते हैं कि फ्लैट अलग लोगे कि नहीं, बॉम्बे में अलग फ्लैट खरीदोगे तो हम शादी करेंगे तुमसे, और यदि अलग फ्लैट नहीं है तो मां बाप के पास तो हम रहने वाले नहीं है। ले जी तो पहले कंडीशन रखते हैं, पहले अलग फ्लैट चाहिए, बढ़िया घर चाहिए।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunilanakka Nayanar, presented by Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम सुनेंगे और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी, जिनका नाम थिरुनीलनक्कर है। कावेरी नदी के तट पर चातामंगे नामक एक गांव है। उस गांव के एक ब्राह्मण परिवार में थिरुनीलनक्कर का जन्म हुआ। वे प्रतिदिन आगम विधान के अनुसार शिव पूजा करते थे। वक्त बीतता गया, थिरुनीलनक्कर का विवाह हो गया। वे शिव पूजा में अपनी जीवन व्यतीत करने लगे। मार्गशीर्ष का मास था। आर्द्रा उत्सव के दिन वे प्रतिदिन की पूजा से निवृत्त होकर आयवंती ग्राम के शिव मंदिर में विशेष पूजा के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ चले। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री साथ रखी थी। पर्याप्त समय तक पूजा करने के बाद भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ। वे मूर्ति के समक्ष ध्यानमग्न हो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। अकस्मात कहीं से एक मकड़ी भगवान के शरीर पर गिर पड़ी। भक्त तो प्रभु के ध्यान में खोए हुए थे। उनकी पत्नी ने सहज वात्सल्य से प्रेरित होकर मुंह से फूंक मारकर मकड़ी को हटा दिया। थिरुनीलनक्कर ने यह दृश्य देख लिया। भगवान के विग्रह पर इस तरह फूंक मारने से जूठन गिरने का संभावना हो सकता है, अतः पत्नी ने मानो कोई अपराध कर दिया हो ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी पत्नी का तिरस्कार किया। वे अकेले घर लौट आए। पत्नी मंदिर में ही रह गई और प्रभु के ध्यान में डूब गई। रात हुई, थिरुनीलनक्कर सोने लगे। नींद लगते ही स्वप्न में आयवंती गांव के मंदिर के इष्ट देवता प्रकट हुए और अपना शरीर दिखाकर बोले, देखो वत्स, मात्र वात्सल्य से तुम्हारी पत्नी ने जहां से फूंक मारी उस जगह को देखो और मेरे पूरे शरीर को देखो। जिस जगह पर तुम्हारी पत्नी ने फूंक मारी उस स्थान को छोड़कर मेरे सारे शरीर में मकड़ी के विष से फफोले निकल आए हैं। प्रभु यह कहकर अंतर्धान हो गए। सूर्य की प्रथम किरण से भी पूर्व भक्त नीलनक्कर अपनी पत्नी को सादर घर ले आए। उनका गृहस्थ जीवन आनंद से चलता रहा। इन्हीं थिरुनीलनक्कर के घर और एक संत थिरुज्ञान संबंधर अपनी भक्त मंडली के साथ पधारे थे। थिरुनीलनक्कर ने सबका समान रूप से आदर सत्कार किया। अग्निहोत्री ब्राह्मण थिरुनीलनक्कर ने एक पिछड़ी जाति के भक्त थिरुनीलकंठ याल पानर और उनकी पत्नी को अपने घर में यज्ञशाला स्थल के समीप ठहराया था। इस कथा में भक्तिभाव को महत्व दिया गया है, बाहरी विधि विधान को नहीं। यदि पवित्र मन से कर्म किया जाए तो वह प्रभु द्वारा स्वीकार होता है। अंत में थिरुज्ञान संबंधर के विवाह के अवसर पर सारी भक्ति मंडली के साथ यह भी महाज्योति में लीन हो गए। इनके वेदमार्गी ब्राह्मण होने के कई प्रमाण पुराणकर चक्किलर द्वारा प्रयुक्त विशेषणों में से मिलते हैं। चारों वेदों के विख्याता, तीन अग्निवर्धित करने वाले, द्विजन्मा आदि ऐसे शब्द हैं। वेदमार्गी जिन आगमों को नहीं मानते उस आगम विधान के अनुसार से पूजा करते थे। अनुमतः ये कौंडिन्य गोत्र रहे होंगे। त्रिवेदी ब्राह्मणों में केवल इसी गोत्र के लोग शिव को यज्ञ के प्रधान देवता मानते थे और समस्त जपों में पंचाक्षरी को मूल स्थान देते थे। थिरुनीलनक्कर वैदिक उपासना पद्धति और आगम शास्त्र को समन्वय करके अभिषेक और अर्चना आदि षोडश उपचारों के साथ शिव आराधना की सामान्य सर्वमान्य पूजा पद्धति का रूप आकार देने वाले कौंडिन्य ब्राह्मणों में से थे। शैव धर्म में इस पूजा विधान को महत्वपूर्ण स्थान और मान्यता दिलाने का कार्य थिरुज्ञान संबंधर ने किया था। गर्व का विषय यह है कि 1000 वर्ष से भी पहले दक्षिण भारत के ब्राह्मणों ने द्रविड़ चिंतन धारा और वैदिक मार्ग का समन्वय करके जाति भेद को परे रखते हुए अनुकरणीय उपासना मार्ग को रूप दिया। वर्तमान युग में यह देखा जाता है कि आज भी हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव और कलह बना हुआ है। ऐसे में थिरुनीलनक्कर के जीवन का यह पक्ष हमारे लिए अनुकरणीय है।
2: ओम नमः शिवाय।
3: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is spiritual discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Dhyaye Nityam Mahesham Rajat Girinibham Charu Chanda Vatansam Ratna Kalpujjalangam Parasam Rigavara Vedihastam Prasannam Padmasinam Samantatstutam Amaraganir Vyagrakrityam Vasanam Vishwadhyam Vishwavandhyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padmabhavam Vasishtram Shaktim Chatatputra Parasarancha Pyasam Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Sishyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Sishyam Tantrotakam Vartikakaramanyan Asmat Gurum Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Sriyah Prapti Nimittaya Namaha Somardha Dharine Om Shantihi Shantihi Shantihi.

ओम ओम ओम प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दहियाल स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी का प्रसंग चल रहा है। इसमें अभ्यास के लिए 89वां श्लोक 89

आद्या विद्या ऋद्गता निर्गता सिद्ध विद्या ऋद्या ऋद्गता तत्प्रसादः सेवे नित्यं श्रीकरं तत्पदाब्जम् भावे मुक्तिर् भाजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षणानि दौर्भाग्य दुःख दुरहंकृति दुर्वचांसि सारं त्वदीय चरितं नितरां पिबन्तम् गौरी समाम्य समुत्तर तत्सत्कटाक्षैः सोमकलाधरमौलौ कोमलधर घनकन्दरे महामहसी

तरम रमताम। सारसनाति नयने तावेव करौ, सयेव कृतकृत्यः। या ये यौ यो वर्गम् वदतीक्षिते सदार्चतः स्मरति। बड़ा ही सुंदर भाव है ये श्लोक का। जब अर्थ आप सुनोगे बड़ा उत्पटांग लगे। हे शिव, हे शंभु, मैंने इतना कर लिया फिर भी तुम प्रसन्न नहीं होते हो। नतिविर नुतिविस्तम ईशः, यह संबोधन है। ईशः ईश्वर शब्द का अर्थ सिर्फ शिव ही होते हैं और किसी को भी ईश्वर नहीं कहा जाता है। वेद में भी जहां ईशः शब्द आता है उसका अर्थ शिव ही होता है। ईश्वर शब्द शिव के लिए प्रयोग होता है। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः। भगवान शिव ही ईश्वर हैं। दक्षिण भारत में शिव को शिव नहीं कहते। ईश मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है, शिव मंदिर शब्द प्रयोग नहीं करते। ईश मंदिर, ईश दर्शन, क्योंकि वेद ने शिव के लिए ही ईश कहा, ईश्वर कहा है। ते आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शिव के लिए संबोधन किया, हे ईशः। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत्। ईशावास्य आच्छादनीय, ये सारा जगत ईश्वर द्वारा आच्छादित है, अर्थात जगत व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है। जो आच्छन्न होता है वो व्याप्य होता है, जो आच्छादक होता है वो व्यापक होता है। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति, बड़ा वस्तु छोटे वस्तु को ढकता है, बड़ा वस्तु छोटे वस्तु को ढकता है। बड़ी चादर छोटी चादर को ढक देता है। इसलिए सबसे बड़ा परमात्मा होने के कारण सारे जगत को ढकने की क्षमता परमात्मा में ही है। जैसे सारे विश्व ब्रह्मांड को आकाश ढक रहा है, आकाश के द्वारा सारे पदार्थ आच्छन्न हैं, आच्छादित हैं, ढके हुए हैं, आच्छादित हैं। ढकने के कारण दिखाई नहीं पड़ना, ये ढकने का अर्थ नहीं है, क्योंकि व्यवहार में कई बार पारदर्शी पॉलिथीन कागज के द्वारा कोई वस्तु ढकी होती है तो ढकने पर भी दिखाई पड़ता है। तो ये नहीं समझ लेने कि यदि आकाश के द्वारा सारा पदार्थ ढका होता तो हमको दिखाई कैसे पड़ रहा है। ये दिखाई ही नहीं पड़ने की तरह नहीं ढक रहा है, आकाश के द्वारा ढक तो रहा है लेकिन दिखाई पड़ते हुए ढक रहा है।
दूसरा उदाहरण दें, जैसे इस कमरे में अभी सभी कुर्सी रोशनी से ढके हुए हैं, यानी सभी चारों तरफ रोशनी व्याप्त है, रोशनी आच्छन्न है, तो रोशनी द्वारा आच्छादित है। इसीलिए एक महात्मा कहते थे, महात्मा की अपनी शैली होती थी, सभी की अपनी अपनी शैली होती है समझाने की। कहते हैं कागज उठाकर दिखाते थे और क्या दिख रहा है तुमको बोलो, लाइट दिखता है, कागज दिख रहा है कि लाइट दिख रहा है, सारी दुनिया तो यही कहेंगे कि हमें कागज दिख रहा है, लेकिन इस कागज को दिखाने वाला लाइट इसके ऊपर व्याप्त है और प्रकाश इस कागज को पूरी तरह ढका हुआ है, प्रकाश से ये कागज ढका हुआ है, प्रकाश का आवरण पड़ा है इसके ऊपर। रोशनी में यदि कोई पदार्थ दिखेगा तो सबसे पहले रोशनी दिखेगी, और हमारा वेदांत तो ये कहता है पदार्थ तो है ही नहीं, पदार्थ तो दिख ही नहीं सकता है, दिखेगा क्या, रोशनी। इसलिए तो आदि गुरु शंकराचार्य ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा नाना छिद्र गटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिस्पंदते जानामीति तमेव भान्तमनुवात् तेतत् समस्तम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्। सबसे पहले रोशनी दिखती है, उसके बाद पदार्थ दिखते हैं। रोशनी दिखे बिना पदार्थ दिखेगा? लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे पहले रोशनी दिखी और उसके बाद पदार्थ दिखा, कहता है कोई व्यवहार में सीधे पदार्थ दिखाई पड़ा, पदार्थ दिखाई पड़ा बोलते हैं, रोशनी दिखाई पड़ा कोई भी नहीं बोलता है। इसीलिए यहां तुम ही सह हे सह, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने बहुत कुछ किया, नति भी ही नुति भी ही, नति शब्द का अर्थ होता है नमस्कार, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने हजार बार नमस्कार किए, साष्टांग दंडवत किए, नुति भी ही, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने बढ़िया बढ़िया कविता की रचना करके बड़े दिव्याति दिव्य स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति भी की है, आपका गुणगान किया है मैंने, नति भी ही नुति भी ही, तुम ईशा पूजा विधि भी रहे।

बहुपुष्प सुपूजिताय। कभी कभी आपके सबसे प्रिय फूल मंदार पुष्प से भी आपकी अर्चना की है, मधु से आपकी अर्चना अभिषेक किया है, इच्छुरस से आपकी अर्चना की है। शास्त्र में बहुत द्रव्यों का निर्धारण किया है कि शिव जी की अर्चना करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किस द्रव्य से अभिषेक करना है बताया गया है। कल आकर पूछोगे हमसे, निरोग होने के लिए किस द्रव्य से शिव की अर्चना करनी है यह भी बताया गया है। रोग निवृत्ति के लिए द्रव्य विशेष से अभिषेक करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष द्रव्यों का निर्धारण किया है, इस द्रव्य से अभिषेक करोगे तो ज्ञान प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष द्रव्यों का निर्धारण किया है, संतति प्राप्ति के लिए। फलाने द्रव्य से यदि आप ईश्वर शिव की अर्चना करते हो, अभिषेक करते हो, तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, संतति की प्राप्ति होगी, आदि आदि बहुत से विकल्प हैं। पूजा विधि करते हो, श्रावण महीना जब आता है, कोई बेलपत्ते से भगवान की अर्चना करता है, कोई कमल फूल से भगवान की अर्चना करता है, कोई मधु से अभिषेक करता है, कोई फल के रसों से अभिषेक करते हैं, कोई गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, ये अलग अलग फल हैं। इच्छुरस के द्वारा अभिषेक करोगे तो वो अलग फल होगा, नारिकेल रस से अभिषेक करोगे तो उसका अलग फल बताया गया है। दूध से अभिषेक का अलग फल, दही से अभिषेक का अलग फल, पंचामृत अलग चीज है। पंचामृत तो सामान्य पूजा का अंग है, अभिषेक करने के लिए विशेष द्रव्य का निर्धारण किया है। शंकराचार्य ने कहा कि हमने कोई कसर नहीं रखी है, शास्त्र ने आपकी पूजा के लिए जो विधि बताई है, सारे विधियों का प्रयोग करके हमने आपकी पूजा भी की है। नतिभिर नतिभिस्तमीश पूजा विधिभिर ध्यान समाधिभिर नतुष्ट, और अनेक प्रकार के ध्यान और समाधि का विधान भी किया है। शिव ध्यान के विधान है, कौन से स्वरूप का ध्यान करना है। शिववास देखना पड़ता है, समझे नहीं? आप नियमित यदि शिवजी का अभिषेक करते हो तो उसमें शिववास देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी अभिषेक करते हो तो शिववास देखना बहुत जरूरी होता है। पंचांग में उसका विधान है शिववास, जब चाहो तब इच्छा हो गई तो पंडित को घर में बुलाया और अभिषेक शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है, पास देखना पड़ता है। शिव अलग अलग तिथि अलग अलग मुहूर्त में अलग अलग स्थान में वास करते हैं, ये पंचांग में ये निर्धारण किया है।

0: कभी मसान में बास करते हैं, मसान में, शमशान भूमि में, कभी पाताल में बास करते हैं, कभी स्वर्ग में बास करते हैं, कभी गौरी सन्निधा में बास करते हैं, पार्वती के सान्निध्य में रहते हैं, और कभी कैलाश में निवास करते हैं, कभी धरती में निवास करते हैं, कभी भोजनालय में भोजन करने के लिए जाते हैं तो दिन भर वहीं बैठ जाते हैं। उस शिववास का ही विधान है। वो देखना पड़ता है शिव कहाँ है। गौरी सन्निधि में यदि आप उपासना करते हो तो दाम्पत्य जीवन में बड़ा आनंद आता है। जिस समय भगवान शिव गौरी के साथ बैठे हुए हों, उस समय तुम शिव जी के अभिषेक करो। ये विधान ही है, ऐसा अभिषेक का विधान है। अब मसान घाट में बैठे हो और तुम अभिषेक करो तो फिर उसका दूसरी फल है। पाताल में बैठे हो और उनका अभिषेक करो, इत्यादि इत्यादि। तो पूजा विधि वीर ध्यान समाधि वीर, और बहुत बार सब छोड़कर फिर मैंने आपका एकाग्र भाव से चित्त में ध्यान भी किया है, इसके बावजूद भी हे ईसा त्वम न तुष्ट, फिर भी तुम आज तक प्रसन्न नहीं हुए हो, फिर भी आज तक प्रसन्न नहीं हुए हो। ये दूसरे लाइन बड़ा खतरनाक है। पहले लाइन तो ठीक ही है, भक्त भगवान के साथ उलाहना देता है, लेकिन ये बड़ा विचित्र शब्द प्रयोग किया शंकराचार्य।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: आप क्या हमें समझा रहे हैं? भोजन तो आया नहीं, तो भाई आपके प्रारब्ध में कल भोजन ही नहीं था। आज जंगल में गए होते तो थाली लेके कोई आता था। हाँ, ये प्रारब्ध का सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, प्रारब्ध में जितना धन है, जिसकी जितना धन प्रारब्ध में, वो जाने दीजिए। आपको जब जितनी आवश्यकता है वो आपको मिल जाएगा। हाँ, आपको जितना आयुष्य की जरूरत है आयुष्य मिल जाएगा। आयुष्य के लिए भी कोई चिंता मत कीजिए। आपको जितने पुत्र की जरूरत है या न पुत्र की भी जरूरत है, उसको लेट हिम डिसाइड। हाँ, इज द बेटर जज। और उनकी इच्छा से कुछ हो गया तो उसका ध्यान भी वही रखेंगे, आपके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं आएगी। और कीर्ति जो, प्रतिष्ठा जो, यानी तीनों ऐषणा जो है, परमात्मा का नाम लेंगे तो ये तीनों ऐष्णा का भार जो है वो परमात्मा ही उठा लेंगे। हमें सिर्फ ये स्तवन, ये स्तोत्र, ये कवन करना है। ये होता है कि नहीं, इस प्रकार देखने के लिए भी आप थोड़ी क्षणों के लिए छोड़ देना और देखना, ये आपके अनुभव की बात बनेगी। हमारा यहाँ 100 बार बताने से भी कुछ नहीं होगा। कहते हैं महेश्वर से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है, महिम्न से श्रेष्ठ कोई स्तुति नहीं है, और अघोर जो मंत्र है उससे श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। ऐसा कहते हैं। देखिए, कभी ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, पर जरूरी नहीं, गुरु तो 24 घंटा नहीं रह सकता, साथ बोल नहीं सकता, तो बीच में कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, हमें डर भी लगता है, भय भी लगता है, तो भाई क्या करना, तो तब ये जो मंत्र है वो मंत्र का पाठ आपको दिया जाता है। अघोर, घोर यानी पूरा तमस, अंधकार, और अघोर जहाँ घोर नहीं है, जहाँ क्लेश नहीं है, जहाँ अविद्या नहीं है, अंधकार नहीं है,

0: रूपेभ्यः, ये मंत्र दिया जाता है। ये मंत्र आप कीजिए तो जैसे सर्प काटता है तो सर्प डंश निवारण का जो मंत्र है वो मंत्र, वो जो जिसको सर्प काटा है उसे न जाना होता है मंत्र, उसका अर्थ उसे न पता लगने पर भी डंश जो है, जो जहर जो है वो निकल जाता है। ऐसे ये मंत्र का अर्थ भी अगर नहीं पता है, ये मंत्र किसके लिए प्रयोजन किया है वो महादेव का भी हमें ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, मंत्र का उच्चारण भी है वही काफी है। जो ईश्वर सचराचर व्याप्त है उसकी इतनी तो महिमा होगी ना कि नाम ही काफी हो जाएगा। हाँ, अर्थ नहीं समझे नहीं तो वो ईश्वर कैसा, सब समझ में आएगा तो समझ में आ ही जाएगा कि वो परमात्मा मैं हूं। न समझ में आने पर भी कोई असर दिखला देगा तो उसका नाम है ईश्वर। और ये जो चमत्कार है वो यही हो सकता है और यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ चमत्कार है कि मन और वाणी का विषय नहीं है, उसे मन और वाणी को पहुंचाने की हम चेष्टा कर रहे हैं। और इसमें जो चेष्टा अधूरी रह जाती है वो जो गुरु शास्त्र की जो कृपा है, आत्मा की जो कृपा है, ईश्वर की जो कृपा है, वो ये जो डिस्टेंस जो है, ये जो जगह जो है वो परमात्मा उसे पूरी कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हम बड़े बड़े ये सब जितने बड़े मैकेनिकल प्लांट जो चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो चल रही है, आपको पता है उसमें जीरो एरर तो है ही, वो एरर कौन भरता है? वो मशीन में, सब क्लॉक में जितना भी मशीन से काम चल रहा है उसमें एरर है ही, वो एरर की पूर्णी कौन कर रहा है? कौन अदृश्य तत्व कर रहा है? इवन योर क्लॉक इज नॉट दैट प्रिसाइज। ये क्लॉक से आपने शुरू किया प्लांट का काम, पर देश और काल से क्लॉक बदल भी जाता है, तो क्लॉक बदलता है एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहां से यहां हो जाती है तो भी आपका प्लांट ऐसे ही चलना है। तो ये जो बीच वाली जो घड़ी है जिसका जो ह्यूमन एरर जो है वो आप करेक्ट नहीं कर सकते, वो करेक्ट कौन कर रहा है क्षण क्षण में? वो अगर वो करेक्शन न हो ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बैलगाड़ी में चलना पड़ेगा। इवन यू कांट कंट्रोल अ पेट्रोल पंप प्लांट, वो सब मशीन से, सब कंप्यूटर में चलता है, पर वो जो एरर का करेक्शन जो है वो परमात्मा कर रहा है। हाँ, ये पूर्णी जो है वो परमात्मा कर रहा है। तो हे परमात्मा, आपको जानने के लिए जितना खींच सके उतना मन बुद्धि वाणी में ले जाता हूं, थोड़ी जो पूर्ति है वो आप कर दीजिए, पर हमारी जो मन बुद्धि वाणी जहां तक हम ले जाते हैं ना वो 100% होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहां आते हैं, ये प्रवचन से इतना ही बताना है कि ये जो है एफर्ट्स जो रखनी है वो पूरी 100% रखनी है, वहां इधर से उधर नहीं होगा, यहां एक चीज भी नहीं चलाई जाएगी। हाँ, तो ये ऐसा कहा है, ये अघोर मंत्र है, दीक्षा दानम तपस्तीर्थम। अब क्या कहते हैं कि ब्रह्मचर्यादि आदि अनेक दीक्षाएं हैं, गाय, पृथ्वी, सुवर्ण का अनेक दान कहा गया है, दान की भी महिमा है, कृष्ण चांद्रायण व्रत जैसे अनेक व्रत और तप है, काशी पुष्कर आदि अनेक तीर्थ जो है, तीर्थ यात्राएं कही गई है, शास्त्रीय ज्ञान यज्ञ यागादि जो क्रिया है उसका, उसमें से कोई भी महिम्न स्तोत्र जो है उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो क्या ये सब हम करना छोड़ दें? बोले ये सब करना छोड़ना नहीं है, ये अवश्य चित्त शुद्धि के साधन है, पर सबकी ऐसी अवस्था नहीं होती कि तीर्थ कर सकते हैं, सबकी ऐसी अवस्था नहीं होती कि दान कर सकेंगे, शास्त्र पढ़ सकेंगे। भाई सबकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं होती कि शास्त्र के इतने जो अभी जहत अजहत लक्षण नाम सुन के ही कैसा हो जाता है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ क्या कहा है कि दान करना तो श्रेष्ठ है पर दान नहीं कर सके तो ये कर, एटलीस्ट महिमा कीजिए, तप नहीं कर सके तो ये कीजिए। हम जब ये बताते हैं कि ये सबकी जरूर नहीं है तो हम ये भी रख देते हैं और यही नहीं करते हैं, उससे तो अच्छा है कि दान, जप, तप, याग, यागादि, तीर्थ सब कुछ कीजिए। पर यहां हमारे ऊपर कृपा की है कि ये सब करने में आपको समय नहीं है, ऐसी अवस्था नहीं है शरीर की कि आप ये सब कर सके, तो घर बैठ के ये पाठ किया तो भी पर्याप्त है, ऐसा कहते हैं। ये पाठ परमात्मा की वो 16वीं जो कला जो है, पाठ की जो 16वीं कला है उस तक कुछ भी यज्ञ यागादि पहुंच नहीं सकते, ऐसा कहा है। अब कहते हैं स्तोत्रकार का नाम निर्देश किया है, कुसुम दशन नामा सर्व गंधर्व राजह। पुष्पदंतक नामक सब गंधर्वों के राजा, चंद्र की कला जिसके मुगुट में है और जो महादेव के सेवक है। ये जो पुष्पदंत गंधर्व थे ना, वो महादेव के सेवक थे, गण थे। वो गंधर्व महादेव के क्रोध से, अपने प्रताप से भ्रष्ट हुए थे। कल जो बात की ना, परमात्मा के गण अपने साथ क्या रखते हैं, स्मरहर पिशाचा सहचरा। तो ऐसे परमात्मा के श्रेष्ठ गण थे, सहचर थे, पर कोई पाप से भ्रष्ट हुए थे। परमात्मा ही भ्रष्ट करते हैं पाप से। क्यों भ्रष्ट करते हैं? क्योंकि परमात्मा को वो जो उसका, हमने कहा ना कि एक कर्म भी बाकी रह गया तो तकलीफ होगी, तो यहाँ एक कर्म भी जो बाकी रह गया तो परमात्मा उससे भी पुष्पदंत को छुड़ाना चाहते थे। इसीलिए ये गंधर्व की योनि, गण से तो गंधर्व की योनि कम ही है ना, परमात्मा के गण से, तो इसीलिए गंधर्व की योनि दी। बोले कि तू मुझसे ये दूर रह के, गंधर्व की योनि को भुगत के ये जो तेरे पाप कर्म जो है वो आप समाप्त कर दो, फिर से आपको मैं आपके गण के रूप में मैं ले लूंगा। तो कहे कि आपने प्रताप से भ्रष्ट करके पुष्पदंत को कृपा ही की है, इसीलिए वो परम दिव्य महिम्न। देखिए, ये परम दिव्य महिम्न ऐसे भ्रष्ट नहीं होते, गंधर्व राज नहीं बनते, तो ये दिव्य महिम्न बनाने की चेष्टा नहीं करते। ये समझ में आया? और इसीलिए ये उनके भीतर भक्ति और ज्ञान का समझना क्या है कि कभी हमको ऐसा लगता है कि हम ये गुरु की इतनी सेवा करते हैं, हम इनके लिए इतना करते हैं, हम इतनी भगवान की भक्ति करते हैं, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, परमात्मा का उपकार मानिए कि आपके ही साथ हुआ। भाई, परमात्मा ने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो रासलीला में होता है। रुक्ष्मणी जी है, उनकी जो नथ जो है, हाँ, जो ऑर्नामेंट है नाक की नथनी, वो गुम हो जाती है। किसने गुम की? तो बोले कृष्ण परमात्मा ही गुम की। क्यों गुम की? तो नरसिंह मेहता जी गए थे ना रासलीला देखने के लिए, तो रुक्ष्मणी जी के मन में थोड़ा कम भाव आ गया। कैसा भाव आ गया? कि अरे, ये पृथ्वी लोक का, मनुष्य लोक का जो है व्यक्ति, ये जीव, ये कैसे मेरे प्रभु के दर्शन कर सकते हैं? मैं ही हूं ज्ञानी, मैं ही पवित्र हूं और मैं ही दर्शन करने योग्य हूं, मैं ही अधिकारी हूं, इनका अधिकार कहां? ऐसा गुमान आ गया। तो क्या हुआ? परमात्मा ने तुरंत वही क्षण, देखिए एक बात याद रखना, ये जो गुरु है, गुरु रूपी परमात्मा है, कोई मुहूर्त नहीं देखते तोड़ने काटने के लिए। जिस क्षण दिखा उसी क्षण उसका पार, क्योंकि रासलीला है, पूरे जितने अधिकारी हैं सब इकट्ठे हुए हैं ना गोपियों के रूप में, वो सब देवी देवता ही थे, इतने सारे मौजूद थे, प्रकृति भी मौजूद थी। हाँ, प्रकृति यानी जो चंद्रमा थे, वायु देव थे, सब कोई मौजूद थे वहां, और इन सबकी प्रेजेंस में, हाँ, इन सबकी उपस्थिति में कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं सोचा कि रुक्ष्मणी जी ने कोई कम तप नहीं किया होगा कि कृष्ण परमात्मा की पत्नी बन के आए। हाँ, अतिशय तप किया होगा कि इतना नित्य सानिध्य मिला, तो वो कोई कम अधिकारी नहीं थे, इतने श्रेष्ठ थे। तो भी इतने श्रेष्ठ रुक्ष्मणी को इतने लोगों के बीच में अपमानित करूंगा तो क्या होगा? जो होगा वो, मेरे शरणागत का इतना भी बुरा मैं नहीं देख सकता, कृष्ण परमात्मा ने कहा, क्योंकि रुक्ष्मणी जी का ये भाव मुझसे उन्हें दूर कर देगा, ये डर लगा। परमात्मा इतने कृपालु होते हैं, आपको शरणागत, आपको उपस्थिति होना है, और इस भर सभा के बीच, पर बुरी रासलीला के बीच, नरसिंह मेहता जी के बीच, शिव जी भी आए थे वहां, और उसके बीच उन्होंने ये नथ उनकी गुमा दी, और उनको माने कि मान हानि की है, गुमान जो है वो वही क्षण निकाल दिया। तो यहां है कि आपको जो पद भ्रष्ट किया, इसी लिए आप ये स्तोत्र की रचना कर सके। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जब भी कोई भी गुरुजन, कोई भी परमात्मा का ऐसा कोई भी कर्तृत्व जो हमें अच्छा नहीं लगे, भाई अभी कहना जरूरी क्या था? हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतना ध्यान रखते हैं, तो भी इसका सुनना पड़ता है, इसीलिए सुनना पड़ता है। सेवा नहीं करनी है तो नहीं करना पर अगर सेवा करेंगे, अगर ध्यान रखेंगे गुरु का, तो ये सुनना ही पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? आपके उद्धार का। देखिए, जो जैसा होता है वो उसी को, पानी के साथ पानी ही मिल सकता है ना। अब ऑयल डाल दिया तो वो तो तरेगा और किनारे पे जाके छुट जाएगा। पानी से मिलना है तो पानी क्या करता है? पानी अपने स्वभाव को, नदी को ही अपने में आकर्षित करता है, समुद्र। क्यों? क्योंकि भले मीठा है पर जल तत्व है। मिल जाएगा। तो आपका स्वभाव कैसा भी हो, एक भी चीज, एक भी विचार, एक भी गलत विचार आपको आया तो तत्क्षण, वही क्षण उसका खंडन किया जाएगा। हमें क्या करना है? बिना अहंकार हमें सिर्फ उपस्थित रहना है और ये याद रखना है कि कुछ अच्छा मेरे जीवन में होने वाला है, इसीलिए ऐसा हुआ है। शुरुआत में पुष्प दंत जी ने जो दंत कथा कही थी, वही ये श्लोक से मिलती है। यानी ये जो कथा जो है, पुष्प दंत जी की स्तोत्र है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये प्रसंग हुआ है ऐसा वेद और शास्त्र और ऋषि मुनि ऐसा विधान देते हैं, साक्षी देते हैं। स्तोत्र की महिमा कहते हैं आसमाप्तम इदम स्तोत्रम करके, कि ये जो स्तोत्र है वो शुरू से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, मांगलिक है। महादेव जी के वर्णन रूप ये गंधर्व रचित स्तोत्र अब समाप्त होता है। स्तोत्र पाठ के अंत जो हमने प्रार्थना की, इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमद् शंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियताम् मे सदाशिवः। ये जो वाङ्मयी पूजा जो है, श्रीमद् परमात्मा शंकर के चरणों में मैंने अर्पण की है, ये पूजा से देवादिदेव शंकर मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यानी यहाँ क्या कहा है कि आपके पास कुछ भी श्रेष्ठ हो, आपका ही हो, है ही तो पुष्पदंत जी की ही बुद्धि, उन्हीं का स्तोत्र है, यू कैनॉट डिनाई दैट। फिर भी क्या होता है कि मेरा जाने के मेरा ये नहीं है, ऐसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। हमारे पास कितनी भी हमारी विद्या हो, हमारे गुण हो, हमारे पास कुछ भी सराहनीय हो, जो वखान करने लोग योग्य हो, वो क्या है, वो सब कुछ भले ही हमारा हो, फिर भी उसके लिए दीन भाव रख के चलिए। उसके लिए दीन भाव होना चाहिए कि नहीं, ये आपका ही है। और ये खाली मुख का भाव नहीं चाहिए, अरे सब कुछ आपका ही है, नहीं, ये भाव की परमात्मा को आवश्यकता नहीं है, हृदय से वो लगना ही चाहिए। ये क्या है, हमारा ही अहंकार कम होता है, और जीरो अहंकार हो गया तो परमात्मा प्राप्त ही है, यही है। स्तोत्र के अंत में कहते हैं, श्री पुष्पदंत के श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गते न। ये स्तोत्र के पाठ से शंकर भगवान की प्रसन्नता कैसे हुई? तो गुरु की प्रसन्नता ऐसे हुई, श्री पुष्पदंत के मुख कमल में से निकले हुए पाप को हरण करने वाले और शंकर के प्रिय ये स्तोत्र को मुखपाठ करके समाहित रह के, यानि सावधान चित्त से मुखपाठ करके, यानी सावधान चित्त से। देखिए, ये एक मन के चांचल्य को दूर करने का प्रकार है। काय वांग मनः कार्यमुत्तमम् पूजनम जपश चिंतनम क्रमात्। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको तीन प्रकार के आदेश दिए जाते हैं। कैसे? तो भाई, कायारूपी पूजन कीजिए। कायारूपी पूजन क्या, क्यों विधान किया है? क्योंकि काया से जब पूजन करेंगे तो हाथ फूल हार चढ़ाने में लगेंगे, आंख से देखेंगे तो कहेंगे परमात्मा के सर पे पुष्प चढ़ाया है, पेट पे चढ़ाया है, कहाँ चढ़ाया है, तो आंख परमात्मा को देखती रहेगी तो दूसरी चीजों को नहीं देखेगी। पर्पस क्या है? कान जो है, मुख से परमात्मा का नाम बोलते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, मुख से बोलते हैं ना, तो मुख कोई और कुछ नहीं बोलेगा। नहीं तो पूजा करते करते वो दूध चढ़ा दे, चलो वो पेपर वाला आ गया, इसका फोन आ गया, उसको बोल दे मैं अभी पूजा कर रही हूं, नमः नमः, ऐसा नहीं चलेगा। काया से, पूजन से, और कान जो है, आप जो बोलते हैं उसी को सुनना है कान में। पूजा करते वक्त, हाँ, मोबाइल का अच्छी बात बताई, वो मोबाइल को क्या करते हैं पता है? पूजा करते वक्त केशवाय नमः, हाँ भाई मेरे मोबाइल आया ना अभी, तू स्पीकर ऑन कर दे, वो मोबाइल में लाउड स्पीकर होता है ना, तो स्पीकर ओम केशवाय नमः, और यहाँ से वो बोलती रहती है, जो भी फोन है वो एक लड़की लेके आपको फोन ऐसा रखती है और आप वो केशवाय नमः करते, ऐसा नहीं, जो बोला गया वही कान में जाना चाहिए। तो जो श्लोक मुख से बोलते हैं वही कान में जाए, ये पूजा की विधि, ये हमें बांधा है पूजन की विधि देके। ये कोई ऐसी नहीं, दो सेकंड दो क्षण के लिए पूजा कीजिए, पर पूरी ऐसे ही पूजा कीजिए। तो यहाँ क्या कहा है कि समाहित होके, सावधान होके, तो ये पूजा के नियम आपको दिए गए हैं, क्योंकि और सब चीज से थोड़ी क्षण के लिए परमात्मा के ऊपर मन एकाग्र हो, एकाग्र चित्त जब होता है तब जो शाश्वत शांति आपको चखने मिलती है वो संस्कार बन जाते हैं, और वो ही संस्कार आपको दोबारा पूजा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। इसीलिए ये कहा है। फिर इसमें ये जो शांति है बिना पूजा आप प्राप्त करने के लिए आप अधिकार बढ़ेगा, तो बिना पूजा, बिना भगवान की मूर्ति, बिना चंदन किए, बिना फूलहार चढ़ाए भी आप समाहित होंगे, तब आपको वाणी का तप बोला जाएगा। कि भाई वाणी से सिर्फ परमात्मा का नाम ले लिया, माला कर ली, तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि उसमें भी मन आपका शांत होता है। अच्छा, माला करे बिना भी आप ऐसे ही शांत बैठ सकते हैं, तो आपको निधि ध्यासन तप दिया जाता है। मैं कहती हूँ ना, भाग्यशाली है कि सब कुछ दे दिया है हमें। तो ये निधि ध्यासन कब दिया जाता है? ये मानसिक तप है। मानसिक तप में भी सरल चिंतनम विरल तप परम, विजातीय वृत्ति प्रवाह को तिरस्कार करके सजातीय वृत्ति प्रवाह से, सजातीय वृत्ति प्रवाह यानी एकमात्र ब्रह्म के जो स्वरूप लक्षण है, ब्रह्म के स्वरूप लक्षण का एक तानत्व में तद्धि निधिध्यासनम उच्यते, एक तानता से, एकाग्रता से चिंतन किया। अच्छा, उसमें भी आप सक्षम हो गए, चिंतन करने के बाद जो आनंद है, जो निर्गुण निराकार जो क्षण है, जिसमें कोई देह भाव नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, फिर भी आप जागृत जिंदा है, ये सब कुछ है और आप जाग रहे हैं, वैसी क्षण बिना निधि ध्यासन किए आ जाए, उसे समाधि कहते हैं। उसमें भी सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि है। सविकल्प समाधि यानी वो समाधि बीच बीच में टूट के, तार टूट टूट के फिर से लगाना पड़ता है। और निर्विकल्प समाधि क्या है? निर्विकारतया वृत्तिया, विकारहीन वृत्ति। विकार कैसे है? निर्विकार यानी साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, राग द्वेष नहीं चाहिए, ऐसी विकार निर्विकार स्थिति है, उसको ब्रह्माकार बनानी है सजातीय वृत्ति से, अखंडाकार वृत्ति से। अखंडाकार यानी आकार का खंड नहीं हो, मेरा मुझसे किया हुआ, मेरा ही चिंतन मुझसे किया हुआ, मेरे द्वारा किया गया चिंतन, इसमें आकार अखंड रहता है, ये अखंड आकार वृत्ति है। देखिए, कोई मूर्ति है तो वो देव है, आराध्य देव है, उपास्य है, मैं उपासक हूं, और हम दोनों के बीच में क्या है? उपासना चल रही है, ये त्रिपुटी बन गई, तो अखंड आकार वृत्ति, वृत्ति टूट गई। यहां तो वृत्ति भी नहीं तोड़नी है, आकार ऐसे ही रखना है और चिंतन भी करना है, तो वो एक ही तरह से हो जाता है, अहम वृत्ति से ही वो हो सकता है, ये अखंड आकार वृत्ति से चिंतन करना। तो निर्विकारतया वृत्ति ही ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिम विस्मरणम सम्यक। आहा, बार बार ब्रह्माकार बनाने की जब आपको जरूर नहीं पड़ती है, वृत्ति का विस्मरण हो जाता है, सिर्फ मेरे अहम का ही याद रहता है, स्मरण रहता है, स्मृति रहती है, समाधि ही ज्ञान संगमित, ये ज्ञानियों की समाधि है। इस ज्ञानियों की समाधि तक पहुंचाने का ये स्वल्प अल्प निर्दोष प्रयत्न हमने किया है, ऐसा पुष्पदंत जी कहते। इसलिए सावधान तया सुनो, सावधान चित्त से पढ़ने से जो भूतपति महादेव जी है वो प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही महादेव स्वरूप परमात्मा, गुरुजन, जो भी कुछ हमने श्रवण किया उससे ये सब कुछ यानी मेरा पूरा, मेरे द्वारा यानी हम सबके द्वारा, वाणी में से, रूप में से, चक्षु में से निकले हुई सब हमारी वृत्ति परमात्मा के प्रसन्नता का कारण बने, ऐसी यहाँ प्रार्थना है। और वो कब बन सकती है? जब परमात्मा के प्रत्यर्थ ही कर्म करे। परमात्मा के प्रत्यर्थ याने उसमें उपनिषद का जो वाक्य है वो आपके लिए जरा जरूरी है, काम का है, इतना बता के हम समाप्त करेंगे। उपनिषद का क्या वाक्य है? भाई हमको कैसे पता लगे कि परमात्मा के लिए प्रत्यर्थ है? तो उपनिषद ने बताया है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतत। तम सौ परित्य विविनक्ति धीरा। क्या कहा है भाई, श्रेय और प्रेय ये दोनों चीज आती है सामने। कोई भी प्रारब्ध वशात कर्म भोग आ गया ना सामने। कर्म भोग किस प्रकार आएगा तो बोले शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच प्रकार से, ये पांच प्रकार का रूप लेके हमारे प्रारब्ध वशात भोग आके सामने खड़ा रह गया। हा? ये भोग व्यक्ति के रूप में भी आएगा, वस्तु के रूप में भी आएगा, परिस्थिति के रूप में भी आएगा। ये भोग आके खड़ा रह गया, अब सोचना है कि इसको एंटरटेन करने में मैं ज्यादा प्रपंची बन जाऊंगा, मैं ज्यादा विषयी बन जाऊंगा, परमात्मा का विस्मरण हो जाएगा। ये सामने वाला व्यक्ति मात्र प्रपंच करता है, मात्र सुख भोग है, इसके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की कोई चेष्टा है और दिखे कि इसके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं है, क्या इस व्यक्ति को मिलने से मैं ज्यादा चंचल हो जाऊंगा? मैं जितना साधन कर रहा हूं कि एक घंटा भी आ रहा हूं, क्या वो भी छुड़ाने वाला ये व्यक्ति है? ये सोच लो और जवाब हां आए तो तुरंत वहां से निकल जाओ। किसी से किसी का भय नहीं रखना। क्या भय रखना है, वो है संभालने वाला। किसी को पकड़ने छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जवाब ना आया कि नहीं, इससे मेरा श्रेय कर्म तो नहीं होने वाला है, ये प्रेय कर्म होने वाला है, और जितना परमार्थ मैं कर रहा हूं ना वो भी छुड़ाने वाला है ये व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को छोड़ दो। समझ में आया? ये श्रेय प्रेय शब्द रूपी विचार आया, भाई ये शब्द मुख में से निकालने से मेरी वृत्ति श्रेय वाली, मैं परमात्मा के नजदीक जाने वाली हूं या परमात्मा से दूर जाने वाली हूं, मैं प्रपंच बनने वाली हूं, हाँ समाज ही मेरे भीतर जाने वाला है। जवाब हां आया तो मुख में से वो वाक्य नहीं निकाले। ये दृश्य देखने से मेरी वृत्ति चंचल होने वाली है, विषयी होने वाली है या परमार्थ में जाने वाली है? जवाब हां आए तो वो चीज देखना, वो चीज खाना, वो चीज पहनना, वहां जाना। पहले सोच लीजिए कि आपकी भगवत आकार वृत्ति इधर से उधर कभी भी ना हो। व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति हर क्षण आपके जीवन में आते रहते हैं। श्रेय और प्रेय का विचार उनको नहीं करना है, हमें करना है। और हम दोष किसको देते हैं? वो व्यक्तियों को देते। देखिए मेरा तो समाज, मेरे व्यक्ति, मेरा तो कुटुंब भी ऐसा है ना कि मैं हमको प्रपंच में ही खींच जाते हैं। फॉल्ट डज नॉट लाई विद देम, फॉल्ट लाइज विथ मी। आपको पता लगना चाहिए कि कैसे मैं प्रपंची बन रहा हूं, कैसे मैं घसीट रहा हूं, तो वहां से बंद आपको करना है। उनका फॉल्ट नहीं है। उनको दो उपदेश देने की भी दूसरी गलती साधक क्या करते हैं कि थोड़ा सुन लिया और उपदेश देने लगते हैं। अरे उन्होंने वो प्रयत्न किया है, यहां आके सुनने की चेष्टा की है। हाँ रेडीमेड किसको पचता है? रेडीमेड नहीं, रेडीमेड तो भगवान के दर्शन भी रेडीमेड नहीं पचते हैं। कैलाश मानसरोवर जो कोई वो हेलीकॉप्टर में जाता है मरण प्राय हो जाते हैं। हाँ मैनी पीपल हैव डाइड, सीधे चले गए, एक्लाइमेटाइजेशन नहीं हुआ, नेपाल से जाके सीधे जाना है तो जाइए, हर्ज नहीं है, पर क्या है डेंजरस तो है। यहां से इतना प्रयत्न करके आप गए तो क्या हम अच्छी अच्छी बातें सुनी तो हम नहीं बतानी है? आपको बतानी है, पर किसको बतानी है? जो ये प्रेय मार्ग को पसंद करता है उसे बतानी है। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं आप? कृष्ण परमात्मा ने कहा है शिष्य या गुरु, अरे शिष्य या पुत्र, ये दोनों नहीं है। तो ये बात हे अर्जुन, आप ये जो शुद्ध विद्या जो मैंने दी है, ब्रह्म विद्या जो दी है, वो ब्रह्म विद्या किसी को नहीं देना। ये ब्रह्म विद्या जो आप यहां से सुन रहे हैं उसका सदुपयोग मात्र आपके लिए ही करना, आपका चित्त शुद्ध करना, आपको अधिकार बनने के लिए ये ब्रह्म विद्या काम लगेगी। अन्यथा दूसरे को कहने की चेष्टा मत करना, वो नष्ट होती जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कब हम जीरो पे आ गए। हाँ तो बहुत ही सावधानतया आप देखिए, एक अंतिम बात मैं कर दूं, आप ऐसे बन जाइए। देखिए किसी का अच्छा करने के लिए शरीर से नहीं दौड़ना है, कष्टदायक है, थोड़े साल दौड़ सकेंगे, मन से किसी का सोच सकेंगे पर मन भी हो जाता है, शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी क्षीण हो जाती है, तो क्या करना है? किसी का अच्छा करना ही है तो क्या करना है? भाई आप ऐसे हो जाइए, आप वो परमात्मा वो ब्रह्म तत्व को ऐसी क्षण ऐसे प्राप्त कर लीजिए कि आपका स्मरण भी कोई करेगा और उद्धरण हो जाएगा उसका। द्रौपदी जी ने स्मरण मात्र किया ना, पर कृष्ण परमात्मा कैसे थे, इतने महिमावान थे, इतने ब्रह्म से भरे हुए थे, इतने सच्चित आनंद में थे, एक लेश नहीं था संसार का, तो नाम लेने से कोई उद्धरण हो जाता है, तो आप ऐसे बन जाइए ना, यू हैव द कैपेसिटी। आप यही क्षण किसी का भला चाहते हैं तो कोई हमारा नाम ले और उसका काम हो जाए, ऐसे बन जाओ। हाँ, ये बड़ी से बड़ी सोशल सर्विस है, ये बड़ी से बड़ी काम हम कर सकते हैं। तो हमारा जो गंतव्य है, पहुंचना कहाँ है, वो परम तत्व तक, यही गंतव्य रख के ये सब स्तुति है, स्तोत्र है, पाठ है, ज्ञान है, ये न के न प्रकारेण हमारी वृत्ति भगवद्मयी बनी रहे, ऐसी ही परमात्मा और गुरुजनों से हम प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।
1: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 31.

तो अब यहां पर टीकाकार जो है मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं, संकेत किया पूर्वम, पूर्व काल में जो है गुरु भी, गुरुओं ने, ऋषियों ने क्या किया, तो उसके लिए संकेत कर रहे हैं कि पद वाक्य प्रमाणतः, पद और वाक्य, उन पद और वाक्यों के प्रमाण को लेकर के। पद क्या है, तो पद के लिए संकेत किया गया। पद किसे कहते हैं, तो सुप्तिंगंतम पदम। पद कौन कहलाता है, जिसके अंत में सुप व्यक्ति का नियोजन किया गया हो अथवा तिगंत विभक्ति का नियोजन किया गया हो, ऐसे उस शब्द स्वरूप को पद शब्द से कहते हैं। जब उसके साथ में सुप विभक्ति का संबंध हो जाता है अथवा तिंग विभक्ति का संबंध हो जाता है, तो वह शब्द एक अर्थ से समन्वित हो जाता है और वह जो अर्थ है वो उस संबंध को, उस लक्ष्य को प्रतिपादन करने वाला हो जाता है। इसलिए पद शब्द का, शब्द न कह करके क्या कहा, पद। तो अब जो है सब शुभ विभक्ति हो गई, तो ये विभक्तियों को हमारे यहां ग्रामर में क्या कहा, कारक। क्या कहा, कारक। अंग्रेजी में क्या टेंस आदि कहते हैं, तो कारक। अब जो है कारक का तात्पर्य क्या है, तो कारक को विभाजित किया गया, उन्हीं कारकों को लेकर के विभक्ति शब्द का प्रयोग किया, उन कारकों में सात विभक्तियों की चर्चा की गई, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तम। अब ये विभक्तियां जब कर दी गई तो इन विभक्तियों को लेकर के ही जगत का जितना भी व्यवहार है वो इन कारकों को लेकर के या इन विभक्तियों को लेकर के ही व्यवस्थित होता है। जितना भी संबंध है और जितना भी व्यवहार है वो किसको लेकर के होता है, इस कारक को लेकर के या कारक के अंदर निहित जो विभक्तियां उनको लेकर के होता है। इसलिए जो कारक के अंतर्गत सप्तरूप विभक्त्यात्मक माने गए, उन कारकों का मतलब है कि उन व्यक्तियों के साथ में चिन्हों का प्रयोग किया गया या संबंधों का प्रयोग किया गया। क्या, तो जैसे प्रथमा व्यक्ति होती है, क्या होती है, प्रथमा व्यक्ति, पहली व्यक्ति, तो प्रथमा व्यक्ति में क्या आता है, तो वहां चिन्ह बतलाया ने, इसलिए वहां प्रयोग कर देते हैं कर्ता ने, है ना। और द्वितीया व्यक्ति जहां होती है वहां उसका चिन्ह बतला दिया कर्म, तो को चिन्ह है उसका, तो कर्म को, तब क्या अर्थ निकलता है, कर्ता ने कर्म को। अब कर्ता ने कर्म को, फिर तृतीया व्यक्ति आती है करण अर्थ में, जिसका चिन्ह होता है द्वारा या से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये अर्थ आगे क्रिया होती है तिगंत व्यक्ति की, तो किया। ये ऐसे राम ने बाण से बाली को मारा, तो ये वाक्य अब अर्थ बतलाने वाला हो गया। क्या अर्थ बतलाया, कि राम ने बाण से बाली को मारा, तो ये अर्थ कब निकला, तो कारक के समन्वित होने पर। कारक की उसमें स्थिति कब आई, तो जब सुप विभक्तियों को उसके साथ जोड़ा गया शब्द के साथ, तब जो स्त्री, ऐसे ही वृक्ष से पत्ते गिरते हैं पंचमी में, राम के लिए चिन्ह आ जाता है चतुर्थी में संप्रदान आदि अर्थ में, और अपादान अर्थ में जो है से चिन्ह होता है,
और इसी प्रकार से षष्ठी व्यक्ति जो संबंध का होता, तो का की के है अमुक का पुत्र है, ये सब संबंध आ जाए। और सप्तमी अधिकरण अर्थ में होती है, आधार को ही अधिकरण कहते हैं, तो अमुक पर ये पुस्तक है, मेज पर ये पुस्तक है, ये सप्तमी आदि। तो इस प्रकार से पद कहने का तात्पर्य है कि वाक्य के सटीक अर्थ को ग्रहण करने के लिए पद होना चाहिए। जब केवल शब्द से काम नहीं चलेगा, शब्द कैसा हो तो विभक्त्यात्मक शब्द हो, व्यवहार तभी होगा। भक्ति में व्यवहार नहीं होता। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब ही है जहां विभेद न हो, जहां विभाग न हो। और विभक्ति का मतलब है जहां पर विशेष रूप से भक्त कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए। तो विभाजन जहां होगा, द्वैत जहां होगा, विभाग जहां होगा, वहीं पर व्यवहार हो सकता है। और जहां विभाग नहीं है तो व्यवहार कैसे होगा? तो विभाग में व्यवहार होता है, और जहां विभाग नहीं रह गया तो व्यवहार भी समाप्त हो जाता। इसलिए भक्ति शब्द का भी अर्थ वहीं जाता, और यहां भी विभक्ति शब्द का अर्थ है विभाग। तो विभाग में ही ये चिन्ह काम करते हैं, विभाग में ही व्यवहार होता है, और उस व्यवहार के द्वारा जो है हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। इसलिए यहां शब्द किया दिया गया पद। क्या कहा? पद। तो पद क्या है? तो जिसके साथ में विभक्ति का संबंध हो जाता है, और विभक्ति के संबंध हो जाने पर वह शब्द जो है पद कहलाने लगता, तब वो एक विशेष अर्थ को लेकर के आता। तब उस पद का, शब्द का अर्थ एक विशेष अर्थ होता है। शब्द का, क्योंकि शब्द तो अनेक हैं, और उन शब्दों के अनेक अर्थ भी निकलते हैं, लेकिन तात्पर्यार्थ अर्थ जो है वो कारक आदि को लेकर के ही संगत होता, इसलिए कहा पद। तो ऐसा जो पद और फिर वाक्य, तो वाक्य जो है वो क्या है? पदों के समूह का नाम ही वाक्य। पद के समूह, तो कर्तावाचक पद हो, कर्मवाचक पद हो, क्रियावाचक पद हो, तभी उसका अर्थ लगेगा। यदि केवल जो है वाक्य के अंतर्गत कर्ता ही कर्ता दे दिए जाए, कर्म का निर्वचन न किया जाए, तो उस वाक्य का अर्थ लगेगा। तब वहां संकेत किया पद और पद पूर्व परा अनुक्रम के अनुसार जो शब्द समूह या जो पद समूह, उसका नाम है वाक्य। सभी को वाक्य नहीं कहेंगे, है ना? वाक्य किसे कहेंगे? एक ही शब्द का हम रटन लगाते रहे तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य क्या कह रहा? पूर्व पर के अनुक्रम को संगत करने वाले जो पद समूह, उन पद समूहों का नाम ही क्या है? वाक्य। तो अब इससे अर्थ क्या निकला? इससे अर्थ ये निकला, यहां पर जो ऋषियों ने उच्चारण किया, कथन किया, वो सारा कथन कैसा है? शब्दात्मक नहीं है, वो पदात्मक है। अर्थात उन पदों के अंतर्गत माने अर्थ वैशिष्ट अर्थ विद्यमान है, और उन वैशिष्ट अर्थ वाले पदों से जिन वाक्यों का प्रयोग किया गया वो पूर्व और पर के अनुक्रम के साथ में है। ऐसा नहीं कि जिनका कोई क्रमहीन हो, जिनकी पूर्व परा संगति ही न लगे, ऐसा नहीं। तो पूर्व और पर के क्रम की है संगति के साथ में जो पदों का समूह, ऐसे वाक्य, तो ऐसे पद और वाक्यों को, और जब ऐसा पद और वाक्य होगा तो वही प्रमाण होगा। वही क्या होगा? वही किसी वस्तु को प्रमाणित या सिद्ध कर सकेगा। तो ऐसे पद वाक्य और प्रमाणतः प्रमाण रूप, ये संकेत करिए, तो जो पद और जो वाक्य प्रमाण स्वरूप हैं, ऐसे उन पद वाक्यों के प्रमाण स्वरूप पद वाक्यों के द्वारा गुरुवी ऋषियों ने क्या किया? कहने लगे व्याख्याता, व्याख्यान किया।
विशेष रूप से हमारे लिए कहा। अब विशेष रूप से कहा, सामान्य रूप से नहीं। विशेष रूप से जो बात कही जाती है वो अनुकरणीय होती है। सामान्य रूप से कह दी जाए तो उसे आप की इच्छा के ऊपर वो निर्भर होती है, आप उसे कर सकते हो नहीं भी कर सकते, लेकिन जो विशेष कहा जाता है वह अनुकरणीय होता है। और अनुकरणीय होता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए लाभप्रद होता है, वो हमको लाभ देने वाला। इसलिए यहां संकेत किया कि पूर्व में ऋषियों ने पद और वाक्य और प्रमाणों को लेकर के हमारे लिए जो व्याख्यान किया, जो कथन किया या जो कहा, और वो क्या कहा तो उसको और विशिष्ट शब्द में कहा, कहने लगे सर्व वेदांता। जो कहा वो क्या है तो उसे को भी नाम दे दिया, क्या? सर्व वेदांता। अब यहां वेदांत शब्द से उपनिषद को भी हम वेदांत ही कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। वैसे वेदांत का यौगिक अर्थ क्या है? तो वेदांत का यौगिक अर्थ है वेदई, वेदों के द्वारा, वेदई निडीतो यो अर्थः स वेदांतः। और अंत शब्द आया तब उसकी पूरी व्याख्या कर दी, वेदई रनंतो निर्णीतो यो अर्थः स वेदांतः। वेदों के द्वारा जो अंत रूप अर्थ निर्णीत किया गया, निश्चय किया गया, और वो भी कैसा? तो निर्गलित अर्थ, निश्चोत अर्थ, उस अर्थ का नाम ही है वेदांत। अंत शब्द समापन का भी वाचक होता है, और अंत शब्द जो है कहीं कहीं पर क्या है, कहने लगे मध्य का भी वाचक होता। आपको लगेगा ये सब कैसे, शब्द अनेक अर्थों वाला होता, इसलिए पद शब्द का भी। जैसे एक व्याकरण के अंतर्गत सूत्र आता है, अचाम मध्य यो अंत अच तट ती संयम से आतो, स्वरों के मध्य में जो अंतिम अच, तो अंतिम शब्द नहीं वहां प्रयोग होता, अंत अच अंत स्वर उसकी टी संज्ञा होती, तो मध्य शब्द पहले प्रयोग कर दिया, तब वहां अंत शब्द का अर्थ क्या लगेगा? माने बीच का, मध्य का, तो वहां अर्थ क्या हो गया? अंत शब्द का अर्थ हो गया मध्य। और समापन अर्थ बहुधा हम लोग प्रयोग करते, लेकिन यहां पर अंत शब्द का अर्थ है अंतः सिद्धांतः। अंत क्या है? यहां अंत शब्द है सिद्धांत का वाचक, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, उसका नाम है अंतः। तो यहां पर क्या? वेदई रनंतो निडीतो यो अर्थः सिद्धांतः स वेदांतः। ये अर्थ निकल, किसे वेदांत कहते हैं? तो कहने लगे वेदों के द्वारा जो निश्चोत निर्गलित निर्णीत अर्थ है, ऐसे उस अर्थ विशेष को अंत शब्द से सिद्धांत शब्द से कहा जाता है। इसलिए क्या हुआ? वेदांत शब्द का अर्थ हुआ वेदों का सिद्धांत। क्या अर्थ हुआ? वेदों का सिद्धांत। अब वेदों का जो सिद्धांत है, इसलिए सिद्ध शब्द पड़ा है और आगे अंत शब्द पड़ा। जो सिद्ध किया गया है उसके फिर आगे कोई परिवर्तन संभव नहीं है, अंतिम सिद्धांत ये भी कह सकते हो, है ना? तो उसी को क्या कहते हैं? वेदांत। वो क्या है? वेदांत अर्थात जो निर्णीत, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसे उस अर्थ को उन ऋषियों ने कहा। और वो अर्थ कहां है? तो वेदों के द्वारा। उपनिषद कहां से है? कहा वेदों से। और वेदों से भी उपनिषद है तो उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा? इसलिए कहा
क्योंकि वेदों के अंतर्गत कर्म की भी चर्चा है, वेदों के अंतर्गत उपासना की भी चर्चा है और वेदों के अंतर्गत ज्ञान की भी चर्चा। लेकिन वहां कर्म की चर्चा जो की गई, उपासना की चर्चा जो की गई, वो उपासना के लिए या कर्म के लिए नहीं की गई, किंतु उसका लक्ष्य क्या है, अंतःकरण शुद्ध्यर्थ। और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, तो उससे लाभ क्या होगा, तब से बतलाया कि इस शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। और जिस ज्ञान का प्रादुर्भाव शुद्ध अंतःकरण में होता है वही ज्ञान क्या है, सिद्धांत है, और वही है उपनिषद। इसलिए उपनिषदों को भी वेदांत शब्द से कह दिया, उपनिषद भी क्या है, वेदांत। इसलिए यहां संकेत किया कि वेदांता और कैसा वेदांता, तो कहने लगे जो नित्य है, शब्द और प्रयोग कर दिया, वेदांता नित्य, जो जिसमें कभी भी किसी भी काल में बाधता नहीं है, जिसके अंदर बाध्य धर्म है ही नहीं, जो किसी से बाधित नहीं होता, तो ऐसा उस वे

पहले, सबसे पूर्व को हम ले लें तो वहां क्या कहा गया, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। क्या किया, जिसने ब्रह्मा को निर्मित किया है, विशेषेण दधाती विदधाति, अर्थात विशेष रूप से धारण किया। वहां निर्माण भी शब्द नहीं है, वास्तव में क्या है, विशेष रूप से जिसने ब्रह्मात्व को धारण किया। और जब धारण किया तो उस ब्रह्मात्व को जिसको धारण किया, उस धारणार्थक पदार्थ में ही या धारणार्थक उस व्यक्ति विशेष में ही क्या कर दिया, कहा वेदांश प्रहणोति। उसके लिए क्या कर दिया, कहने लगे उसमें वेदों का प्रहरण कर दिया, वेदों को दिया ऐसा नहीं कहा, क्या कहा, प्रहरण। और प्रहरण क्या है, तो जैसे जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद क्या बच्चे के अंतर्गत श्वास का आना जाना होता है कि जन्म के साथ ही होता है, तो क्या कहो, साथ ही होता है ना। और यदि श्वास का आना जाना होता है तब तो आप उस बालक को उपादेय समझते हो, उसकी सुरक्षा करते हो, पालन पोषण करते हो। और यदि श्वास का आगमन निर्गमन न हो तो क्या समझते, ये तो निरर्थक है, तो उसे कैसा मान लेते हो, निरर्थक। तब उसका कोई भी पालन पोषण आदि आप नहीं करते। तो इसका मतलब हुआ कि जिसको उन्होंने धारण किया और धारण करके उसमें क्या किया, प्रेरण कर दिया, किसका, श्वास का। इसलिए श्वास ही क्या है, का जीवन है, जीवन है माने सत्ता है, विद्यमानता है। और श्वास नहीं है तो विद्यमानता भी नहीं, इसलिए वायु तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासी कह चुके। अब जब तक श्वास है तब तक क्या है, वो बच्चा है ऐसा प्रयोग करोगे, और श्वास नहीं है तो है शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जा सकता नहीं। इसी प्रकार से संकेत यह कर रहे हैं कि जब तक उसमें श्वास है तब तक उसकी सत्ता है, और श्वास नहीं है तो सत्ता भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, यहां पर श्वास शब्द से किसको कहा, वेदांश प्रहणोति तस्मै, किसका प्रहरण किया, वेद का प्रहरण, किसका किया है, वेद का। तो वेद क्या है, तो इसलिए कह देते हो वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत जो है जब अपनी टीका लिखी तो वहां पर क्या कहा, निस्वस्यमस्य वेद, वेद क्या है, कहा परमात्मा की निश्वास है। कहा क्या मतलब, मतलब यह है जब तक परमात्मा की सत्ता है तब तक वेद है, और जब तक वेद है तब तक परमात्मा, ये मतलब हो गए। और वेद क्या है, तो वेद विद धातु से बनता है, वेद किससे बनता है, विद धातु से। और विद धातु जो है चार अर्थों में प्रयुक्त होती है, विद धातु जो है उसके चार अर्थ हैं, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद अविकांक्षायाम और विद लाभे। विद धातु जो है सत्ता को बतलाने वाली है, विद्यमानता को बतलाने वाली, और विद धातु जो है किसको बतलाने वाली, ज्ञान को बतलाने वाली, प्रकाश को बतलाने वाली, और विद धातु जो है किसको बतलाने वाली, अविकांक्षा इच्छा, और विद धातु किसको बतलाने वाली, का लाभ को। और इसी को लेकर के क्या बना, मनुष्य की अनंत इच्छाओं का जब वर्गीकरण किया गया तो चार पुरुषार्थों के रूप में कह दिया। और पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या होता, पुरुषई रर्थीयते इति पुरुषार्थ, पुरुष के द्वारा जो चाहा जाता है, पुरुष के द्वारा जो अर्थना की जाती है, पुरुष के द्वारा

0: का जो याचना की जाती है उसी का नाम क्या है? पुरुषार्थ, अथवा पुरुष का जो प्रयोजन उसी का नाम क्या है? पुरुषार्थ। तो अब पुरुष की चाहना ले लो तो उसका कोई अंत नहीं, लेकिन अब अंत नहीं है तो कैसे हिसाब लगाया जाए? तब उसका वर्गीकरण कर दिया गया, और वर्गीकरण ऐसे नहीं किया, वेद से किया गया। चार रूपों में उसका वर्गीकरण किया गया, क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये इन चार धातु आत्मक होने के कारण ये चतुष्ट पुरुषार्थ की चर्चा कर दी जाती। अब जो है इस प्रकार का जो वेद, तो वो वेद हमें क्या बतलाता है? तो सारी हमारी व्यवहारिक स्थिति में जो पुरुष की, पुरुष मात्र की, प्राणी मात्र की जो लक्ष्य भूता प्रवृत्ति है, उस सारी प्रवृत्ति का परिचायक कौन है? वेद है। अब उस वेद का जो है सिद्धांत क्या है, तो वो बतलाने के लिए फिर कह दिया कि वो क्या है? मोक्ष। तब क्या कह दिया? इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्थ विद पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। का पुरुषार्थ तो चारों, लेकिन चारों पुरुषार्थ जो हैं उनमें जो है सर्वश्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है? तो कहने लगे इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष ही अंतिम पुरुषार्थ है, वही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये संकेत किया। तो ये प्रवृत्ति तो चतुर्थात्मक है, लेकिन चतुर्थात्मक प्रवृत्ति होते हुए भी लक्ष्य रूप क्या है, अंतिम क्या है, उपादेय क्या है, उत्कृष्ट क्या है, श्रेष्ठ क्या है? तो कह दिया मोक्ष एव। क्या है? मोक्ष ही है। ये संकेत किया। कहा क्यों? कहने लगे इसलिए तद्यथेह कर्मचितो लोकाक्षीयते। वेदांत परिभाषा आप लोगों ने स्वाध्याय में पढ़ी होगी, तो उसमें ये सब आया पहले प्रारंभ में। वहां संकेत किया गया कि जिस प्रकार से इस लोक के अंतर्गत कर्मचित कर्म से उपार्जित होने वाले, किसान जो है फसल को उपार्जित करता है ना, और बिजनेसमैन जो है अपने पदार्थों को वो भी उपार्जित करते, ऐसे ही सर्विसमैन भी करते, सभी लोग करते। अब उन पदार्थों को हम उपार्जित करते हैं, चाहते हैं, चाह करके उनका हम जो है लाभ लेते हैं, प्राप्त हुए। प्राप्त होने के पश्चात क्या होता है? उनका उपयोग करते हैं, और जब उपयोग करते हैं तो क्या होता? उपयोग करने पर वो पदार्थ नष्ट हो जाते, छीयते, क्षय को प्राप्त हो जाते, तब पुनः उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता, और पुनः पुरुषार्थ करते हुए पुनः पुनः यही स्थिति चलती रहती। ये संकेत। और कहने लगे इतना ही नहीं, ये तो जो है सामान्य पदार्थों की चर्चा हो गई, इस अर्थ की बात की, अदर्थ तुमका मतलब है पदार्थ विशेष। और फिर कहने लगे तो धर्म, तो धर्म के लिए क्या कहा? धर्म के लिए कहा एवमेवा मूत्र पुंड चितो लोका खीयते। जिस प्रकार से हम जो है लोक में जिन पदार्थों को प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करके उनके उपभोग के द्वारा जो है वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से एवं एव, ठीक इस प्रकार से ही जोड़ भी दे दिया, क्या है? कहा पुंड चितो लोका छीय आवुत्र, माने इस लोक में ही नहीं, ये तो पृथ्वी लोक की बात की। कहा जिस स्वर्ग आदि की कल्पना की है, ऐसे स्वर्ग आदि लोक में जो है जो पदार्थों हमने संचित किए धर्म के द्वारा, और धर्म के द्वारा जो प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का भी क्या है? क्षय हो जाए। ये है कि इनसे उनमें श्रेष्ठता अधिक है, इन पृथ्वी के पदार्थों से जो है अधिक गुणवान है, ये सब तो है, लेकिन नाश को वो भी प्राप्त होते, ये धर्म समान है। अब जब नाश को प्राप्त हो जाएंगे तो तृप्ति तो कभी दे सकते नहीं, इसलिए कहा कि मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। मोक्ष ही क्या है? परम पुरुषार्थ है, क्योंकि मोक्ष का कभी नाश आदि नहीं होता, उदय आदि नहीं होता। मोक्ष जो है वो नाश रूप नहीं है और उदय रूप भी नहीं। अब थोड़ा और विचार कर लूं, ये चार पुरुषार्थों की चर्चा कर दी, और आप वेदों में उपनिषदों में क्या पढ़ते हो और लोक में भी अनुभव करते हो, क्या करते हो? जब कहते हो कि मैं हूं, क्या कहते हो? मैं हूं। अब ये मैं हूं ये कहना कब होता है?
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Shvetashvatara Upanishad ke dusra adhyay ka chhatha mantra hai. Chhatha pura kaha hua? Agnirjatrabhimachyate वायुर जत्रा धिरुज्यते सोमो जत्रा तिरिच्यते तत्र संजायते मनः तत्र मन संजायते। तत्र माने कहां पर? वहां पर पासमामला में ये तीन बातें बताया है, जहां अग्नि मंथन होता है हनीबात, और जहां पर वायु प्राणायाम अधिरुध्यते, और जहां सोम अधिरिच्यते तत्र मनः संजायते, मानी उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं समझना। वहां पर मन लगता है, मन रसास्वादन करता है, आनंद का अभी अनुभव करता है। ये प्रसंग में कल यहां तक बतलाया था, क्या लगे नहीं? अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चय तत्क्षीण जायते पुंसाम गोविंदाभिमुखी मति ही। अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चय, चित्ते पाप समुच्चय, चित्त में पापों का जो संशय होता है ना, चित्त माने मन, समझ लेना। चित्तम चित्त बिजानियात तकार रहितम ददा तकार विषेध्यास जप रागो मणो जथा। ये क्या लाए? चित्तम चित्त किसको कहते हैं? का चित्तम चित्त बिजानिया, चित्त में दो तकार हैं, चित फिर ता, तो चित्तम चित्त बिजानिया। चित्त को तुम चित समझो, चेतन समझो, चित्त को चेतन समझो। कब होगा ये? चित्त को चेतन क्यों समझे? कब समझे? तब कहते तकार रहितम जदा। चित्त में जो दो तकार है ना, एक तकार को हटा दो, पूरा तकार को हटा दो, केवल चित्त रखो, चित्त तो तकार को आपने क्या कर दिया, हटा दिया, तो रहा क्या गया, चित्त। चित्त क्या चीज है, चैतन्य आत्मा है। तो चित्तम चित्त बिजानिया तकार रहितम जदा, जब तकार हट जाता है तो चित्त चित हो जाएगा, चैन हो जाएगा। चित्त होता ना अखाड़ा में, चित्त करते कि नहीं, पलट देता है तो हार जाता, चित्त हो जाए तो हम लोग क्या बन गया, संसार रूपी अखाड़ा में हम सब कैसे अचित्त हो गया, परमात्मा की तरफ से उलट गया। ये तकार क्या चीज है, तकार विषयध्यास, संसार का अध्यास का नाम तकार है। हाँ, तो संसार रूपी जो ये अध्यास है, अध्यस्त वस्तु है, इसके कारण समझे कि नहीं, हम लोग परमात्मा की तरफ से विमुख हो गए। तकार रहित दादा, तकार विषयध्यास कैसे, तो दृष्टांत दिया, जप रागो मणो यथा, जैसे मणि है ना स्फटिक मणि, तो स्फटिक मणि की रक्तिमा, स्फटिक मणि जो सफेद है उसमें जफा कुसुम की जो रक्तिमा है वो रक्तिमा का आरोप हो जाता है। तो जफा कुसुम स्वच्छ होता हुआ भी, सफेद होता हुआ भी, शुक्ल वर्ण होता हुआ भी, स्फटिक है स्फटिक तो होता हुआ भी वो लाल दिखता है। लाल क्यों दिखता है, वो जफा कुसुम की जो रक्तिमा है, लालिमा है, उसमें आरोपित हो जाएगा। हाँ, तो जफा कुसुम में रक्तिमा जैसे स्फटिक मणि में आरोपित होने से स्फटिक मणि रक्त वर्ण बन गया, बन गया कि नहीं, तो उसमें रक्तिमा आरोपित हुआ है। अयम स्फटिका कीदृश स्फटिका, तो रक्त स्फटिका लाल स्फटिक है, तो स्फटिक का लाल होता है नहीं तो क्यों दिखता है, तो पास में जो लाल फूल पड़ा हुआ है ना, इसके लालिमा उस मणि में आरोपित हो गया। ऐसे संसार जो है दिखता है, कैसा दिखता है, सच्चा दिखता है, सच्चा दिखता है, यानी वह वास्तविक दिखता है। क्यों दिखता है, अरे भाई अविद्या के कारण चित्त, आज जो चित्त था, चेतन था, उसके सन्निधि मात्र से जड़ होता हुआ भी, मिथ्या होता हुआ भी, हाँ चेतन सा भास रहा है। तो संसार को हम क्या बोलते हैं, हाँ बोलता है महाराज संसार सब कुछ सत्य है, नहीं तो संसार, हाँ संसार में हमको सब सच्चा भासता है, तो भासने दो, भासता है तो भासने दो, जिसके लिए भासता है उसको भासने दो, जिसके लिए संसार सत्य है सत्य रहने दो, जिसके लिए सुखात्मक है सुख रूप देखो, दुखात्मक है तो दुखात्मक देखो, यानी देखो जिसकी जैसी दृष्टि होगा वैसे संसार को देखेगा, वास्तविक क्या है वो देखना पड़ेगा, यानी बात। रस्सी का सर्प को तुम सच्चा समझो तो कौन मना करेगा, सूक्ति का चांदी सच्चा है तुम देखो, सच्चा है हमने देखा तो देखो, तुम देखो, हाँ कोई मना नहीं करेगा, परंतु जब अनुसंधान करोगे सच्चा है क्या झूठा है तब तुमको पता चले, इससे पहले कितना भी बोले मानोगे नहीं। ऐसे संसार मिथ्या है, संसार दुखात्मक है, संसार विनाशी है, संसार असत है, हजारों बार तुम सुनते रहो, हजार बार सुनाते रहे समझो, फिर भी क्या देखेंगे, सत्य लगेगा कि नहीं लगे साफ सत्य लगेगा। इसमें तो दोनों दृष्टि है ना, दृष्टि सृष्टि है, सृष्टि दृष्टि है, दृष्टि सृष्टि बाद में और सृष्टि दृष्टि बाद में है, दो बाद है, है नहीं बात। दृष्टि पड़ी तो सृष्टि है, सृष्टि है तो दृष्टि पड़ेगी। दोनों में से कौन से मानते हैं आप? दृष्टि पड़ी तो क्या बन गया? सृष्टि हो गई, और सृष्टि है तो दृष्टि पड़ेगी। तो संसार में दोनों बात चलता है, अधिकारी के भेद से याद रखना। जैसा अधिकारी होगा ना, ऐसे संसार को देखेगा। वो दाना डालेगा, आने बाद चिड़िया बहेलिया आया, जाल फेंका, दाना डाला, तो भाई इतना तो सीखेगा। दाना डालना तो जानेगा, क्यों दाना खाने आएगा, परंतु ये नहीं देखेगा आने हाँ। वो संत लोग दृष्टांत तो देते हैं, संत कहते ना श्रवण कैसे करना चाहिए, श्रवण शास्त्र का श्रवण कितना कैसे करना चाहिए, ये दृष्टांत है। महात्मा के पास गए सुग्गाव का राजा, महाराज हमारा सुग्गाव का जो है ना सत्यानाश हो रहा है, वंश समाप्त हो जा रहा है, फलाना आता है, जाल फेंकता है, उसमें दाना डालता है, हमारा चिड़िया खाने जाते सब फट जाते हैं, मर जाते, अभी हजारों में से अभी 100 रह गया, तो क्या करना चाहते हो? हम बचना चाहते, बचना चाहते हो तो मैं मंत्र बतलाता हूँ, मंत्र को याद कर लेके ना। हाँ, बोले क्या मंत्र बताते हो बताओ? बोले बहेलिया आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, यानी बस हम फंसेगा नहीं, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, ऐसा ठीक है याद करा दिया। जब चला गया तो बहेलिया का लड़का आया उस दिन, बहेलिया खुद नहीं आया था, तो उसने जाल फेंका, दाना डाला, कोई चिड़िया आया नहीं, तो उसने डाल उठा करके चला गया। बाप ने कहा क्यों चले आया तू, चिड़िया नहीं आया, नहीं चिड़िया फंसा नहीं? बोले नहीं, ऐसा ऐसा कोई महात्मा है, उसको मंत्र सुनाया, वो मंत्र जपता है। बोले क्या मंत्र है? बोले बहेलिया आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, हम फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे। अरे बेटा यही तो कहने के लिए होता है, चले जा, जब दोपहर को 1 बजेगा 2 बजेगा फिर देखना, तो फिर जाल फेंकना, फिर जाकर जाल फेंका, है नहीं बात, दाना डाला, बैठ गया, तो चिड़िया भी बोलता है, बोलते बोलते जब दोपहर को हुआ तो कहने भाई ठीक है, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, सब कुछ ठीक है, पर आप भूख लगे तो क्या किया जाए? भूख के पास क्या किया जाए? बोले चलो सामने तो दाना पड़ा हुआ है, चलो खाओ, है नहीं बात। तो ऐसे कहावत जो होते है ना, श्रवण का विधान है, श्रवण करेंगे, बार बार श्रवण करो, श्रवण करो, और जब वो सामने जब आ जाता है ना स्वीकार, फिर क्या हो जाता है? तो यहाँ ये बात नहीं है, वेदांत शास्त्र और कुछ बतलाते हैं, समझे कि नहीं? ये आपको बतला रहे हैं यहाँ क्या है, चित्ते पाप समुच्चय, अनंत जन्मों के कर्मों का जो संस्कार है, अच्छा बुरा कर्म पाप पुण्य का संस्कार पड़ा हुआ है, अनेक जन्म संस्कार, चित्ते पाप समुच्चय संशय, समझ लेना, अनेक जन्मों से हमने अशुभ कर्म किया, उसका संस्कार हमारे अंतकरण में, मन में, चित्त में पड़ा है। चित्तम चित्त विजानिया, चित्त को तुम चेत समझ लेना, परंतु जब एक तकार हटा दोगे तभी वो बनेगा। चित्त में दो तकार है, एक तकार हटा दोगे तो क्या रह जाएगा? और चित माने परमात्मा, यानी बात भगवान है। तो चित्तम चित्त बीजानिया तकार रही जम दादा, तो तकार क्या दी जाए, तकार